मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में हम हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी

0: सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जहां सुरों में बसती है श्रद्धा, शब्दों में झलकती है भक्ति और हर प्रस्तुति आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बन जाती है। आज के इस पावन सफर में हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्ति, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा से भरे कुछ मधुर भजन। कहा जाता है जब मन ईश्वर के स्मरण में जुड़ जाता है तब जीवन की हर कठिनाई सरल लगने लगती है। तो आइए अपने मन को शांत करें और शुरुआत करते हैं एक प्रेरणादायक देशभक्ति गीत से, जो हमारे हृदय में राष्ट्र प्रेम और उत्साह की ज्योति को प्रज्वलित करता है।

देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस प्रेरणादायी प्रस्तुति ने मन में ऊर्जा, साहस और गर्व का संचार कर दिया। राष्ट्रप्रेम भी एक पूजा है, क्योंकि मातृभूमि की सेवा ही सच्ची श्रद्धा का रूप होती है। अब आइए अपने मन को भक्ति रस में डुबोते हैं और प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं अगला मधुर भजन।

भजन और संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा की शांति और मन की शक्ति का माध्यम है। जब जीवन में निराशा घेर ले तब ईश्वर का स्मरण नई आशा और सकारात्मकता का दीप जला देता है। याद रखिए, विश्वास और भक्ति से भरा मन कभी कमजोर नहीं होता। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रस्तुत है एक और भावपूर्ण भक्ति रचना।

गोकुल ढूंढी मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढी मथुरा ढूंढी, ढूंढा वृंदावन सारा, काशीपुरी सक

कोई बैकुंठ कैलाश बतावे कोई सागर पारा, कोई बैकुंठ कैलाश बतावे कोई सागर पारा, कोई कहे सब जग के भी

संगीत की यह मधुर धारा निरंतर प्रेम, भक्ति और आत्मिक शांति का संदेश दे रही है। ईश्वर का नाम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जो हर अंधकार में प्रकाश बनकर राह दिखाता है। आइए सुनते हैं आज का अगला मनमोहक भजन।

भक्ति रस में डूबे इन मनभावन प्रस्तुतियों ने वातावरण को पूर्णतः भक्तिमय बना दिया है। जब मन श्रद्धा से भर जाता है तब जीवन में शांति, संतोष और नई ऊर्जा स्वतः आने लगती है। ईश्वर की कृपा आप सभी पर यूं ही सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रकाश फैलता रहे। जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, कुछ पल ईश्वर के स्मरण के लिए अवश्य निकालिए, क्योंकि वही स्मरण मन को सच्ची शांति

0: आप सुन रहे थे वंदना, आलेख था दीपमाला पवार का और स्वर था शिखा साहू का। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर से अब प्रस्तुत है चिंतन। आलेख है निहारिका श्रीवास्तव का और स्वर है अर्चना वर्मा का।
2: धैर्य सर्वत्र साधनम, जिसका अर्थ है धैर्य ही हर जगह हर कार्य में सफलता का साधन है, जो बताता है कि चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को शांत रहने, समस्याओं का समाधान खोजने और हर लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि यह मानसिक स्थिरता और सकारात्मकता बनाए रखता है। किसी भी मुश्किल समय में शांत रहना, सोच समझ कर निर्णय लेना और हार न मानना ही धैर्य कहलाता है। धैर्य हमें मजबूत बनाता है और सफलता पाने में मदद करता है। कहा जाता है सबसे बड़ी जीत उसकी होती है जो कठिनाइयों के बीच भी धैर्य नहीं खोता। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जहां चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। कभी परीक्षा का परिणाम देर से आता है, कभी मेहनत का फल देर से मिलता है, तो कभी लोग हमें समझते ही नहीं। ऐसे में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और अंत में सफल होते हैं। इन सब समय में धैर्य बहुत जरूरी होता है। अगर हम जल्दी गुस्सा करें, हार मान लें या घबरा जाएं, तो स्थितियां और बिगड़ सकती है। लेकिन अगर हम धैर्य रखें, शांत दिमाग से सोचें, तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। धैर्य, यह शब्द बहुत छोटा है, पर इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। हमेशा तुरंत परिणाम चाहने वाली इस दुनिया में धैर्य

0: शक्ति है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। आज के समय में हम तेजी से भागते हैं, हमें तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत समाधान चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए। पर जीवन का सच यह है कि सही चीजें समय लेकर ही मिलती है। जहाँ जल्दीबाजी होती है वहाँ गलतियाँ भी होती है, और जहाँ धैर्य होता है वहाँ समझ, स्थिरता और प्रगति होती है। धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, बल्कि सही तरीके से लगातार प्रयास करते रहना है। जीवन की हर बड़ी उपलब्धि समय लेती है। जैसे एक पौधा पेड़ बनता है, वैसे ही हमारी मेहनत भी धीरे धीरे फल देती है। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में कुम्हार राघव और उसका बेटा अरुण रहते थे। अरुण काम जल्दी जल्दी करता था और चाहता था कि उसके बर्तन तुरंत सुंदर बन जाए, पर हर बार बर्तन टेढ़े मेढ़े होकर टूट जाते। एक दिन राघव ने कहा, बेटा समस्या मेहनत की नहीं धैर्य की है। वह अरुण को चाक के पास ले गया। पहिया धीमे और स्थिर रूप से घूम रहा था। राघव ने मिट्टी रखी, धीरे धीरे हाथ चलाए और एक सुंदर सा घड़ा बना दिया। वह बोला, बर्तन तब बनता है जब पहिया भी सही गति से चले और हाथों में धैर्य हो। जल्दीबाजी हर चीज को बिगाड़ देती है। अरुण ने बात समझी और धैर्य से काम करने लगा। धैर्य वो पुल है जो मेहनत को सफलता से जोड़ता है। अगर आप कठिनाइयों में भी शांत रहें, विश्वास रखें और प्रयास करते रहें, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए बहुत बड़ा नहीं होगा। जीवन में आपकी जीत, आपकी सफलता, आपकी खुशी सब उसी दरवाजे के पीछे खड़ी है जिसका नाम है धैर्य। यह एक जीवन मंत्र है जो सिखाता है कि धैर्य ही परम शक्ति है जो हर चुनौतियों को पार करने और हर इच्छा को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसीलिए धैर्य अपनाइए और देखिए कैसे जिंदगी आसान, शांत और खूबसूरत लगने लगती है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था निहारिका श्रीवास्तव का और स्वर था अर्चना वर्मा का।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
5: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
4: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
5: अरे काहे का मजा,
4: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
4: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
5: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
4: ये हुई ना बात।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: खेती की बातें में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पराली का निदान विषय पर जानकारी। वाचन है सुनीता पंडित का।
2: खेती की बात में सुनने वाला सभी किसान भाई बहन का कवा उनकी सुनीता बन की खनी घनी राम राम। किसान महीनो होनी आज बात करांगा खास अपना पर्यावरण का बचाना की आन अपनी तरफ से अपन का ही नुकसान पहुंचे का बारे में। पराली जो अपन जलावा जसो की अपनो खेत जब रहे गहूँ की बात कर ले वहाँ की अपन मक्का की बात कर ले जो अपना खेत नम अवशेष राज्य का अपन धसिया कवा वो खेत नम रही जाए आन ओखा निकालना का ले अपन भाई आग को सहारो लेवा आना जड़ाई देवा। पर या पराली को अगर प्रबंधन अच्छा तरीका से कर लेवांगा इन्हीं समस्या को समाधान हुई जाएगा ना अपन कभी तो परेशान नहीं होना पड़ेगा पर्यावरण भी अपना अच्छा रहेगा। भाई खेत नम जो बच्चा अवशेष छे उनका नख हम यूज करवांगा कि जलाना का बजाय अगर ओको समाधान कर लेवा हाँ ओका पहले यो भी बतावांगा कि जलाना से नुकसान का ही रोज भाई हवा में जहर खुली रोज पराली जलाना से PM 2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथेन जैसी हानिकारक गैस निकला जो स्मॉग और सांस की बीमारी को कारण बने। मिट्टी अगर जड़ी जाएगा न आग से अगर मिट्टी का मित्र कीट छे अगर वो जड़ी गया तो माटी का जो पोषक तत्व छे जैसे नाइट्रोजन हुयो फास्फोरस हुयो जो नष्ट हुई जाए अन मिट्टी की जो नमी सोखने की क्षमता छे वह भी कम हुई जाए एकासे अगली फसल पर प्रभाव पड़ेगा अन ज्यादा खाद देनु पड़ेगा ज्यादा ओकी उर्वरक देनु पड़ेगा ओकी क्षमता का बढ़ानु पड़ेगा क्योंकि ओका में पोषक तत्व खत्म हुई जाए। एका साथ हम यो भी कहवांगा कि पराली जलाणु एक कानूनी अपराध भी छे और तमारा पर कानूनी कार्रवाई भी हो सके क्योंकि यो एक दंडनीय अपराध छे एकाले भारी जुर्मानो भी लगी सके और कानूनी कार्रवाई को प्रावधान छे तो कोई शिकायत कर दे पतो चली जाए तो वो भी तमारा पर हो सके। एकाल समाधान का लेन बतावा कि मशीन को उपयोग करो जैसो हैप्पी सीडर हुयो सुपर सीडर हुयो रोटावेटर हुयो ये ऐसी मशीन छे जिनको उपयोग करी न अपन पराली को हटाई सकान न सीधी सीधी अगली फसल की वावणी करी सकान। पूसा बायो डिकम्पोजर एक असो सस्तो अन प्रभावी तरीको छे जिको घोल को छिड़काड़ करने से पराली खेत में गली न खाद बनी जाए। पशु चारा न ऊर्जा की अगर हम बात कर ले तो पराली का उपयोग करी न पशु चारा खबी का रूप में लेवा या बिजली संयंत्र न बेची न अपन अतिरिक्त कमाई भी करी सकें। मल्चिंग विधि से भी पराली को निदान हो सक मिट्टी में दबाई देवा नमी बनेल रखा तो यो जो अपनी पराली छे यो उर्वरक क्षमता बढ़ाना का लेन काम में आई सके। पराली का निदान का लेन सरकार सहायता भी दे रही आन मदद भी कर रही। मशीन न का तुम कहोगे कि मशीन न है ही नहीं तो मशीन न की खरीदी पर 50-80% तक सब्सिडी भी मिली रही आने योचे की किराया से भी ऐसी मशीन न मिली जाए जिका से अपन पराली का निदान कर सके। तो किसान बहन से हम योज कहवांगा आज कि अपनी जमीन का बंजर नहीं करा आन जैविक खाद बनाने का तरीका न अपनावा अपनी माटी की उर्वरक क्षमता का भी बढ़ावा और अपनो नैतिक जिम्मेदारी का भी समझा। आज खेती की बात नम किसान भाई बहन से ये तो रोज कहनु राम राम।
1: खेती की बातें में आप सुन रहे थे पराली का निदान विषय पर जानकारी। वाचन था सुनीता पंडित का।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: इस समय आप हैं हमारे साथ।
5: जी हाँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
1: आकाशवाणी इंदौर से अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

काक भुशुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए। बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंड के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवाहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर था कविता कृष्णमूर्ति का और संगीत नियोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:20 पर होगा सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत सुनिएगा पद्मश्री जनक पलटा मैगलिगन से बातचीत। लोक संगीत में सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर प्रसारित करेंगे रेखा सोलंकी के गाए लोकगीत। सुबह 9:15 और शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं लियाकत हुसैन के स्वर में सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे शंभू प्रसाद पंवार का गायन, राग होगा देसी। सुबह 10:00 भोपाल केंद्र से रिले करेंगे जिले की चिट्ठी। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का समय रहेगा सुबह 10:05 से। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से सुबह 11:00 से 3:00 तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

के उपयोग साथ ही होंगी काम की बातें, गर्मी के मौसम में पानी कैसे पिए। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का प्रसारण होगा। श्रोताओं, अब एक नजर हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। शाम 5 युववाणी कार्यक्रम में सुनिएगा आज का क्रम के अंतर्गत हमारे शहर नर्मदापुरम के बारे में जानकारी। फिल्म संगीत सुनिएगा शाम 5:45। दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में रात 8:15 पर, चित्रगीत में रात्रि 9:15 और मनभावन में रात 10:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण होगा शाम 6:00 से। खेती गृहस्थी कार्यक्रम श्रोताओं हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:20 से। इसके तहत आप सुन सकते हैं गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में डॉक्टर CK रत्नावत से धरणीधर की बातचीत। रात 8:00 भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुर्खियों में। रात्रि 9:30 भोपाल केंद्र से ही अनुप्रसारित करेंगे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रात्रि 10:30 से सुनिएगा पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन, राग होगा चारुकेशी।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार होंगे, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा।
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
2: ऐसा क्या?

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच कहा। इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर। आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचेंगे, व्यापार और निवेश को लेकर होगी चर्चा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज बस्तर में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमता कार्य समूह का सम्मेलन, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से करेंगी शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली की 2 दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। इसके पूर्व कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के प्रयास करने चाहिए।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। वे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य हिस्सा लेंगे, जो परिषद में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के मध्य तथा राज्यों के बीच आपसी मामलों पर विचार विमर्श कर उनके लिए सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल छत्तीसगढ़ के बस्तर में बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और हॉक फोर्स के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश पुलिस को यह सम्मान बालाघाट एवं छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सफल एंटी नक्सल ऑपरेशंस, प्रभावी अंतर्राज्यीय समन्वय, मजबूत खुफिया नेटवर्क, दुर्गम क्षेत्रों में सतत अभियान संचालन और सुरक्षा तथा विकास आधारित पुलिसिंग मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के लिए प्रदान किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा। बैठक में कृषि मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए आगामी 1 जून से 15 दिनों तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा।
2: प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करेंगे। कृषि विभाग ने, ICAR ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो तत्व है उसके आधार पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे। खेत बचाओ अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन उसको और संगठित ढंग से हम 1 जून से 15 दिन के लिए पूरे देश में चलाएंगे।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमता कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खट्टे करेंगी। सम्मेलन के दौरान आयोजित बैठकों में ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों के प्रतिनिधि युवा विकास, उद्यमता, नवाचार एवं तकनीकी आधारित अवसरों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर शासकीय विभाग और औद्योगिक इकाइयों की नवाचार, औद्योगिक विकास, स्टार्टअप एवं तकनीकी आधारित पहल की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सम्मेलन के दूसरे दिन 20 मई को सदस्य देश अपने देशों के उद्यमता, पारिस्थितिकी तंत्र, नवाचार और युवा उद्यमता पहल की जानकारी साझा करेंगे। वहीं अंतिम दिन 21 मई को उद्यमता क्षमता और नेतृत्व विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कल कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित व्हाट्सएप चैटबॉट प्रचार अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल आज की महती आवश्यकता है। वहीं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। छठवां राज्य वित्त आयोग 20 एवं 21 मई को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के दौरे पर रहेगा। इस दौरान आयोग स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा आर्थिक स्वावलंबन के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सुझाव प्राप्त करेगा। आयोग

की टीम आज शाम ग्वालियर पहुंचेगी। आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया, सदस्य के सिंह तथा सदस्य सचिव वीरेंद्र कुमार कल ग्वालियर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इससे पहले कल के हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। वहीं हैदराबाद के लिए पैट कमिंस ने 3 विकेट और साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हॉकी इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने कल भोपाल में मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को हॉकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से कल आगरमालवा जिले के प्रवास पर जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी के दर्शन करेंगी। धार सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं रेलवे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट ने कल कलेक्ट्रेट कार्यालय में मृत शासकीय कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को 5 वर्ष के वेतन के बराबर राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। गुना जिला प्रशासन की सहभागिता से गेल विजयपुर संयंत्र में कल दोपहर 3:30 पर संयुक्त रूप से ऑफ साइट आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कटनी कलेक्टर ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पुनर्वास के लिए जिले में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन किया है। इंदौर में प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली टीएल बैठक अब वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। डिंडौरी में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के प्रचार प्रसार के लिए एलईडी प्रचार रथ को रवाना किया गया और एनटीपीसी विंध्याचल में आयोजित विंध्याचल प्रीमियर लीग में विंध्याचल वॉरियर्स ने विंध्याचल स्ट्राइकर्स को हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचेंगे, व्यापार और निवेश को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश परिषद की बैठक आज बस्तर में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी होंगे शामिल। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमता कार्य समूह का सम्मेलन, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से करेंगे शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में असद भोपाली के लिखे गीत के साथ। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है पारसमणि।

0: श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं बातों बातों में फिल्म से लिया गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार हैं अमित खन्ना, संगीत राजेश रोशन का है।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वरों में गीत फिल्म से ली हसरत जयपुरी की रचना। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

छोटी सी बात। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं येसुदास और आशा भोसले के स्वरों में। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल, और अब लीजिए आपको सुनवा रहे हैं तीन देवियां फिल्म से लिया गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, संगीत SD बर्मन का है और गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

सगाई फिल्म से लिया गीत सुनिए। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के स्वरों में गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत है रवि का।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: और सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

श्रोताओं, अंत में आपको सुनवा रहे हैं नाइट इन लंदन फिल्म से लिया गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, रचना है आनंद बख्शी की।

0: इसी के साथ सुनहरे पल कार्यक्रम से अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: सुनहरे

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
3: Recognizing the ambitious
4: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
3: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
5: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
6: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीक की प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है।

0: गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
2: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिन्दुस्तान ने

0: की मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Corps Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
3: EFTA countries se Bharat mein अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
2: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
3: 2030 tak humne 500 gigawatt clean energy aur 5 million ton green hydrogen produce karne ka target rakha hai. Green energy investment नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
2: द समिट वॉज

0: नमस्कार, आज के इस विविध रंगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में जिस शख्सियत से हमारा साक्षात्कार होने जा रहा है, आप हैं पद्मश्री विभूषित पर्यावरणविद, प्रकृति प्रेमी और सुदूर अंचल के आदिवासी समूह को शिक्षा के प्रचार प्रसार का अलख जगाने अथक प्रयास में जुटी हैं, ऐसी शख्सियत है जनक पलटा मैडलिकन। जीवन जीने की कला से परिपूर्ण जनक दीदी ने जियो और जीने दो के विचार से सभी को प्रेरित किया है। जिंदगी जीने के लिए है, जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ तुम्हारा है। ये धरती, पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ पौधों से आच्छादित प्रकृति की गोद में बसी सुरम्य पहाड़ियाँ, ये सब प्रकृति प्रदत्त उपहार हमें मिले हैं, फिर क्यों ना इन्हीं के साथ जीवन गुजारा जाए। इन्हीं संदर्भों को लेकर हमारी एक लंबी बातचीत हुई जनक दीदी से, तो आइए उनकी जीवन यात्रा के साथ उनकी धूप छाई सफर के हम सफर बनकर हम भी साक्षी बने। प्रस्तुत है जीवन यात्रा की एक लंबी कहानी जनक पलटा मैडलिकन की जुबानी।
1: नमस्कार, मेरा सौभाग्य है कि आकाशवाणी इंदौर से आप मेरे से चर्चा करने आए हैं। आपने जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन की ये यात्रा जो प्रकृति और पर्यावरण और समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहने की जो यात्रा है। मेरे माता पिताजी चंडीगढ़ में लंबा टाइम मैं उनके साथ रही, वहीं मैं स्कूल तक पढ़ी और मेरा जन्म जालंधर में हुआ था। ये पलटा सामने मेरे पिताजी का है। गुरु नानक देव जी की बहन बीबी नानकी जी पलटा परिवार में ब्याही थी और मैडलिकन मेरा नाम मेरे पति जिमी मैडलिकन के नाम से है। शादी के बाद जनक पलटा का नाम जनक पलटा मैडलिकन हुआ। मैं 15 साल की थी, अचानक एक दिन

बेहोश हो गई। तब 10वीं पास की थी मैंने चंडीगढ़ में, तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और दाखिल किया गया। बताया उन्होंने कि एक ओपन हार्ट सर्जरी लगेगी इसको, लेकिन देखते हैं जो भी कर सकते हैं। तो लगभग 9 महीने वो कुछ स्ट्रेप्टोपेंसिलिन के इंजेक्शन, कुछ जड़ी दवाई जो भी देना था देते रहे। मैं उकता गई, मैंने कहा कि आप मेरा ऑपरेशन कब करेंगे। तो एक दिन हमारे कोई पड़ोसी थे, वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सुशीला नैयर जी, जो थी बापू जी की, महात्मा गांधी जी की और विनोबा जी की पर्सनल डॉक्टर थी वर्धा में, फिर बाद में वो केंद्रीय मंत्री बन के स्वास्थ्य की आ गई दिल्ली में। तो उनके मौसा जी उनके पास गए, हमारी एक बच्ची पड़ी है अस्पताल में, उसका ऑपरेशन नहीं कर रहे और बता भी नहीं रहे क्या कारण है। तो इंक्वायरी कराई उन्होंने, पता चला 14 घंटे की सर्जरी है और किसी को एनेस्थीसिया 14 घंटे का देना नहीं आता। तो उन्होंने कनाडा से मंत्री जी ने बुलाया एक डॉक्टर भट्टाचार्य को, इंडियन, मुझे एनेस्थीसिया दिया और वहाँ के चंडीगढ़ के डॉक्टरों को पीजीआई के एनेस्थीसिया देना सिखाया। मुझे शायद 2-1 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा, जनक, मेरे हाथ पे हाथ, बाजू पे हाथ ऐसा थपक के कहा, आंखें खोलो देखो जनक, यू हैव मेड द हिस्ट्री, तुम्हारा भारत का पहला ओपन हार्ट सर्जरी सफल हो गया, आंखें खोलो। वो 2-3 बार कह रहे थे, बस मुझे इतना ही याद है कि मैंने आंखें बाद में खोली, लेकिन ईश्वर से कहा, आपने मुझे ये जिंदगी, नई जिंदगी दी है, मेरा जीवन अब केवल आपका धन्यवाद देने में लगाऊंगी, थैंक यू करने में लगाऊंगी। तो कुल मिला के ये एक अंदर एक परमात्मा से आत्मा का एक संकल्प, जिसका पता नहीं था मतलब क्या है, कैसे होता है, क्या होता है। मैं ठीक होके और 3 महीने लगे, 1 साल के बाद घर आ गई, मैं नॉर्मल लाइफ लीड करने लगी, पढ़ने लगी, पढ़ाने लगी। कभी पढ़ने कॉलेज में नहीं गई, पढ़ाई खूब की मैंने, नौकरियां की, सरकारी भी, कॉलेज में भी पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में भी, यूजीसी रिसर्च फेलो थी, हाई कोर्ट में भी ट्रांसलेटर थी। करते करते मेरे जीवन के 16 साल निकले, और अस्पताल से आने के बाद 1965 में मैं वापस आई, 64 में दाखिल हुई थी, तो 81 तक मेरा जीवन अंदर की यात्रा साथ साथ चलते रहे कि ये प्रभु का धन्यवाद। छोटा मोटा सोचती थी कि कोई धन्यवाद देना है, किसी बच्चे को पढ़ा दिया, किसी ब्लाइंड आदमी को उसका पढ़ के सुना दिया, उसका कुछ लिख दिया, कोई आग लग गई, टेलर लोगों की गुमटियाँ जल गई, पैसे इकट्ठे करके उनको मशीनें ला दी, लेकिन मुझे कभी भी संतोष नहीं था उससे कि ये तो पार्ट टाइम थैंक यू है ईश्वर को, फुल टाइम कैसे कर रहा। तो उस यात्रा में मैंने सारे तीर्थों पे गई, हर 3-4 महीने में हरिद्वार जाती, ऋषिकेश जाती, फिर चारों धाम किए, राधा स्वामी मिशन, ब्रह्म कुमारी मिशन, सारी देवियाँ, सारे माता जितने भी उस एरिया में थे, सारे धर्मों का, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि मेरे, जो मैं सोचती हूँ कि एक साधारण इंसान होने के नाते मैं किसी की वो साध्वी बनूं और मेरे लोग पैर छुएं, ऐसा नहीं बनना। मुझे राजनीति में हिस्सा नहीं लेना, मुझे विदेश नहीं जाना, लेकिन मुझे मानस की सेवा करनी है, मानवता की। वो समाज, उसमें कौन सी जाति, कौन सा धर्म, लड़के लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं। तो आखिर मेरी जो पढ़ने लिखने की, ज्ञान की यात्रा थी, वो 16 साल चली, सारे धर्म ग्रंथ भी पढ़े, और मैंने लिख के दे दिया कि मेरे जीवन में अब मैं फुल टाइम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, अब पार्ट टाइम धन्यवाद नहीं दूंगी। तो उन्होंने मुझे, मैं यहाँ सरकारी ड्यूटी पर एक होम मिनिस्ट्री के साथ रिसर्च फेलो का मेरी पोस्ट थी, चंदगीराम पहलवान के दंगों का अध्ययन करने आई थी, तो रेजिडेंसी में ऑफिशियल गेस्ट थी, आकर कुछ लोगों को इंटरव्यू करना था। तो सबसे पहले, पहला इंटरव्यू सुमित्रा ताई से हुआ, दूसरा इंटरव्यू

निरंजन जमींदार साहब बड़ा रावला वाले, उनसे हुआ जूनी इंदौर। तीसरा इंटरव्यू एक बहाई मैडम ताहिरा वजदी, जो कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हेड थी। तो तीनों के साथ इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू इस बात पे थी कि ये दंगे क्यों हुए, आगे से दंगे कैसे रोके जाएं, कभी ना हो। सबने विचार किया। सबसे पहले ताई ने कहा, आप तो, मैंने कोई ऐसी लड़की अभी तक नहीं देखी, आप तो इंदौर आ जाओ, हमें बहुत ज़रूरत है ऐसी लड़कियों की। उसके बाद जमींदार साहब ने बोला, मैंने कोई अकेली लड़की, आप तो पंजाब की शेरनी बच्ची हैं, आप यहाँ तो कोई लड़की अकेली घूमती नहीं है, उसको जाने नहीं देते, वो आगे ऐसा हिम्मत नहीं रखती, तो आप आ जाओ यहाँ। तो तीसरा मौका, वो मैडम वैदी जो थी बहाई, वहाँ जब मैं गई तो उनसे पूछा कि ये क्या है जमीन, ये जो मैं बता रही हूँ भमोरी में। तो उन्होंने कहा, वी आर वेटिंग फॉर समबडी लाइक यू, इफ यू कम हेयर वी विल डू वंडर्स। हम लड़की, आदिवासी लड़कियों का, महिलाओं का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा में बहुत पीछे हैं। तो ये मेरा, वहाँ से मैंने प्रभु इच्छा करके चली गई। इतने में 3 4 दिन बाद मुझे टेलीफोन आया संस्थाओं का, जो एक मैडम मिसेस सुराबजी थी, उन्होंने कहा कि तुरंत इंदौर जाना है तुम्हें, जगह है, फंड सैंक्शन हो गए हैं 3 लाख रुपया, इंस्टीट्यूट शुरू करना है, पर कोई चलाने वाला नहीं है, हमें बताया कि तुम आ सकती हो इंदौर, तो तुम आ जाओ। तो मैं आ गई और वहाँ भमोरी में, उस 6 एकड़ ज़मीन में पीने के पानी का नल नहीं था, बाहर कहीं लाइट नहीं थी, एक सर्वेंट रूम था 10 बाई 10 प्लाई का बना हुआ, और कहीं टूटा सा टॉयलेट था, कहीं टूटा सा किचन था। और मैं चंडीगढ़ से आई थी, और मैं वहाँ पर और कोई इंसान नहीं रहते थे, दीवार भी नहीं थी, रसोमा के पीछे एक तरफ कलाली थी, इधर सारी गाड़ियों की बॉडी बिल्डिंग ठक ठक ठक ठक चलती थी, और लोग बहुत डराते थे कि ये बहुत खतरनाक एरिया है, यहाँ बहुत चोर उचक्के रहते हैं, क्रिमिनल रहते हैं, तो आप अकेली सुरक्षित नहीं हैं। तो मैंने बोला, मिसेस गांधी से ज़्यादा सुरक्षा नहीं खरीद सकती हूँ। फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा, नहीं फिर भी चलिए, आप अब आई हैं, हिम्मत है, सब नौकरी इतनी अच्छी, क्लास 1 छोड़ के आई हैं। मैं आई नहीं, मुझे ईश्वर ने बुलाया, और उसने बुलाया है, मेरा रक्षा का काम उसका है, मैं उसके काम से आई हूँ। तो वो 3 साल में भी काम शुरू किया, महिलाएं गांव में जाना शुरू किया। जब झाबुआ गई तो पता चला वहाँ नारू की बीमारी थी, पानी से होती थी, तो घर घर गई मैं, गांव गांव गई, 302 रात 302 गांव में गुजारी मैंने, सन 85 86 की बात है। तो उन लोगों को समझ आई, भिलाली में नाटक भीली में करवाए, उनको समझ आ गई, तो उन्होंने नारू मुक्त हो गया जिला, तो मेरा नाम भेजा गया, तो मुझे पृथ्वी सम्मेलन में बुलाया गया, UNEP ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर सम्मान लेने के लिए, मेरी संस्था का ही नाम लिखा था मैंने उस पर। लेकिन 14 दिन मैंने सुना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, प्राकृतिक संसाधनों को ऐसा उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहे। मैं तो पागल हो गई ये बात सोच के कि ये ऐसा कैसे होगा, अभी स्थिति बहुत खराब है। मैं जब इंदौर आई तो लोगों से पूछने लगे, अपने यहाँ पानी की क्या स्थिति है, बोले कभी नर्मदा आती है कभी नहीं आती। फिर पंजाब से कैंसर ट्रेन चल चुकी थी, एक फिल्म बन चुकी थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो पानी की गंगा मैली हो गई, नर्मदा कभी आती है कि नहीं आती है, और जमीन कैंसर पैदा कर रही है। तो वो संसाधन हमारे क्या हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हम देंगे। उसके बाद मैं बहुत विचलित तो हुई, लेकिन मेरी माँ ने जीवन में ये सिखाया था कि प्रॉब्लम ले

0: के मत बैठो, सल्यूशन पे बात करो। प्रॉब्लम पता चल गई, इसके बाद प्रॉब्लम शब्द नहीं बोलना, अब चलो सल्यूशन पे। तो मैंने अपने आप के साथ समझा उसका, उसका फिर से एक परिभाषा मेरे अपने लिए या दूसरों के लिए हिंदी में, विश्व का कल्याण करना होगा, हम करेंगे, मैं करना सीखूंगी। अब कैसे करना है? By thinking globally and acting locally, मैं करूंगी। और जो मेरी संस्था थी वहाँ जो लड़कियाँ हैं, इस बीच में ये बात जब बुलाया गया तो 92 की बात है, तब तक मेरी संस्था 7 साल की हो गई थी, मेरी शादी भी हो गई थी, मेरे पति भी वो हाथ से सब काम कर लेते थे। तो अब हम दो जनों ने मिलकर सोचा ये कैंपस 6 एकड़ का है, इसको ग्रीन बनाएंगे, इसमें जैविक उगाएंगे। तो उन्होंने पहले कुआं साफ किया, पानी साफ करके पानी का साधन बना दिया, रिचार्ज कर दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग 89 में। मुझे लगा कि अब हमें ये विश्व का कल्याण करना होगा, मेरे से शुरू करूंगी मैं। और जो बच्चों को मैं सिखाती हूँ, जिन लड़कियों को मैं सिखाती हूँ, उनमें से एक एक लड़की ऐसी बन के जाएगी अपने गांव में वापस, जो विश्व का कल्याण करेगी और समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहेगी, और हम अपना संस्था ऐसी बनाएंगे और हम अपना जीवन ऐसा जिएंगे। तो मेरे पति और मैंने मिलकर वो संस्था ऐसी बनाई जो जीरो वेस्ट थी। कंघी का बाल भी नीचे नहीं फेंका जाता था, बाटिक प्रिंटिंग में काम लिया गया उसका, एक भी चीज बाजार से कुछ नहीं, सब सब उगाओ, सब सेवा करो, 2 घंटे काम करो, हर चीज अपने हाथ से काम करना है, सबको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उपयोग। उन्होंने पहला सोलर किचन बनाया, जिसको देख के लड़कियां गांव गांव सोलर किचन ले गई। आपको मैंने ये सोलर किचन दिखाया, इस सोलर किचन से महिलाओं ने अपना आजीविका, अपना खाना बना लिया। हमें पता था कि कुकर से खाना बनाना एक परिवार का, क्योंकि हम शहर वाले थे, मैं तो चंडीगढ़ से आई थी। उन्होंने तो गाय का भी बनाना शुरू कर दिया, बैल का भी बनाना शुरू कर दिया, भैंस का भी खाना बनाना शुरू कर दिया, उस पर बच्चों को पानी उबाल के पिलाना शुरू कर दिया, बीमारियां खत्म कर दी, ये डायरिया वायरिया सब खत्म हो गया। तो ये जो एक सेना तैयार हुई 6,000 लड़कियों की 500 गांव में, ये एक मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अगर कोई मुझे पीछे पूछे कि आपके जीवन में क्या पाया है, या कोई सबसे बड़ी जीवन में क्या उपलब्धि मेरी नहीं संस्था की, वो हर लड़की जो अपने गांव में जाके वो कर रही है, जिसकी अब जरूरत है, जो आने वाली पीढ़ियों को बचाएगी। तो उसके बाद मेरे पति और मैं सोलर किचन बनाया, सोलर कुकर गांव में गए। गुजराती साइंस कॉलेज की एक मैडम जयश्री सिक्का ने कुछ बच्चे दिए ऐसे लड़के मेरे को, कि ये इनको कोई असाइनमेंट देना फील्ड वर्क, बॉटनी के लड़के थे, 500 कुकरों के जिसके पास थे एड्रेस दिए, जाके बताओ वो कुकर क्या हुआ, 10 साल पहले दिए थे। वो लड़के आके बताए, लिख के भी लाए, लड़कियों ने पढ़ लिख जाती थी, लिख के गई थी, उनको जीजा जी बोलती थी लड़कियां मेरे हस्बैंड को, मैं बड़ी दीदी। तो बोला जीजा जी हमारी तो इज्जत बचा दी आपने, सबसे ज्यादा बलात्कार यौन शोषण जंगल में, जंगल दूर हो गए, वहां होता था, हमारा भारी उठा के वजन बच्चा गिर जाता प्रेगनेंसी में, जंगल हमने खत्म किए हैं, आपने हमारे जंगल कटने बंद कराए। और बूढ़ी औरतों ने कहा बच्चे सब सिटी चले गए, अब कोई लकड़ी लाने वाला ही नहीं था, अब तो घर पे ला दिया कुकर आपने खाना बनाने के लिए। तो कुल मिला के उन्होंने कुछ चीजें बना के बेचना शुरू कर दी, चाय की गुमटी खोल ली उससे हाट बाजार में, एक कुकर लगाया, 3 घंटे चलाया, 5 रुपए की चाय उस टाइम पे, छुट्टी वाले दिन सिलाई मशीन से अलग पैसे। तो इस तरह से एक क्रांति, ये विकास जो शब्द है, विकास सड़कें, पेड़ काटना और सड़कें बनाना, और ज्यादा से ज्यादा एसी चलाना, ज्यादा से ज्यादा उपकरण चलाना, वो नहीं है, हम प्राकृतिक तरीके से कैसे जिए।
1: इस समय आप सुन रहे हैं पर्यावरण प्रेमी जनक पलटा मैगलीगंज से बातचीत।

0: जनक जी हमारी हजारों वर्ष पुरानी वेदवाणी, वेदों की ऋचाएं इसी ओर संकेत देती हैं कि समस्त प्राणियों में संभाव हो, आपसी प्रेम भावना हो। वाहे गुरु ईसा पैगंबर, राम ने प्रेम सिखाया, एक है हम सब भारतवासी, कोई नहीं है पराया।
1: हमें जो हमारे ग्रंथों में सिखाया गया है, हमें संयम से जीना है तो हम आकाश बचाएं, धरती बचाएं। हम कहते हैं गौ माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, लेकिन करते हैं सब कुछ उल्टा। तो मैंने ये अपना फार्मूला, मेरा पर्सनल, नीचे से शुरू हुआ, बिगाए, फिर तय किया संस्था छोड़ दें, संभाल के लोगों को अब किसी गांव में जाके रहेंगे ताकि संस्था भी चलती रहे और हम भी जीवन में अपने हाथ से करें अंतिम जीवन। तो कोई पेंशन नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं। आके ये घर मेरे पति ने बनाया, आधा एकड़ जमीन ली और इसको भी वैसा ही बनाया कि यहाँ पर सरकार की बिजली नहीं है, सरकार का पानी नहीं है और हम अपना उगा के खाते हैं और यहाँ से आदिवासी परिवारों को भी बिजली मिलती है। तनावदिया गांव में आदिवासी बस्ती 50 परिवार है, 19 स्ट्रीट लाइट उनको फ्री मिलती है। 13 साल हो चुके दिसंबर में, विंड और सोलर दोनों, एक एक किलो वाट। जब हमें ये कहा गया हमारे ग्रंथों में कि समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहना, तो मुझे मेरे पति को गांव के लोगों के साथ, पहले जो हमारा पड़ोस है बिना बिजली के बैठे, पहले उनकी बिजली चालू की, अपनी बिजली बाद में बनाई। तो हमें उनके बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ प्रेम करना, पेड़ पौधों से प्रेम करना, गाय रखी तो गाय के बछड़े बड़े करके बैलगाड़ियाँ चला रहे हैं अब गाँव में। यहाँ तो कोई भी बछड़ा जिंदा नहीं, सब बछड़े मरने देते हैं गाँव में। तो हमने अपनी गाय की बछड़े उन गरीब लोगों को पहुँचाए जिनको बैलगाड़ी चलाना थी। तो इसके अलावा बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, जैसे ये लड़का है आप बैठा है आपके सामने नीलेश, ये मास्टर ऑफ सोशल वर्क का इंटर्नशिप है। तो बच्चे यहाँ से एक सोलर ड्रायर सीख के इस टाइम बड़ी कंपनी बना ली वरुण रहेजा ने। एक ये समीर शर्मा, ज्वलंत और रोहित, इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट निकाल के जूठा खाना, फालतू खाना उठा के खाद बना के दे देना। इन्होंने अमरनाथ यात्रा को जीरो वेस्ट किया, अमरनाथ यात्रा में सोलर डिशेज लगा के लंगर दिया, बायोगैस से किया, एक इतनी पन्नी भी फेंकने नहीं दी यात्रियों को, अमरनाथ जी की यात्रा। तो मेरा अभी एक काम, 1,74,000 लोग, बच्चे बड़े, आधा दिन मेरे साथ यहाँ रहते हैं, जो भी यहाँ है ये सारी 13 प्रकार के सोलर कुकर देखते हैं, चलता हुआ देखते हैं और पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज के बच्चे आते हैं, वो करना सीखते हैं प्रैक्टिकल, विदेशों में जाके एडमिशन लेते हैं बड़े बड़े कॉलेज में। तो मुझे ये जीवन में सबसे सुखद है। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हमारी दोनों की हुई, कार में हम भी दोनों पीछे बैठे थे, ड्राइवर की आंख लगी, एक्सीडेंट हुआ, वो चले गए, वो रहे नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ। लेकिन आज मुझे ये खुशी है अपने जीवन में कि मैंने अपना जीवन, मैं जीरो वेस्ट हूँ, मैंने अपना जीवन वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे और कुछ नहीं करना। ठीक है, किसी से फंडिंग नहीं लेती, किसी से प्रोजेक्ट नहीं लेती, किसी से गिफ्ट नहीं लेती। ये लोग आजकल बहुत कंपनियां मिलती हैं आपको गिफ्ट देने वाली, तो खरीदने वाले लोग बहुत हैं, लोग मुझे कोई खरीद नहीं सकते, ना मैं कोई चीज़ खरीद के खाती हूँ। तो कचरा दान नहीं है, ना यहाँ ना संस्था में, बाजार से सिर्फ नमक आता है, चाय पत्ती, कोई मेहमान आएंगे उनके लिए कोई चीज़ आ जाएगी। मेरे जीवन में कोई खाने के लिए लाया है प्लास्टिक में, तो भैया ये सेम लाया है, तो भैया थैली वापस ले जाना, मेरे पास कचरा दान नहीं है। तो मैं टाइम भी वेस्ट नहीं करती, फ़ोन

0: के संरक्षण के ऊपर लोगों को सिखाया। आदिवासी गांव में अभी भी जाती हूँ तो अभी भी सौर ऊर्जा और इसका लोगों को, फेसबुक, मैं सोशल मीडिया में फेसबुक में लिखती हूँ कि आज मैंने ये नींबू निकले और इसका ऐसे शरबत बनाया, आज मेरे शहतूत निकले इसका ये जैम बनाया। तो ऐसा करके फूड प्रोसेसिंग, तो हमारी संपन्नता जो है प्रकृति की, प्रकृति इतना देती है, हमें लेते आना चाहिए। हम प्रकृति पे अतिक्रमण कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि चढ़ गए हम ऊपर, चांद पे, सूर्य पे भी चढ़ जाएंगे, पर मैं तो नहीं चढ़ती, सूर्य तो मेरे पास है, मेरे को क्या जरूरत है वहां तक जाने की। वो मुझे सब देता है, पवन पुत्र मुझे देते हैं, धरती माँ मुझे देती है, गाय माता देती है, तो इन सब से मैं धरती माता की जय, भारत माता की जय करती हूँ।
1: पर्यावरण संरक्षण संवर्धन में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के साथ थर्मल पावर का उपयोग हम सब के लिए कितना अनुकूल है और सोलर पैनल से किस तरह जीवन सुलभ हो सकता है, तो आपने अपने मन की बात कही।
0: थोड़ा सा आपको ये बात का फर्क बता देती हूँ। एक सोलर पैनल वो है जो सिलिकॉन से पैनल बनते हैं जिनसे बिजली बनती है, उसको फोटोवोल्टाइक बोलते हैं। उसकी एक तारीख है जिस दिन उसको बनाया है, उसका एक लाइफ टाइम है, 10 साल, 15 साल, जितने भी साल है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, उसका सेल, अपन बैटरी में डालते हैं कि नहीं, सेल खत्म हो जाते हैं, घड़ी में भी डालते हैं, उस दिन वो जो सेल, बैटरी और पैनल जहां हम गिराएंगे, वो बम की तरह, बम जितना नुकसान करेगा। तो और इतने सारे कहाँ गिराएंगे और धरती में क्या उगेगा फिर? तो सोलर थर्मल जो एनर्जी है, जो डायरेक्ट कुकिंग, आपने सोलर कुकर हमारा देखा, डायरेक्ट सूर्य की तरफ किया, खाना बना रहा है, इससे जहाँ बिजली चाहिए बिजली बनाए, लेकिन हमारे पास गोबर है, हमारे पास बायोगैस है, हमारे पास बायोमास है, हमारी ग्रीन एनर्जी, ये बस वो फोटोवोल्टिक से या बैटरी से, ग्रीन महंगी है, बैटरी से चला रहे, बैटरी वाली बस वो धुआं तो नहीं कर रही, लेकिन बैटरी खत्म होगी फिर कहाँ जाएगी? वो बैटरी बम की तरह पल्यूट करेगी। ग्रीन एनर्जी विकल्प है, और फोटोवोल्टिक सोच समझ के जितनी चाहिए उतनी करें, लेकिन अति नहीं करें। और ये जो डायरेक्ट कुकिंग है, इंदौर नमकीन क्लस्टर है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, आंगनवाड़ियां हैं, सब में ये सोलर किचन जैसे हमारा बना है, एक इसमें से कुछ भी नहीं जो बाद में बम बनेगा, ये डायरेक्ट थर्मल एनर्जी है। तो इनका जहाँ लाभ लिया जा सकता है, इसको इंडिया में बढ़ावा दे। गोधन, गाय की सेवा, जहाँ भी गौशाला है उसका, उससे बिजली पैदा करें, जहाँ भी बायोमास है, ये बचे हुए पत्ते हैं, बचा हुआ कुछ पराली है, अब पराली से बनाए, नरवे से बनाए, गैस बनेगी, उससे उससे गैस बनेगी। देखिए, मेरे अनुभव के आधार पर दो बातें मैं कहती हूँ। एक तो ये कि इंसान को ईश्वर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना की क्षमता दी है, एक विवेक दिया है, एक आत्मा दी है। हम इंसान जैसा जिए, इंसान का काम है कि इस सृष्टि की बाकी सब रचनाओं का संरक्षण करे, समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहना हमारे जीवन का काम है, ये मनुष्य को इसलिए बनाया गया, वो करना है और कोई तरीका नहीं। दूसरा ये है, हमारे पास ये चॉइस नहीं है। अब मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, मेरी 4 सर्जरी कैंसर की हुई, फिर मैं एक एक्सीडेंट में बची, मुझे समझ में आया कि ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन एक चॉइस है जीना कैसे है। अब मैं वैसा जी रही हूँ जैसा मुझे जीना चाहिए, एक बंदा होकर, एक इंसान बनकर। बस मैं सबको यही कहती हूँ, आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय मुझे दिया बात करने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद।
1: तो ये थी पद्मश्री विभूषित पर्यावरणविद, प्रकृति प्रेमी जनक पलटा मैकलिगन। हमसे भेंट करने के लिए आकाशवाणी के साथ

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
5: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रेखा सोलंकी के गाए मालवी लोकगीत। प्रस्तुत है ये पारंपरिक रचना।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं रेखा सोलंकी की गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए ये पारंपरिक रचना।

आप सुन रहे थे रेखा सोलंकी के गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आपको सुनवा रहे हैं लियाकत हुसैन के स्वर में गजलें। पहले सुनवा रहे हैं अब्दुल सलीम की गजल, स्वर है लियाकत हुसैन का।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लियाकत हुसैन के स्वर में गजलें। अब सुनवा रहे हैं मोहनीश नकवी का कलाम।

0: आप सुन रहे थे लियाकत हुसैन के स्वर में सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: और सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शंभू प्रसाद पवार का गायन, राग है देसी। तबला संगत कर रहे हैं यूसुफ खान और सारंगी पर हैं शंकरलाल।

Ma ba ni sa pa sa ni sa pa ra ni sa.

0: आप सुन रहे थे शंभू प्रसाद पवार का गाया राग देसी। तबला संगत थी यूसुफ खान की और सारंगी पर थे शंकर लाल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?

0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे भिंड जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भिंड जिले में इन दिनों तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है। जिले में जल संरक्षण के लिए पुराने जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई की जा रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड मेहगांव द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक वन खंडेश्वर मंदिर परिसर स्थित प्राचीन तालाब पर सामूहिक श्रमदान किया गया। इस मौके पर पक्षियों के लिए पानी के सकोरे भी विभिन्न स्थानों पर टांगे गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रस्फुटन समिति सदस्य, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिकों एवं CMC LDP विद्यार्थियों की सहभागिता रही। जिले में इन दिनों गेहूं खरीदी का कार्य प्रगति पर है। चंबल संभाग के कमिश्नर सुरेश कुमार ने कल भिंड एवं मुरैना जिलों के विभिन्न गेहूं उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप खरीदी एवं तौल तथा अन्य प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि किसानों को खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर छाया, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। भिंड जिले में बीते 5 मई से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशों के अनुसार विकासखंड मेहगांव मुख्यालय पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। इस दौरान 5 जून तक शिविर के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में कबड्डी एवं वॉलीबॉल खेलों के साथ साथ योग और व्यायाम कर खिलाड़ियों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्टर भिंड की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में बीते दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में कुपोषण मुक्त भिंड बनाने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों पर क्रमानुसार कार्यवाही कर लाभ दिया जाए। उन्होंने सभी CDPO को प्रतिदिन फील्ड मॉनिटरिंग करने और सुपरवाइजर को साथ ले जाने के आदेश दिए। सुपरवाइजरों को भी निर्देशित किया गया कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों पर रोजाना पहुंचें और कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों की जानकारी लें और रजिस्टर में दर्ज करें। कलेक्टर ने कहा कि अस्पतालों में जन्मे हर बच्चे को डिस्चार्ज के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस योजना के तहत योग्य बच्चों को लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिन हितग्राहियों का आधार कार्ड नहीं बना है उनके लिए विशेष कैंप आयोजित कर आधार बनवाने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही MM बॉस्क की एंट्री 100% पूर्ण करने पर भी बल दिया गया। उन्होंने मातृवंदन योजना की विस्तृत समीक्षा की तथा सेम मेम बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बैठक के अंत में कहा कि पोषण स्तर में सुधार लाना और कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करना सभी का प्राथमिक दायित्व है। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए टीम वर्क जरूरी है। आप सभी इस दिशा में गंभीरता से कार्य करें। कलेक्टर भिंड की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में बीते दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड, समस्त CEO जनपद पंचायतों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों पर गहन समीक्षा की और पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली, जिसमें विशेष रूप से जलगंगा संवर्धन अभियान 2025-26 और 2026-27 के तहत चल रहे खेत तालाब निर्माण पर जोर दिया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री तथा भिंड जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भोपाल स्थित निवास पर कल भिंड कोर कमेटी की अत्यंत

महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में भिंड जिले के समग्र विकास कार्यों, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक विषयों को लेकर विस्तारपूर्वक समीक्षा और विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के अनेक प्रमुख जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद संध्या राय, विधायक अमरीश शर्मा, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कामना सिंह भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया, संभाग प्रभारी अभय प्रताप, जिला प्रभारी अमीर सिंह पटेल, शैलेंद्र बरुआ एवं नगरपालिका अध्यक्ष ममता भदौरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। भिंड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन,
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में। आज मैं हूं आपके साथ शक्ति साकल्ले। और कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले एक बार हम अपने फ़ोन नंबर बता रहे हैं, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और लेते हैं हमारा पहला फ़ोन कॉल। हेलो,
2: तितलियां फूलों पे मंडराती होंगी, भौरों को लुभाती होंगी, याद तो सकती जी हम आपको करते, शायद हिचकियां भी आप ही को आती होंगी।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत सारी हिचकियां आती हैं हसीना जी, हम आपकी खिलखिलाती हुई आवाज से ही हम पहचान गए हैं, क्योंकि आपका शायराना अंदाज ही कुछ ऐसा है। और एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए सभी श्रोताओं को।
2: हसीना भी मंसूरी बोल रही, कालजाना का इंदौर। हेलो हेलो मैम, गाना सुनवा दीजिए।

0: जी
1: नमस्कार मैडम। हेलो हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
1: हाँ एमएस हार्टलाइन।
2: हाँ जी हमको आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी जी
1: हाँ जी आ रही आ रही आ रही
2: जी।
1: मैं राकेश वात्री बोल रही हूँ दुबे के बगीचे से।
2: अच्छा जी,
1: जी।
2: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: अलग अलग फिल्म का गाना सुनना मैडम, कभी बेकसी न मारा।
2: अच्छा जी, किशोर जी और लता जी की आवाज।
1: जी जी
2: कितने सालों से जुड़े हैं आप हमसे?
1: अरे मैडम मैं तो गाना तो सुनते रहता हूँ, लेकिन मैंने पहली चक्कर आपके तरफ फोन लगाया।
2: पहली बार कॉल किया और लग गया।
1: जी पहली चक्कर में मेरा फोन लगा।
2: खुशी हो रही है और शायद आपको भी खुशी हो रही
1: है।
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: और आपका भी 31वां स्थापना दिवस मना रहे हैं।
2: हाँ हाँ,
1: इसके लिए आपको पूरे कर्मचारी के पूरे को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना।
2: अच्छा अच्छा
1: जी जी।
2: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में मेरी दो बेटियां हैं और हम दोनों मियां बीवी।
2: अच्छा जी, तो लीजिए हम आपकी फरमाइश पर ये गीत आप तक पहुँचा रहे हैं।
1: जी मैम
2: फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत जी।

0: हेलो हेलो, MH हॉटलाइन
1: मैं खाते गांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा था।
0: जी। गोविंद जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: सर, ये काली टोपी लाल रुमाल का है, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज का, लागे छूटे ना।
0: लागी छूटे ना, कुछ गुनगुना सकते हैं आप?
1: बस गुनगुनाना तो क्या, मेरी बहुत उम्र जरा बहुत देसी हो गई है क्या,
0: आपकी आवाज तो बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए
1: हाँ,
0: हमने
1: आवाज
0: आपसे
1: तो वो
0: कहा।
1: तो सभी सभी बताते हैं ये तो।
0: हाँ जी, बिल्कुल।
1: वो क्या है सर, मेरा एक अलग ही एक कमरा है ये,
0: अच्छा
1: तो उसमें मैं मतलब जो है ना, मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह ये जैसे करना है। हमारे इधर बैतूल का करता हूँ मैं, खंडवा का करता हूँ, इधर भिंड मतलब गुना तक चले गया मैं वैसे, और ये मेरा उसका भी नंबर लगने वाला है बम्बई का भी।
0: रिकॉर्डिंग किस संदर्भ में?
1: ये सेंटर में सर ये रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं, हर सोमवार को होती है जैसे मुंबई की,
0: अच्छा,
1: और गुरु हाँ गुरुवार को 4 से 5 में देते हैं वो
0: हाँ जी हाँ जी
1: बैतूल,
0: हाँ जी
1: हाँ बैतूल की भी देते हैं। अभी मैंने अभी उज्जैन की भी शुरू कर दी है।
0: अच्छा।
1: अब मैडम क्या करें, फुर्सत में रहते हैं तो ये यही टाइम पास करो, कुछ करना नहीं धरना अपने। तो हम अभी 21 मई 1953 को मेरा जन्मदिन आ रहा है आपको।
0: जी, आपको जन्मदिन की अभी से हम बधाइयाँ दे देते हैं, ढेर सारी।
1: हाँ
0: जी बिल्कुल, और आप तक आपका पसंद का ये गीत पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर, मेरे एक रेस्कोट रोड पे सर जो है, जो मतलब है जगदीश वारिया है सर, उनकी तरफ से भी सर।
0: अच्छा जी जी बिल्कुल, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ठीक।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते
1: जी दीदी, मैं महेश बिलाला बात कर रहा हूँ, जिला आगरमालवा, ग्राम बनासाती।
0: जी। महेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप?
1: जी दीदी, हम खेती किसानी करते हैं दीदी।
0: अच्छा, खेती किसानी करते हैं। फसल तो कट चुकी होगी फिलहाल, क्या है खेत में कुछ है?
1: जी दीदी, फसल तो कट चुकी है, लेकिन अभी तो हरे मूंग की फसल भी पकने की तैयारी चल रही है दीदी।
0: अच्छा,
1: और आकाशवाणी का कैसा हाल चाल है दीदी?
0: बिल्कुल बढ़िया है। आप तो जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से, सुनते ही रहते होंगे प्रोग्राम।
1: तो सुनते रहते हैं दीदी, क्योंकि हमारे पास वाले स्टेशन भी अब तो उज्जैन भी स्टेशन चल गई है ना,
0: हाँ, बिल्कुल।
1: लेकिन हमें आकाशवाणी इंदौर इतना प्यार देती है कि हम कहीं जाते नहीं है छोड़कर।
0: हाँ, आप सभी का स्नेह है, सही माना जाए तो आप सभी इतना स्नेह करते हैं कि हम बहुत आभारी हैं आप सभी के। आप हैं तो आकाशवाणी है।
1: क्योंकि दीदी आप लोग कार्यक्रमों में बदलाव करते रहते हैं, वो हमें पसंद आते हैं।
0: हाँ जी, बिल्कुल। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी गीत सुना देना आप, गदर पिक्चर का। जी
0: गदर फिल्म का कौन सा?
1: दीदी वो उड़ जा काले का मूवीज खंडवा ऐसा कुछ जी दे दीदी इसमें।
0: हाँ जी, बिल्कुल। आप किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं?
1: दीदी हमें पुरानी या नई दोनों तरह की पसंद है
0: पुरानी और नई फिल्में सभी, और जो
1: जी दीदी।
0: बहुत
1: नहीं में
0: पुरानी
1: जी
0: है।
1: दीदी, ऐसा है कि पिछले साइड की फिल्म बहुत अच्छी रहती है,
0: जी, किस तरह की?
1: जैसे कि दीदी मीडियम साइड की पिक्चर रहती है वो अच्छी होती है। जी
0: अच्छा, मतलब जो अभी बीच का दौर गया है उस दौर की बात कर

0: रहे हैं आप?
1: जैसे कि दीदी मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 से लेकर वो जैसे कि 7 तक की पिक्चर अच्छी है।
0: अच्छा जी, ऐसा
1: ऐसा है दीदी।
0: हाँ जी बिल्कुल, हर श्रोता की, हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है। आपको हम आपका ये पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी आपका।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन?
1: जी, मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ, सागर
0: नंदिनी जी बात कर रही हैं, कहाँ से? सागर से बात कर रही हैं। कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: नाम है किक और सॉन्ग है हिंगओवर।
0: ओके, आपसे
1: जी
0: हमारी पहले भी एक बार बात हो चुकी है।
1: जी मैम, और आज
0: हाँ
1: दूसरी बार हो रही है।
0: हाँ जी बिल्कुल। और जहाँ तक हमें याद है, हमने आपसे बोला था कि आप आगे क्या करना चाहती हैं, तो आपने बोला था हम सोच कर रखेंगे। तो भविष्य के लिए फिर आपने क्या सोचा है, क्या आगे करना चाहती हैं?
1: मैं आगे अभी नर्सिंग करूंगी जी, क्योंकि हमने बीएससी फाइनल कर लिए।
0: अच्छा, चलिए
1: और
0: बढ़िया बात है ये तो।
1: जी मैम,
0: हाँ
1: और मेरी अगर रानू दीदी सुन रही हो तो उनके लिए गाना डेडिकेट, और आपके लिए।
0: जी बिल्कुल, आपकी रानू जी और हम सभी श्रोता इस गीत को सुनेंगे आपके साथ। तो लीजिए, आपका ये गीत हम आपकी रानू जी और सभी श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: ओके मैम, नमस्ते।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं
1: जी, मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ मैम
0: जी? अरविंद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप
1: जी। फिलहाल मैं चित्रकूट से बात कर रहा हूँ वैसे श्रीनगर का जी।
0: जी? अच्छा,
1: जी,
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: फिल्म का नाम रहेगा गिरफ्तार
0: गिरफ्तार।
1: जी। धूप
0: गाने की बोल।
1: में निकला ना करो रूप की रानी।
0: किशोर कुमार की आवाज़ बहुत पसंद है आपको, ऐसा लग रहा है मुझे।
1: जी
0: हाँ जी बिल्कुल। और कौन कौन पसंद है आपको किशोर कुमार के अलावा?
1: किशोर कुमार, मुकेश, नितिन मुकेश
0: और लता मंगेशकर जी
1: जी।
0: क्या करते हैं?

0: आप
1: जी? मेरी किराने की दुकान है
0: जी। अच्छा, और ये गीत
1: आपको सुनते हैं
0: जी। हाँ, और अभी आप कहाँ, घर से कॉल कर रहे हैं या दुकान से?
1: नहीं, मैं अभी तो चित्रकूट में हूँ।
0: अच्छा, से चित्रकूट में है, तो फिर हम आपको ये गीत सुनवा दें
1: जी।
0: जी बिल्कुल।
1: मेरी
0: आपका,
1: किन मैम से बात हुई आज?
0: मेरी शक्ति साकल्ले नाम है मेरा
1: जी। शक्ति साकल्ले जी को दोबारा नमस्कार
0: जी। आपको भी हमारा सप्रेम नमस्कार। और ये गीत आप तक पहुंच
1: जी,
0: रहा है
1: आपका दिन शुभ हो
0: जी। बिल्कुल, आपका भी शुभ हो। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन?
1: शक्ति जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार से शेख फई मोहम्मद।
0: हाँ जी मोहम्मद जी, आपका स्वागत है। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: गवार फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज में।
0: गाने की बोल।
1: तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है।
0: गंवार फिल्म।
1: जी, राजेंद्र कुमार वैजयंती माला अभिनीत फिल्म है, मजा
0: देखी
1: अच्छा
0: आपने ये
1: गीत है इस बार।
0: फिल्म?
1: जी देखिए ना।
0: अच्छा,
1: जी,
0: इसके अलावा और कोई गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: इसके अलावा ये गीत भी तो है, सुना मैंने इसको पहले।
0: हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा और भी तो पसंद होगी आपकी।
1: अब इतने क्या है कि सकते इतनी जल्दी एकदम ध्यान भी नहीं आता, एकदम
0: अच्छा,
1: अपन एक
0: ऐसा
1: सोच के
0: है।
1: रखते गीत न, फिर यूँ तो बहुत गीत रहते, फिर क्या है कि एकदम अचानक ऐसे टाइम याद नहीं आता फिर।
0: अच्छा, क्या गाने के बोल बताए थे आपने?
1: तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है।
0: कोशिश कर रहे हैं हम आपके इस गीत को सुनवाने के लिए। जी मिल गया आपका, रफ़ी
1: जी
0: साहब की आवाज़ में है
1: जी
0: ये
1: रफी
0: गीत।
1: साहब की आवाज में।
0: जी बिल्कुल, रफ़ी साहब को आप पसंद करते हैं?
1: जी रफी साहब और लता जी तो मेरी फेवरेट सिंगर है, पर आज
0: हाँ
1: रफी
0: जी
1: साहब का गीत सुनना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हाल चाल हैं आपके?
1: बढ़िया है मैम, छुट्टी चल रही है अभी, जनगणना से निपटे हैं।
0: अच्छा,
1: जी जी
0: स्कूल में जॉब है आपकी?
1: हाँ, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में HM हूँ।
0: अच्छा जी
1: जी
0: जी बिल्कुल, आपका ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद शक्ति जी।
0: जी। बिल्कुल।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते। ग्राम
0: जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं?
1: सुराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहे हो।
0: जी, हैदर खान जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म नगीना का सुना दीजिए। भूली बिसरी एक कहानी याद आई।
0: आपको कोई कहानी याद आ रही है क्या?
1: कहानी तो बस ना रेडियो की याद आ रही है, जो 1980 से जुड़े हुए हैं,
0: जी,
1: स्कूल के जमाने की।
0: अच्छा,
1: हाँ, बस वही कहानी है।
0: बिल्कुल सही बात है। वैसे भी हम सबके जीवन में कोई ना कोई कहानी जरूर होती है, या यूं
1: हाँ,
0: कहें
1: रहती है
0: कि
1: मैडम, कुछ ना
0: हमारा
1: कुछ तो
0: जीवन ही
1: रहता ही
0: एक
1: है।
0: कहानी है। जी बिल्कुल। क्या करते हैं आप?
1: मैडम, मैं तो खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ,
0: जी, अच्छा।
1: और रेडियो से भी बहुत पुराना से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, वो लेटर भी लिखते रहते हैं मैडम।
0: जी बिल्कुल, हमें पता है कि आप आकाशवाणी से बहुत शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं और आपके पत्र भी हमें मिलते रहते हैं।
1: हाँ मैडम, और फिलहाल तो अभी यहाँ पर बहुत गर्मी है,
0: हाँ, सही बात है
1: बस फिलहाल आपका प्रोग्राम रेडियो पे सुन रहा हूँ, आपके यहाँ खेत पर बैठा हूँ।
0: जी, बिल्कुल।
1: हाँ,
0: लीजिए, आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन
1: ओके
0: करने
1: ओके,
0: के
1: शुक्रिया,
0: जी
1: है ना।
0: जी धन्यवाद आपको फोन करने के लिए।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ दीदी नमस्ते। आपके
0: जी नमस्ते।
1: नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी
0: जी
1: राजेंद्र
0: साहू
1: नगर
0: जी, बिल्कुल
1: गंजवासोदा।
0: बिल्कुल, हम पहचान गए आपको। और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: दीदी
0: और क्या हाल चाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया है। दीदी बहुत बढ़िया है। आप ठीक है?
0: जी बिल्कुल। और पानी बताशे के क्या हाल है?
1: बढ़िया है दीदी बढ़िया है। उसी काम में लगे हुए थे। हमने दीदी से बात की जाए,
0: जी बिल्कुल,
1: काम तो
0: हमें
1: चलता
0: हाँ
1: रहेगा।
0: हाँ
1: फिल्म
0: बिल्कुल। और कौन सा गीत सुना चाहेंगे आज आप?
1: का नाम है फूल और कांटे।
0: फूल और कांटे।
1: हाँ वो शाहरुख खान और काजल वाली।
0: अच्छा, और क्या है गाने के बोल?
1: गाने के बोल तो दीदी ध्यान नहीं आ रहे हैं, लेकिन गीत अच्छा है वो।
0: फूल और कांटे के गाने के बोल आपको याद नहीं आ रहे हैं? गीत तो सभी अच्छे रहते हैं।
1: हाँ तो इसमें क्या कोई सा
0: धीरे
1: भी गीत
0: धीरे
1: हो या
0: प्यार
1: तो
0: को
1: सारे।
0: बढ़ाना
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे ही बढ़ाना
0: जी बिल्कुल, हम आपको ये गीत
1: है।
0: आप तक पहुंचा रहे हैं फोन करने के।
1: और दीदी मौसम कैसा
0: जी, मौसम तो आपको पता ही है कि कैसा होगा। अच्छी बढ़िया
1: है?
0: गर्मी पड़ रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल 42 40 42 हो रहा
0: हाँ
1: है
0: जी
1: दीदी।
0: बिल्कुल, गर्मी का आनंद ले रहे हैं हम। और आप तक
1: बिल्कुल दीदी
0: ये, हाँ
1: गंजवासोदा
0: जी बिल्कुल, और आप तक आपका ये पसंद का गीत भी पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो हेलो,
1: जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं विदिशा से शिवा लोहट बातचीत कर रहा हूँ मैम आपसे।
0: जी शिवा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गीत सुनवा दीजिए, रोटी कपड़ा मकान का टाइटल सॉन्ग।
0: टाइटल सॉन्ग
1: जी
0: रोटी कपड़ा और मकान का आप वही
1: जी
0: सुनवा दे। महंगाई मार गई
1: जी जी जी महंगाई मार गई, यही सुना दी।
0: जी। अच्छा बिल्कुल,
1: जी
0: समय बहुत कम बचा हुआ है, हम आपका ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं
1: जी
0: जी। फोन कनेक्ट के
1: धन्यवाद
0: लिए
1: मैम।
0: जी धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी शक्ति साकल्ली को दीजिए अब अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोता और रिश्ते तो बहुत से लोगों के होते हैं, लेकिन जीवन में एकाद लोग ही ऐसे होते हैं जिनसे रिश्ते बहुत अलग और ख़ास होते हैं। ये रिश्ते शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते, बस एहसास किए जा सकते हैं। रिश्ते हमें संरक्षित करते हैं, हमारा संबल और मनोबल होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हमारी ज़िंदगी में एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिनको देख कर हमारे मुँह से अनायास ही निकल जाता है, कुछ ख़ास और अनूठा है तुमसे मेरा रिश्ता। ये ऐसा रिश्ता होता है जो समय की कसौटी पर तपकर रूहानी बन जाता है। चाहे बचपन की सहेली हो, पति पत्नी हो, माँ बेटी हो, ननंद भाभी हो, या कोई भी ऐसा रिश्ता जिसका एहसास गहरा होता है, जिनसे हम दिल की बातें कर पाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ख़ास है तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड जैसा कि आप जानते हैं 0755। तो हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: तुलसीराम जी, आज बोल रहा हूँ मालेगांव से।
1: तुलसीराम जी, जो आज का विषय है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, वो है कुछ खास रिश्ते, कुछ अनूठे रिश्ते। जो आपकी जिंदगी में कोई हो तो आप हमें बताएं।
2: खास रिश्ते?
1: हाँ, कोई ऐसा रिश्ता जो आपके बहुत करीब हो, जिनसे आप दिल की बातें करते हो, ऐसा।
2: देखो, रिश्ते तो अपने वाले के जो होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं
1: जी,
2: लेकिन अपने जो दोस्त के होते हैं, दोस्त
1: जी,
2: ये रिश्ता मैं अच्छा मानता हूँ। मेरा एक दोस्त है
1: जी जी
2: मच में
1: जी,
2: वो उनका नाम आरसी जैन
1: जी। हाँ,
2: वो रिटायर पोस्ट मास्टर है, उनकी उम्र है 82।
1: अरे वाह,
2: 82 उम्र है, लेकिन आज भी वो आकाशवाणी से इतने जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का और उनका रिश्ता इतना पक्का है
1: जी,
2: कि बहुत ही पक्का है। वो उनके पास एक मर्फी रेडियो है, मर्फी
1: जी जी,
2: मर्फी रेडियो बहुत पुराना रेडियो है, वो आज भी उसको चलाते हैं, उसको अपने दिल से लगा रखते हैं उसके गानों को, पुराने गानों को।
1: तो ऐसे खास दोस्त जो आपके हैं, आप उनसे अपने दिल की बातें करते हैं या आपकी मेंटल मैचिंग है उनसे? जी
2: बिल्कुल, हम मैं तो उनकी दिल की बात करता हूँ।
1: मेरे
2: लिए तो मेरा दोस्त का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, परिवार से भी अच्छा है।
1: ऐसा क्या खास था उनमें कि जो आपको इतने करीब ले आया उनके?
2: उनमें ये खासियत थी, वो तो है जैन परिवार से
1: जी जी,
2: और मैं हूँ ब्राह्मण परिवार से
1: जी जी।
2: ये दोनों का रिश्ता उन्होंने इतना रखा है कि क्षमा, कोई भी गलती हुई है
1: जी जी,
2: तो वो मेरी क्षमा कर देते हैं।
1: देखिए, ये जो दिल के रिश्ते होते हैं, इनमें कोई जात प्यात ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ होता हाँ, है तो एक अनुभूति, एक खास एहसास, है ना?
2: आपने बहुत सही बात बोली
1: जी,
2: उनके रिश्ते होते हैं
1: जी।
2: रिश्ते क्या है कि आजकल रिश्ते कमजोर हो गए मेरे।
1: जी हाँ, ऐसा तो है, लेकिन कुछ रिश्ते अभी भी हैं जो अपन को सुकून देते हैं।
2: अपन बोलते हैं कि जो अपना पड़ोसी होता है वो परिवार होता है
1: जी जी,
2: लेकिन आज परिवार में ही पड़ोसी बन गए।
1: बिल्कुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमने जाना कि आपके पास भी कोई खास है जिससे आप दिल की बातें करते हैं। फोन करने के लिए
2: आरसी जैन है
1: जी जी,
2: हिमाचल में रहते हो
1: जी जी,
2: और रिटायर पोस्टमास्टर 82 साल हो।
1: चलिए, इतना लंबा रिश्ता यूं ही बरकरार रहे
2: जी। नाम?
1: मैं अनुराधा बोल रही हूँ जी, आपसे बात।

0: हेलो
1: वंदे
0: जी,
1: मातरम।
0: वंदे मातरम। और हम आपको बता दें, हमारे आज का विषय है एक कोई खास रिश्ता, एक अनूठा रिश्ता जो हमारी ज़िंदगी में किसी का होता है, जो हमारे पास होता है। तो क्या कुछ खास है आपके पास ऐसा कोई?
1: जी हाँ,
0: सबसे पहले आप
1: मेरा
0: मुझे एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बता दीजिए।
1: मैं किशन घी वाला बोल रहा हूँ। किशन घी वाला जी,
0: किशन जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: घी समझते हैं ना,
0: जी
1: जो
0: जी
1: देसी
0: बिल्कुल।
1: घी जिसके परांठे बनाते हैं आप,
0: हाँ,
1: दमोह
0: तो कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: से।
0: दमोह से।
1: दमोह मालूम है ना
0: जी जी बिल्कुल जानते हैं।
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं अनुराधा बोल रही हूँ और कार्यक्रम है
1: हाँ
0: बात आपकी, गीत हमारे।
1: हाँ जी, जो विषय आपने पूछा है कि
0: जी
1: कोई ऐसा बताएं जो दिल से जुड़ जाता है, कुछ ऐसा
0: जी
1: पूछा है
0: हाँ,
1: ना आपने।
0: चाहे कोई वो बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, कोई भी हो सकता है जिससे आप बहुत करीब हों, और
1: हाँ।
0: इस भीड़ भरी दुनिया में ऐसा कोई खास होना बहुत ज़रूरी भी होता है ना?
1: हाँ। इसमें जी मेरा ये कहना है कि
0: जी
1: अपने आप ही खास बन जाते हैं जीवन में, जीते जीते ना, जो
0: जी
1: आप कह
0: जी
1: रहे हैं ना कि
0: जी
1: खास होना जरूरी होता है, वो अपने आप बन ही जाते हैं खास। मैं चाहे तो अपने मित्र का नाम लूं,
0: जी
1: चाहे तो अपने बेटे का नाम लूं, चाहे तो अपने बहनोई का नाम लूं, कुछ
0: जी
1: ऐसे एक दो नहीं, तीन चार आ गए हैं मेरी जिंदगी में जो
0: जी
1: कि विशेष हो गए हैं, खास हो गए हैं, और जिनको हम हमेशा याद भी रखते हैं और उनका एहसान भी मानते हैं
0: जी
1: कि जिनके कारण हम आज इस योग्य हैं कि एक समाज में अच्छी स्थिति में हैं, समाज में भी, व्यापार में भी, और साहित्य में भी थोड़ा
0: जी बिल्कुल
1: बहुत, तो एक जो अपना स्टेटस हमारा बन गया है, तो उसमें बहुत सारे दो चार पांच लोग ऐसे हैं जिनके कारण हम, जिनके सहयोग से, जिनकी मित्रता से
0: जी
1: हम
0: जी
1: इस योग बने हुए हैं। अगर आप कहें तो किसी का नाम लूं
0: बिल्कुल, आप यदि चाहें बोलना तो आप ले सकते हैं, क्योंकि
1: जी।
0: ये रिश्ते
1: मेरा मित्र
0: किसी
1: है प्रमोद कुमार सेन, आपके भोपाल का ही है,
0: जी।
1: वो मेरा जीवन से मेरे साथ पढ़ता रहा है, स्टार्टिंग से, प्राइमरी से,
0: चलिए
1: और आज मैं 77 ईयर्स का हूँ और वो भी 77 ईयर्स का, लेकिन हम लोग बराबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
0: देखिए ना,
1: समझ में
0: भरोसा
1: एक
0: है
1: दूसरे के पास
0: आपकी इस
1: पहुँचते।
0: दोस्ती में, कितना भरोसा है कि इतने लंबे वक्त से आप साथ हैं,
1: जी,
0: और
1: ये
0: ईश्वर से
1: एक
0: कामना करते हैं कि
1: सौभाग्य
0: आप
1: है।
0: यूं ही आगे तक, जब तक सांसें हैं तब तक साथ रहिए, खुश रहिए, है ना?
1: जी जी
0: चलिए, धन्यवाद आपका, आपने कॉल किया।

0: हेलो सजीव फोन इन कार्यक्रम।
1: हाँ जी, हेलो,
0: हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल
1: नमस्ते।
0: रहे
1: हाँ
0: हैं?
1: जी, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज का विषय
1: धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि आज हमने विषय रखा है कुछ अनूठा और कुछ खास रिश्ता, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं, एक दो या तीन होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते जो कुछ खास हैं हमारे लिए, जिनसे हम अपनी बातें करते हैं और जिनका होना ही हमारे लिए बहुत खास होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई है?
1: नहीं, ऐसा तो कोई नजदीकी तो नहीं है मैडम,
0: जी
1: पर ऐसे अगर दोस्ती में है, मतलब दोस्त तो अगर ऐसे है,
0: जी
1: मतलब कि जो मतलब ऐसे है अभी।
0: हाँ, जिनसे लगता है कि जब कभी आप किसी परेशानी में होते हैं या किसी समस्या में होते हैं तो आप फ़ोन करके उनसे बात करके पूछ लेते हैं, या वो
1: हाँ
0: खुद
1: जी, हाँ
0: अपना समझ के बता देते हैं, उनसे कोई डर नहीं रहता कि ये फैला देंगे या इसका गलत यूज़ करेंगे।
1: हाँ जी, इसमें क्या है मैडम कि
0: जी
1: जैसे ऐसे लोग बहुत, मतलब अब बिरले ही लोग होते हैं ऐसे कि जो मतलब अपने को समझ सकते हैं,
0: जी
1: हाँ, और मतलब समय आने पे वो अपना हाथ थामते हैं,
0: जी
1: मतलब कुछ मतलब संकट आता है तो मतलब वो अपने को दिलासा देते हैं या
0: जी जी
1: फिर जो भी है कोई मदद करते हैं, तो ऐसे लोग जरा कम ही रहते हैं। पर यही अनुभव मतलब हमारे ऐसे है कि हम एक्चुअली ब्लाइंड है, तो
0: जी जी
1: हेलो,
0: जी जी सुन रही हैं आप, बताइए।
1: तो हमारे मतलब हम यहाँ आश्रम में रहते हैं पुणे में, तो
0: जी
1: अभी तक की लाइफ में जो जितने भी संकट आए बड़े बड़े, तो ऐसे ऐसे समय में बहुत कम ही लोगों ने हमारा मतलब साथ दिया है, मतलब या
0: जी
1: कम से कम हमारी बात शेयर की है, जो जो मतलब समझ सके हैं हम हमको, ऐसी बात है।
0: चलिए, कोई तो
1: तो
0: है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा होगा जो आपको समय पर आपके साथ
1: हाँ
0: खड़ा
1: जी,
0: होगा।
1: हाँ जी, है ना,
0: जी, चलिए आपसे बात
1: पर
0: करके बहुत अच्छा लगा, और आप यूं ही हमें कॉल करते रहें, धन्यवाद।
1: तो इसमें कोई गाना वगैरह है क्या मैडम जी?
0: जी, ये आज का कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारी, जिसमें हम एक विषय रखते हैं जिससे आपसे बात करते हैं। और
1: हेलो,
0: जी
1: एक सेकंड,
0: जी
1: इसमें तो ये कल हमको सुनने को मिलेगा ना?
0: जी आप कल सुन सकते हैं, आज जो रिकॉर्डिंग है कल इसे
1: अच्छा,
0: ब्रॉडकास्ट करेंगे।

0: हेलो
1: हेलो, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी की हमारे। कौन बोल रहे हैं?
0: जिला जिला मिर्जापुर का मतलब सभाकांत बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, एक बार फिर से धीरे बताइए।
0: जिला मिर्जापुर गांव नदौली से सभाकांत बोल रहे
1: शिवाकांत,
0: हैं। जी
1: शिवाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
0: जी हम बहुत अच्छे हैं। इसमें कार्यक्रम सुन रहे हैं। भूख बहुत तेज ज्यादा है।
1: जिला कौन सा बताया आपने?
0: मिर्जापुर
1: मिर्जापुर जी। आपको हम बता दें कि आज का कार्यक्रम है बात आपकी की हमारे, और इसमें हमने विषय रखा है ऐसा कोई खास जो आपके बहुत पास हो और आप उनसे
0: मीडिया
1: बहुत।
0: अखबार का तिनका
1: जी,
0: एक रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं है, एक रिश्ता है भूमि बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता ज्यादा है हमारे यहाँ।
1: अरे बहुत अच्छी बात है। रिश्ता कोई भी हो, लेकिन ऐसा होता है जो हम जिनसे बहुत अपने दिल की बातें शेयर कर लेते हैं।
0: दोस्तों उसका रिश्ता हम लोग बनाए रखते हैं, तो एक दूसरे से बात करते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आपने फ़ोन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारी। हेलो
1: नमस्ते मैडम जी,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मुन्ना के भट्ट पलोहवाड़ा जिला नरसिंहपुर से मुन्ना के भट्ट बोल रहे हैं पलोहवाड़ा।
0: कितने दिनों बाद आपने फोन लगाया?
1: 1.5 महीना हो गए हूँ मैडम जी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: पलोहवाड़ा जिला नरसिंहपुर तहसील गाडरवारा मुन्ना के भट्ट।
0: जी, तो हम आपको बता दें आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम आपसे बात करते हैं कुछ खास विषय पर।
1: जी
0: तो आज का जो विषय है वो है कोई ऐसा खास रिश्ता जो आपके बहुत करीब हो और आप उनसे बात करते हैं अपने दिल की, अपने कभी समस्या हो तो उनसे बात करके आप मतलब शांत हो जाते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, या उनका होना आपके लिए बहुत खास होता है। ऐसा है कोई आपकी ज़िंदगी में रिश्ता?
1: जी मैडम जी, सबसे बड़ा रिश्ता तो दोस्तों का लगता है, दोस्त मामा।
0: रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, माँ बहन भाई भतीजा, लेकिन आप कोई एक को ऐसा रहता है जो देख के लगता है कि हाँ ये मेरा खास है, या हम इससे बात कर सकते हैं खुलकर, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, या वो?
1: दोस्ती दोस्ती
0: जी,
1: का रिश्ता लगता है मैडम जी सबसे अच्छा।
0: तो कोई है आपके पास? दोस्ती में भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन कोई एक खास?
1: एक दो ऐसे रहते हृदय अजीज रहते हैं आत्मा
0: हाँ
1: के,
0: हाँ जिनसे लगता है
1: जिनको
0: खुश
1: सब
0: हो
1: कर।
0: जाता है, जिनका आने से ही मन खुश हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: जी
1: जिनसे बात या बात करो या ना करो, उसका कहते दिल में रहते
0: हाँ,
1: हैं वो तो।
0: दूरियाँ कितनी भी हों लेकिन आप जब उनसे बात करते हैं तो मन खुश हो जाता है, या हमारे बीच में भी भेदभाव नहीं रहता कि वो अमीर हैं हम गरीब हैं, या कोई भी किसी भी तरह की जो वो रहती है सीमा, वो नहीं रहती है ना?
1: ये
0: तो
1: तो
0: बताएं।
1: सब कुछ मैडम जी बचपन में होता है, अमीरी गरीबी तो कोई अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं रहता बचपन में, लेकिन बड़े हो जाते तब वहां दिखान लगाता है अमीरी गरीबी।
0: लेकिन फिर भी एक कोई तो रहता है ना आपके पास, होगा ऐसा कोई जो आपकी दिल
1: है
0: की
1: मैडम
0: बातों
1: जी,
0: को
1: मित्र है
0: समझे।
1: मित्र।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप यूं ही हमसे बात करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।

0: फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रानी तली छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान बोल रहा हूँ। नमस्ते मैम।
0: राशिद भाई कैसे हैं?
1: एकदम सही एकदम सही। जब आप लोग आशीर्वाद में एकदम सही है।
0: क्या हाल चाल है आपके?
1: एकदम सही है। आप लोगों का आशीर्वाद है। गर्मी के सीजन का आनंद ले रहे हैं, बढ़िया से रेडियो सुनते हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं।
0: आज हमने जो विषय रखा है बात आपकी गीत हमारे में, उसमें है कुछ अनूठा और कोई खास रिश्ता। जैसे कि हमारा रिश्ते तो बहुत होते हैं, दोस्त भी बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिससे हम बहुत, जिसके पास होते हैं हम बहुत। और जी
1: भाई घर परिवार तो रहते ही है, पर बाकी आप लोग सब लोग हैं, आकाशवाणी है, टीवी
0: चलिए,
1: लोग हैं, सब सभी तो खास हैं। तो आप
0: नहीं
1: ही लोग तो सब खास हैं हम लोगों के।
0: नहीं जब कभी हमें तकलीफ होती है तो वो हम उससे बात कर लेते हैं, या उससे कोई राय ले लेते हैं, या वो आकर हमारी बिना किसी शर्त के हमारी सहायता कर लेता है, ऐसा कुछ मैं पूछ रही थी आपसे।
1: हाँ जी बिल्कुल। जो परिवार के बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, वो उनका सानिध्य जो मिल जाता है तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा परिवार ही हमारा साथ है और खास है, इससे पता चलता है। धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू मैम। थैंक यू
0: थैंक
1: थैंक यू।
0: यू।

0: फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत
1: हेलो
0: हमारे। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी, सागर से बोल रहा हूँ, चंद्रेश को।
0: सागर से कितने दिनों बाद लगाया चंद्रेश जी?
1: दीदी मेरा तो अब क्या बताऊं, मैं तो हर 15 दिन में ट्राई करता हूं, लेकिन इस बार मैं ऐसा मानता हूं कि 1.5 महीने बाद लगा हुआ हुआ होगा मेरा मैसेज।
0: कैसे हैं आप?
1: बस दीदी आप सबकी दुआएं हैं और आपके यहाँ से जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं,
0: जी जी,
1: इतनी भीषण गर्मी में भी उन कार्यक्रमों को सुनकर एक सुखद एहसास और ठंडक महसूस हो रही है।
0: जी बहुत अच्छा चंद्रेश जी, आज हमने विषय रखा है बात आपकी गीत हमारे में, कुछ
1: जी
0: ऐसे रिश्ते जो हमारे बहुत खास होते हैं, तो
1: जी जी
0: आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं?
1: देखिए
0: और
1: रिश्ते दीदी क्या है, रिश्ते हमारे बनाने से बनते हैं दीदी, मेरा ऐसा मानना है।
0: जी बिल्कुल,
1: अगर रिश्तों को अगर हम ज्यादा अहमियत देंगे तो ये मानिए दीदी जी के सामने वाला भी उतना ही हम लोग को अहमियत देगा,
0: जी
1: क्योंकि आज रिश्ते देखने में ऐसा आ रहा है दीदी कि रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए हो गए हैं दीदी अब।
0: रिश्ते तो बहुत हैं, दोस्त भी बहुत हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो आपकी ज़िंदगी को खुशी से भर देता है।
1: हाँ दीदी ऐसे तो देखिए मैं विगत करीब 50 या 55 वर्षों से रेडियो आज ही सुनता चला आ रहा हूँ।
0: जी
1: रेडियो के माध्यम से श्रोताओं से जो हमारे रिश्ते बने हैं
0: जी
1: वो आज भी हम लोगों के लिए बहुत यादगार हैं,
0: जी
1: मददगार हैं, और
0: जी
1: समय समय पर हमें जब कोई परेशानी कोई कठिनाइयां आती हैं तो
0: जी जी
1: श्रोताओं के द्वारा हम लोगों को जब वो मोटिवेट करते हैं, जब श्रोता हम लोगों के लिए, तो
0: जी जी
1: हम लोगों को एक अलग ऐसा एहसास नहीं हो पाता कि हम किसी कष्ट में हैं या किसी तकलीफ में हैं, तो श्रोताओं के द्वारा जो हम लोगों के लिए जो सांत्वना या जो दिलासा मिलती है और जो सलाह मिलती है वो
0: जी जी
1: हम लोग के लिए जीवन में एक बहुत कारगर सिद्ध होती है और एक अहमियत रखती है हम लोगों के लिए। तो श्रोता रेडियो से जो हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं
0: जी
1: उन श्रोताओं को मैं अहमियत ज्यादा दूंगा और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने की प्रेरणा मिलती है होती है दीदी।
0: चंद्रेश
1: ना
0: जी,
1: आपका
0: आपने हमसे बात करी और हमारे बहुत सारे श्रोता लाइन पर हैं, आप से हमारी फिर बात होगी। आपने आज इतनी अच्छी बात करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।

0: फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारे। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो।
0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहा है?
1: मैं उपेंद्र चौधरी बात कर रहा था
0: जी। उपेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सिवनी जिले से।
0: सिवनी से। तो हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और आज हमने विषय रखा है कुछ खास रिश्ते जो हमारे दिल के पास होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिससे

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से बातचीत भी करेंगे। छठवां राज्य वित्त आयोग कल से ग्वालियर और चंबल संभाग के दो दिवसीय दौरे पर रहेगा। इस दौरान बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत भवन में 22 से 24 मई तक संतवाणी समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन शाम को भक्ति संगीत पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड तथा मालवा निवाड़ में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। आपकी पसंद के गीत हम आपको सुना रहे हैं। फिल्म लम्हे

गीत सुनेंगे लता मंगेशकर और ईला अरुण के स्वर में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीतकार शिव हरी। फरमाइश हमें आई है महादेव घाट अमलेश्वर से। श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और रियांश ठाकुर। अगले श्रोता खंडवा से हैं संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अलका याग्निक, अभिजीत और सपना मुखर्जी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जुदाई से। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से, श्रोता हैं राजेश, शीतल, राजदीप और राशि। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी से अगला गीत आप सुनेंगे उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी के स्वर में। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है देवरी भाटापारा से। श्रोता है गन्नू लाल, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और श्री गणेश। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

महेंद्र कपूर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म हमराज से। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। फरमाइश हमें आई है गौतम नगर जिला नांदेड़ से, श्रोता है प्रभाकर और आरती। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: पर सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: मालवा की शान
8: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
9: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
10: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
9: तो सुनते रहिए मालवा की शान
11: आकाशवाणी इंदौर।
10: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
8: इस समय आप है हमारे साथ।
7: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
10: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
12: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
10: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: श्रोता गण को मेरा सप्रेम नमस्कार। पंचतंत्र के मित्र भेद प्रकरण को आप सब सुन रहे हैं। उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। संजीवक और पिंगलक की मित्रता को तोड़ने के लिए दमनक योजना बनाता है, जिसके अनुसार पिंगलक संजीवक से युद्ध ना करे और जंगल छोड़कर भाग जाए। दमनक संजीवक को टिट्टिब की कथा सुनाता है।
1: किसी समुद्र के किनारे टिटेरियों का एक जोड़ा निवास करता था। कुछ दिनों बाद टिट्टिबी ने गर्भ धारण किया। जब उसके प्रसव का समय आया तो उसने अपने पति से कहा,
2: कांत, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अतः आप किसी ऐसे स्थान की खोज करें जो निर्विघ्न हो और जहां पर मैं शांतिपूर्वक अपने अंडे दे सकूं।
3: प्रिय, हम समुद्र के किनारे इतने रमणीय स्थान पर रहते हैं, ये जगह हमारी परिचित है। तुम्हारे प्रसव के लिए इससे अधिक उपयुक्त स्थान और क्या होगा? तुम्हें यहीं प्रसव करना चाहिए।
2: आपकी बात मैं समझती हूँ स्वामी, परंतु पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आया करता है, वो बड़े बड़े हाथियों को भी बहा ले जाता है, तो हम तो बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं स्वामी, यहाँ से दूर किसी अन्य स्थान की खोज कीजिए, कहीं मेरे बच्चों को यहाँ कोई हानि हो जाए, फिर हम क्या करेंगे?
3: नहीं भद्रे, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है।
4: उस समुद्र का सामर्थ्य नहीं, वो मेरे बच्चों को बहा ले जाए।
2: मैं जानती हूँ स्वामी, आप वीर हैं, परंतु समुद्र के समक्ष अपनी वीरता का परिचय दिखाना मूर्खता है।
3: इस तरह शंका करके तुम मेरे प्रेम का अपमान कर रही हो प्रिय। तुम निश्चिंत होकर यहीं पर प्रसव करो, पराजय और तिरस्कार के भय से अपने स्थान को त्याग कर कायर शिशु को जन्म देकर यदि स्त्री स्वयं को पुत्रवती समझती है तो बांझ किसे कहेंगे?
0: टिट्टिब के अहंकार भरे वचन को सुनकर समुद्र ने सोचा, इस तुच्छ पक्षी को कितना अधिक घमंड है। ये भी है कि आकाश के गिरने की आशंका में टिटहरी अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर पड़ा रहता है। वो सोचता है गिरते हुए आकाश को अपने पैरों से रोक लेगा। तो समुद्र ने उस टिटहरी को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसके अंडों का अपहरण कर लिया। जब टिट्टिबी को प्रसव स्थान खाली मिला, वो बिलख बिलख कर रोने लगी। अपने पति से बोली,

0: बोले, किंतु अपनी मूर्खता और घमंड के कारण तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया।
1: भद्रे भद्रे, क्या तुम मुझे कायर समझती हो? मेरे बुद्धि पल को देखो, अभी अपनी चोंच से इस पापी समुद्र को ही सोख लेता हूँ।
0: परंतु समुद्र के साथ तुम्हारी समता ही क्या है जो उसके साथ युद्ध करने जा रहे हो? तुम्हारा उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। अपनी तथा शत्रु की शक्ति को जाने बिना ही जो युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाता है, वो आग की ओर बढ़ने वाली पतंग की तरह आत्मविनाश का कार्य करता है।
1: नहीं प्रिय, नहीं, ऐसी बात ना कहो। जिनके पास उत्साह एवं विश्वास रूपी शक्ति है, वे शक्तिहीन होते हुए भी अपने शक्तिशाली शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होते हैं। तुम देखना, मैं अपनी चोंच के द्वारा इस पापी समुद्र के संपूर्ण जल को पीकर इसे शुष्क बना दूंगा।
0: हे कांत, 900 नदियों को लेकर गंगा जिससे सतत मिलती रहती है, और सिंधु नदी भी 900 नदियों को लेकर मिलती है, उन 1800 नदियों द्वारा सतत भरे जाने वाले विशाल समुद्र को तुम अपनी चोंच से कैसे सुखा पाओगे?
1: प्रिय, जब तक हिम्मत के साथ कोई अपने प्राणों की बाजी लगाकर पुरुषार्थ करता है, वो लड़ाई भी निष्फल नहीं होती।
0: यदि तुमने समुद्र के साथ विग्रह करने का सोच ही लिया है, तो अन्य पक्षियों को भी बुला लो और अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर ही उसके साथ युद्ध करो।
1: अवश्य प्रिय, जो तुम कहती हो वही करूंगा। अपने मित्रों के साथ ही समुद्र का अंत करूंगा। वक्त, सारस, मयूर सभी को बुलाऊंगा।
2: अब उस टिटहरी ने अपने सारे साथियों का आवाहन किया, पूरी कथा सुनाई, परंतु सबने ये राय दी कि समुद्र को दंड देने में वो असमर्थ हैं। तभी मयूर ने सलाह दी कि क्यों ना अपने स्वामी पक्षीराज गरुड़ से निवेदन करें। ये सुनकर सभी पक्षियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से गरुड़ के पास जाकर निवेदन किया।
1: महाराज, अनर्थ हो गया, पक्षियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आप हमारे स्वामी हैं, आपके रहते हुए मुझ जैसे सदाचारी और निर्दोष टिटहरी के अंडों को समुद्र ने चुरा लिया। यदि यही स्थिति बनी रही तो समुद्र स्वेच्छा पूर्वक अन्य पक्षियों को भी मार ही डालेगा।
3: अरे, तुम लोगों ने इस बात की सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी? मैं तो सोच रहा था तुम सब अपने अपने स्थान पर सुखपूर्वक होगे।
1: नहीं प्रभु, हम सब बड़े दुखी हैं। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए।
3: आप सब निश्चिंत रहें, मैं उस समुद्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही उसे सोख डालूंगा।
4: गुरुवर को मेरा प्रणाम।
3: अरे, आप तो श्री भगवान के दूत हैं, कहिए क्या संदेश है?
4: गरुड़ जी, स्वयं नारायण ने मुझे भेजा है। देवों के कार्य से भगवान अभी अमरावती जाने वाले हैं, इसीलिए आप शीघ्र चलें।
3: दूत, मेरे जैसे कुभृत्य को रखकर भगवान क्या करेंगे? उनसे जाकर कहिए वो मेरे स्थान पर किसी अन्य वाहन को रख लें, और प्रभु से मेरा प्रणाम भी कह देना।
4: ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर?
3: उचित ही कह रहा हूं। जो स्वामी सेवक के गुणों की कद्र नहीं करता, उसकी सेवा में रहना सेवक की मूर्खता है।
4: गुरुवर, इससे पूर्व कभी भी भगवान के प्रति ऐसे शब्दों का उच्चारण आपने नहीं किया था। प्रभु ने कब आपका अपमान किया है जो आप इतने विगलित हो रहे हैं?
3: श्री भगवान का आश्रित होने के कारण ही समुद्र ने मेरी प्रजा में से एक टिटेरी के अंडों की चोरी की है। यदि भगवान उसको उचित दंड नहीं देते तो मैं प्रभु की सेवा नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। इसलिए आप अविलंब जाकर भगवान से मेरी प्रार्थना कह दें।
5: वत्स गरुड़।
3: भगवान, आप स्वयं उस तुच्छ सेवक के पास आए हैं? मुझे क्षमा कर दें प्रभु, अज्ञानवश मैंने आपका अपमान किया है, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे उचित दंड दीजिए।
5: नहीं नहीं वत्स, मैं तुमसे तनिक भी कुपित नहीं हूँ। क्या हमें ज्ञात नहीं कि आप हमारे कितने भक्त हैं?

0: मेरे साथ चलें। मैं टिटहरी के अंडों को अविलंब समुद्र से लेकर देता हूं।
1: जो आज्ञा प्रभु।
0: दुरात्मन समुद्र, तत्काल टिटहरी के अंडों को वापस करो, अन्यथा बाण से तुम्हें सुखाकर बंजर भूमि बना दूंगा।
2: भयभीत समुद्र ने तुरंत अंडों को लौटाकर गरुड़ से क्षमा मांग ली और भगवान विष्णु गरुड़ जी के साथ अमरावती रवाना हो गए। इस कथा को सुनकर संजीवक ने दमनक से कहा,
3: अम्मा मित्र दमनक, ये मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पिंगलक मुझसे रुष्ट है और मुझे मारना चाहता है? वो मुझसे कितना प्रेम करता है, मुझ पर कभी अप्रसन्न नहीं हुआ। तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण हो तो बताओ।
4: भद्र, इसमें जानने की क्या बात है? प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे विश्वास के लिए यही पर्याप्त है कि यदि वो तुम्हें देखकर ब्रिकुटियां चढ़ाकर ओटों को जीभ से चाटे तो समझ लेना वो तुमसे रुष्ट है। इस बात का ध्यान रखना कि पिंगलक को ये खबर ना हो कि मैंने तुम्हें सचेत कर दिया है। यदि हो सके तो संध्या के समय तक यहां से पलायन कर जाओ।
5: आ गए दमनक भाई, मैं तो चिंता ही कर रहा था।
4: अरे चिंता किस बात की है भैया, जब मैंने किसी काम की जिम्मेदारी ली है तो समझो वो पूरा हो गया।
5: पर दमनक शीघ्र बताओ तुमने किया क्या?
4: वहां जाकर मैंने भेद नीत का बीजा रोपण कर दिया है।
5: अच्छा,
4: इसके आगे भागे जो करेगा वो होगा। हमने तो अपनी चाल चल दी है।
5: कैसी नीत का बीज डाला तुमने?
4: मैंने अपनी मिथ्या बातों के द्वारा जो भेद डाला है, भविष्य में आप उन्हें एक साथ नहीं देख पाएंगे।
5: ये तुमने ठीक नहीं किया। दोनों स्नेह पूर्वक सानंद रहते थे, आपने उन्हें कोप के समुद्र में फेंक दिया। सच है कि सीधे साधे लोगों को दुख देने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया, परंतु अब सहमति और समर्थन संभव नहीं।
4: अरे आप नीत शास्त्र से अनभिज्ञ हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं।
5: क्या कहते हैं?
4: जो व्यक्ति शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही शांत नहीं करता, वो बाद में पछताता है। क्यों, आपको याद नहीं, हमारा मंत्री पद छुड़ाने वाला भी संजीवक है। मैंने उसे अभयदान देकर पिंगलक के पास पहुंचाया, उसकी मित्रता करवा दी, फिर भी उसने हमें मंत्री पद से हटवा दिया। अतएव मैंने विवश होकर उसके वध का उपाय किया है।
5: परंतु दमनक, यदि कुछ विपरीत परिस्थितियां हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
4: मेरे इस उपाय को आपके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं जान पाएगा, आप कोई संदेह ना करें।
5: पता नहीं भैया क्या होने वाला है।
4: करकट जी, आप तो व्यर्थ में घबरा रहे हैं। मेरी माने तो आप महाभोज की तैयारी कीजिए। भोजन के साथ साथ हमें मंत्री पद की भी प्राप्ति होने वाली है। अब इतने सारे लाभ वाले उपायों को मैंने सिद्ध किया है, अपनी मूर्खता के कारण आप इसे समझ नहीं रहे हैं और मुझे दोषी मान रहे हैं।
5: अपने को अत्यधिक बुद्धिमान समझने की भूल मत करो। आगे आगे देखो क्या होता है।

0: ये मैंने क्या कर डाला? स्वयं शाक भक्षी होते हुए भी मांस खाने वाले के साथ मित्रता की और उसका दास बन गया। अब क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आता। हां, एक उपाय है, पिंगलक के पास चलता हूं, हो सकता है शरणागत समझकर वो मेरी रक्षा करे।
1: ये सोचकर संजीवक पिंगलक के पास गया। पिंगलक को एक चट्टान पर बैठा देखकर डर गया। उसे दमनक की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। पिंगलक ने भी उसे देखा और तत्काल संजीवक पर टूट पड़ा। पिंगलक के तीखे नखों के आघात से आहत होकर संजीवक ने भी अपने सींगों से उसके उदर को फाड़ डाला। उधर करकट और दमनक छुपकर पूरी घटना देख रहे थे।

0: मूर्ख दमनक, इन दोनों मित्रों में विरोध उत्पन्न करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी नीत से स्वामी का विनाश हो रहा है। उनके मरने में अब संदेह नहीं। किस बुद्धि से तुम मंत्री बनना चाहते हो? दंड में विश्वास रखने वाली तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ है। नीच पुरुष सिर्फ दूसरों का कार्य बिगाड़ना ही जानते हैं। वैसे तुम जैसे मूर्ख को उपदेश देने से क्या लाभ?
1: अब मैं क्या करूं?
0: दूसरों को विपदा में देखकर प्रसन्न होने वाला व्यक्ति विनाश की परवाह नहीं करता। सुनो दमनक, किसी नगर में धर्म बुद्धि तथा पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ थे, परंतु दोनों के नाम के अनुसार स्वभाव में भी बहुत अंतर था। एक बार पाप बुद्धि ने सोचा,
2: हे भगवान, कैसे दिन कटेंगे? मेरे पास तो सुख सुविधा के कोई भी साधन नहीं है। पेट तो पशु भी भर लेते हैं। मैं मूर्ख और दरिद्र दोनों हूं। क्यों ना विदेश जाकर धन उपार्जन करूं? मैं धर्म बुद्धि को भी साथ ले लेता हूं, ये भी कमाएगा। बाद में इसे ठग कर इसकी भी कमाई ले लूंगा। कल ही मैं उससे बात करता हूं।
3: आज तो आनंद आ गया। वाह, बड़े दिनों के बाद लस्सी बनी है, क्या स्वाद है। वाह वाह,
1: मित्र धर्म बुद्धि, अकेले अकेले ही आनंद ले रहे हो भाई? अपने भाई जैसे मित्र को याद नहीं किया?
3: आओ मित्र, आओ आओ आओ, मैं अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था।
1: चलो, मेरी याद आई तो सही।
3: ऐसा ना कहो मित्र, मैं कुछ व्यस्त था, परंतु याद तुम्हें प्रतिदिन करता था। अच्छा, अब छोड़ो, ये लो ठंडी लस्सी पीकर दिमाग को ठंडा कर लो। मित्र पर इतना क्रोध ठीक नहीं।
2: देखो धर्म भाई, इस छोटे से नगर में रहकर यदि हमारा जीवन यूं ही बीत जाए तो हम अपने बच्चों से क्या कहेंगे? वृद्धावस्था में किन बातों को याद करेंगे?
3: मित्र, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा विस्तार से बताओ।
2: विस्तार से क्या बताना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्यों ना विदेश चलकर हम दोनों कोई व्यापार करें।
3: बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो, एक शुभ मुहूर्त देखकर और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर हम चल पड़ेंगे।
4: और फिर दोनों ने शहर जाकर खूब धन कमाया। धर्म बुद्धि के प्रभाव से इधर उधर घूमकर पाप बुद्धि ने भी खूब धनोपार्जन किया। कुछ माह बाद दोनों अपने कमाए हुए धन को लेकर प्रसन्न एवं उल्लसित मन से घर को लौटने लगे।
2: वाह, धन कमाकर तो आनंद आ गया, पर धर्म बुद्धि के धन को भी अगर हथिया लूं तो क्या बात है।
3: क्या सोच रहे हो मित्र, कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो।
2: मैं सोच रहा था इस संपूर्ण धन को लेकर घर चलना ठीक नहीं, कुटुंबजन या भाई बहन मांगने लगेंगे।
3: तो फिर क्या करें पाप बुद्धि?
2: मेरी मानो तो यहीं घने जंगल में इसे गाड़ देते हैं और थोड़ा सा धन लेकर घर चलें। फिर जब जैसी आवश्यकता होगी धन को खोद कर ले लेंगे।
3: ठीक है मित्र, जैसा उचित समझो करो। आओ इसके लिए गड्ढा खोद लेते हैं। और थोड़ा सा।
4: धन को जमीन में गाड़ने के बाद वे दोनों अपने अपने घर जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक रात को पाप बुद्धि ने वन में जाकर उस गाड़े हुए धन को निकाल लिया और गड्ढे को भरकर चुपचाप लौट आया। अगली सुबह वह धर्म बुद्धि से बोला,
2: मित्र मेरा परिवार बहुत बड़ा है, धन के अभाव में हम दुखी हैं। चलो उस स्थान पर चलकर कुछ धन खोद लाया जाए।
5: हाँ चलो। हाँ यही तो था।
2: हाँ, हाँ,
5: यही तो वो पेड़ है। यही स्थान है। खोदते हैं।
2: बस बस बस थोड़ा सा और खोद लेते हैं।
5: अरे अरे यह क्या
2: है?
5: ये खींचो खींचो। अरे ये तो खाली है। अरे
0: अरे धर्म बुद्धि, अधिक ढोंग ना करो। इस धन को तुमने ही चुराया है। मैं पहले ही संदेह कर रहा था, ये गड्ढा पहले से ही खुदा हुआ जान पड़ता था।
6: दुरात्मन, ऐसी बात कभी ना कहना। मेरा नाम धर्म बुद्धि है, मैं चोरी नहीं करता हूँ।
0: अरे छोड़, बड़े देखे तेरे जैसे धर्मात्मा। नाम की आड़ लेकर मुझे ठगने की चेष्टा व्यर्थ है। चुपचाप मेरे धन को लौटा दे।
6: पापी, जो धर्म में विश्वास करता है वो दूसरों के धन को धेले के समान जानता है।
0: अपने धर्म को अपने पास रख, शीघ्रता से मेरा धन मुझे दे दे, अन्यथा मैं न्यायालय जाऊंगा।
6: न्यायालय का डर किसे दिखाता है, मैं स्वयं ही तेरे साथ चलता हूँ।
4: इस प्रकार दोनों व्यक्ति आपस में विवाद करते हुए न्यायालय पहुँचे और परस्पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयत्न करने लगे। अंत में ये तय हुआ कि वृक्ष देवता की गवाही ली जाए। पाप बुद्धि ने जब ये बात सुनी तो शीघ्र घर गया और अपने वृद्ध पिता से बोला,
2: पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि के समस्त धन को चुरा लिया है। अगर आप चाहें तो वो धन हमारे पास स्थिर रह सकता है।
7: धन चुराकर तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। अब लग रहा है कि मेरा पुत्र वयस्क हो गया है। परंतु शीघ्र बता कि मुझे करना क्या है जिससे हम उस धन को अपना बना सके।
2: हे तात, कल प्रातःकाल न्यायाधीश गण मुझे और धर्म बुद्धि को लेकर उस वृक्ष के नीचे जाएंगे जहां हमने धन छुपाया था। आपको वृक्ष के कोटर में छुपकर बैठ जाना है और पूछने पर बताना है कि ये धन धर्म बुद्धि ने चुराया है।
7: ठीक है पुत्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आज रात में ही जाकर पेड़ के कोटर में छुप जाता हूं।
2: पिताजी, आइए आइए आप सब आइए। ये है वो वृक्ष। आप इस वृक्ष देवता से पूछें, हे वन देवते, आपने तो सब देखा है, आप ही बताएं हम में से चोर कौन है।
8: सज्जनों, आप सब ध्यान से सुने। मेरे नीचे छिपाए गए धन को धर्म बुद्धि ने चुराया है।
5: ये झूठ है, झूठ है। ये नहीं हो सकता।

0: अरे अरे जल गया, अरे मारे, अरे अरे अरे बचाओ, अरे जल गया, अरे जल गया, अरे अरे जल गया, अरे बचाओ, जल गया।
1: पाप बुद्धि का पिता कराहता हुआ कोटर से बाहर निकल आया। फिर क्या था, पाप बुद्धि से धन छीन कर धर्म बुद्धि को दे दिया गया। अब इस कथा को सुनकर करकट ने दमनक से कहा,
2: दमनक, तुमने पाप बुद्धि की तरह स्वार्थ सिद्धि का उपाय तो सोचा, किंतु होने वाली हानि पर विचार नहीं किया। तुम अत्यंत तुच्छ सोच वाले हो, मेरे निकट आने की चेष्टा मत करना।
1: इधर करकट और दमनक वाद विवाद में व्यस्त थे और उधर संजीवक पिंगलक के साथ युद्ध कर रहा था। पिंगलक के प्रखर नखों के आघात से आहत होने के कारण संजीवक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे निर्जीव देखकर पिंगलक बहुत दुखी हुआ।
3: मैंने निर्दोष संजीवक को मारकर अच्छा नहीं किया, मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। मैं अपनी सभा में सदैव उसकी प्रशंसा करता रहा हूँ, अब मैं उन सभासदों के सामने क्या उत्तर दूंगा।
4: देव, आपकी ये नीति अत्यंत कायरतापूर्ण है। आप एक राजद्रोही और शाकाहारी जीव को मारकर इस प्रकार शोक कर रहे हैं, राजाओं को ये बात शोभा नहीं देती।
1: इस प्रकार दमनक के समझाने पर पिंगलक ने संजीवक के मरण संबंधी शोक को छोड़ दिया और फिर दमनक को मंत्री पद देकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। श्रोतागण, पंडित विष्णु शर्मा ने जो 5 प्रकरण बनाए उनमें से प्रथम प्रकरण मित्र भेद यही समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे मित्र संप्राप्ति, परंतु अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की 6वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का ये 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक में समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमिता कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

0: बैठकों में ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों के प्रतिनिधि युवा विकास, उद्यमिता, नवाचार, तकनीक आधारित अवसरों पर चर्चा करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए बहनों का कार्यक्रम महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

नमस्कार सखियों, महिला सभा में आप सभी श्रोता सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी श्रोता सखियों को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला सभा कार्यक्रम लेकर आज हाजिर हूं मैं, संयोगिता जोशी। आइए शामिल होते हैं कार्यक्रम के माध्यम से इस आने वाले जश्न में। आज आप सुनेंगे प्यारे प्यारे गीतों के साथ, कुछ बातों के साथ, कुछ जानकारियां भी। बहुत खुशी होती है सखियों जब आकाशवाणी प्रांगण में महिलाओं को कार्यकर्ता देखते हैं। हर विभाग में जिम्मेदारी से कार्य करती दिखती हैं ये महिलाएं, और आज तो लगभग हर फील्ड में महिलाओं ने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने कार्य स्थल पर भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बड़ी भूमिका के लिए बधाई की पात्र हैं हमारी सभी वो बहने। दरअसल एक महिला में नेतृत्व क्षमता अधिक होती है प्राकृतिक रूप से, और जो कार्य उसने अपने ऊपर लिया है वो पूर्ण करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती। आगे बढ़ने की उसकी जो चाह है ना, उसने उसे दोहरी भूमिका निभाने में मजबूती दी है। यानी घर के काम के साथ साथ माँ के दायित्व के साथ साथ वो अपने कार्य स्थल पर भी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। सखियों, हम यही चाहते हैं कि हर वर्ग की महिला हर क्षेत्र में आगे आए, चाहे वो शिक्षित हो या ना हो, अपने स्तर पर वो अपनी इस दोहरी जिम्मेदारी को निभाते हुए हौसले के साथ आगे बढ़ती चलें। यूं ही नहीं हासिल किया हमने ये सफर, यूं ही नहीं तय किया हमने ये सफर, मुश्किलों का सामना भी किया है, मुश्किलों को तोड़ा भी है, और मुश्किलों से लड़कर हम आगे भी बढ़ी हैं। मेरे

गीत के बाद आगे बढ़े सखियों, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। योजना सरकार की वो पहल है जिसमें गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रूपए की राशि दी जाती है, दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक में डाले जाते हैं। उद्देश्य ये है कि पोषण में सुधार हो गर्भवती महिलाओं के और भुगतान की जो भरपाई है वो हो सके। हाँ, पात्रता के लिए महिला की आयु 19 वर्ष होनी चाहिए, महिला सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं होना चाहिए, गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण अनिवार्य है। तो प्यारी सखियों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ लीजिए और स्वस्थ प्रसव की इस मुहिम को बढ़ावा दीजिए। सखियों, आज 19 मई है और आज के दिन विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड फेयर प्ले डे के रूप में भी हम जानते हैं, समझते हैं। 2025 में पहली बार आधिकारिक रूप से इस दिन को मनाया गया। वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाने का उद्देश्य यही है कि विश्व के हर खेल में खिलाड़ी मित्रता, एकजुटता और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर खेल प्रदर्शन करें। जी हाँ, जीत से ज्यादा खेल भावना अहम है। मौका अच्छा है, सुनवाते हैं चक दे इंडिया का ये बहुत उत्साह से भरा हुआ गीत।

0: महिला सभा कार्यक्रम में अब बारी है मेरी उड़ान की। सिमिलवाने लाई हूँ श्रेष्ठा गोयल जी को। इंदौर शहर ही नहीं, पूरे देश में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं। तो आपके स्वागत के साथ सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतनी सक्सेसफुल कहानी के पीछे राज क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई?
1: नमस्कार जी। इसकी शुरुआत कॉलेज टाइम से ही हो चुकी थी। हमेशा मैंने चाहा कि जो मेरे साथ के लोग हैं, मैं खुद भी आगे बढ़ूं और अपने साथ के लोगों को भी आगे लेकर आऊं। जब मैंने शादी के बाद अपना बिजनेस शुरू किया, उस टाइम मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो पूरी तरह से जॉब वाला बैकग्राउंड था, और उसके बाद बिजनेस में आना एक बड़ी चुनौती के रूप में था। और प्रेगनेंसी टाइम में मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और मैं बिजनेस में आई, और उस टाइम मैंने धीरे धीरे अपने आप को इसमें स्थापित किया, और हर कदम पे मैंने महसूस किया कि मुझे सपोर्ट रिक्वायर्ड रहा। और जब मैंने इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमा लिए, तब मैंने और जो मेरे साथी हैं, जो महिलाएं हैं जो कुछ करना चाहती हैं जिंदगी में, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके सपोर्ट के लिए हाथ बढ़ाया, और हमने वहीं से शुरुआत की वुमन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की, जिसमें आज इंदौर की करीब 20,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और हम उन्हें हर तरह से सहयोग करते हैं आगे बढ़ने के लिए, नया सीखने के लिए और बिजनेस में आगे आने के लिए।
0: तो ये कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई दूसरी महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए?
1: मेरे साथ साथ दूसरी महिलाओं को मैंने इसमें शामिल किया। जैसा मैंने आपको बताया, वुमन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जिसमें हम दूसरी महिलाओं को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, और साथ ही हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं में जो महिलाओं को सहयोग मिल सकता है, कई सारे सेमिनार और वेबिनार जिसमें उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, अपनी कंपनी के थ्रू वर्क स्टार्ट करना एंड कई सारी जो नीतियों हैं उन पे हम बात करते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करवाते हैं जिसमें वो विकास की राह पर आगे बढ़ सकें।
0: बहुत अच्छी बात कही है श्रेष्ठा जी आपने। अपनी आत्मनिर्भरता के साथ साथ दूसरी हमारी जो महिलाएं हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहती हैं, उनके सपने को भी आप साकार कर रही हैं। महिला उद्यमियों के लिए ये स्वर्णिम युग की शुरुआत है। श्रेष्ठा जी, आपसे बातें करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है।
1: बिल्कुल, ये स्वर्णिम शुरुआत है, क्योंकि हमारी भारत सरकार भी महिलाओं को बहुत सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। लाडली बहन योजना, लखपति दीदी योजना, ये सारी योजनाएं महिलाओं को कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार भी कर रही हैं और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में बहुत ही योगदान भी दे रही हैं, और उनके कदम मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।
0: सरकारी योजना का लाभ लिया है
1: जी? बहुत सारे जो लोन्स होते हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों में मिलते हैं, वो मैंने और मेरे ग्रुप ने इसके लिए कई बार अप्लाई किया है, और हम लोगों ने बहुत सरकारी योजनाओं के लाभ भी उठाए हैं। और अभी जो हमारा उद्देश्य है हमारे ग्रुप का, हम लोग पिछले 3 साल से प्रयासरत हैं इंदौर में देश का पहला महिला क्लस्टर बनाने के लिए। इसके लिए भी भारत सरकार हमारा सहयोग कर रही है, और बहुत जल्दी इस क्लस्टर के माध्यम से उद्योग जगत से जुड़ी हुई महिलाओं को हम सरकार के द्वारा जमीन आवंटित करवाएंगे, और उसमें वो अपना उद्योग स्थापित करेंगी और इस विकास की राह में और भारत देश की जीडीपी को बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग देंगी।
0: तो ये किस तरह का काम होगा?
1: मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगी, और ये मल्टी प्रोडक्ट वुमन क्लस्टर होगा। अभी तक जितने भी क्लस्टर बनते आए हैं वो प्रोडक्ट बेस पे रहते हैं, जैसे कि नमकीन क्लस्टर है तो सारे नमकीन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो एक जगह पे काम करते हैं, और फूड क्लस्टर्स होते हैं, फार्मा क्लस्टर होते हैं, लेकिन इस क्लस्टर का जो बेस है वो महिलाएं होंगी। उनके प्रोडक्ट भले ही अलग अलग हों, लेकिन वो सेम प्लेस पर एक जगह पे अपना काम कर सकेंगी, तो ये कहलाएगा वुमन मल्टी प्रोडक्ट क्लस्टर, और जो देश का पहला क्लस्टर होगा। इसके साथ ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भारत का डिजिटल इंडिया मिशन है उससे भी हम महिलाओं को जोड़ें और हम समय समय पे डिजिटल दुनिया के लिए बहनें हैं जो काम कर रही हैं उनके लिए प्रोग्राम्स अरेंज करवा रहे हैं जिससे वो डिजिटल दुनिया की बारीकी समझ सकें। ई कॉमर्स जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स के जो भी तकनीकियाँ हैं उनके बारे में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करवा रहे हैं महिलाओं के लिए और वो उससे सीख भी रही हैं और ई कॉमर्स पे अपनी प्रेजेंस उनकी आ रही है।
0: जी
1: जैसे जैम पोर्टल, इंडिया का जो गवर्नमेंट सप्लाई का जैम पोर्टल है उस पे उसके लिए हमने भारत सरकार की मदद ली है और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से इंदौर की महिलाओं को, स्पेशली हमारे ग्रुप की महिलाओं को जोड़ा है हमने। अब वो सरकारी टेंडर और को पार्टिसिपेट करने और बिड पार्टिसिपेट करने में बहुत कंफर्टेबल हैं। जहाँ तक मैंने भी भारत सरकार के माध्यम से ही जैम पोर्टल पे काम करना स्टार्ट किया था।
0: तो इसकी क्या सक्सेस स्टोरी रही है श्रेष्ठा जी?
1: इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग टाइम टाइम पे कर रहे हैं और हमारे माननीय सांसद ललवानी जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और उनका सपोर्ट भी रहा है। वो जीडीपी पे काम कर रहे हैं, इंदौर की जीडीपी को डबल ट्रिपल करने के लिए भी भारत सरकार के सारे प्लान जो हैं वो सांसद जी के थ्रू ही होने वाले हैं
0: जी
1: एंड हम महिलाओं का उसमें विशेष योगदान रहेगा। और हमारा जो मल्टी प्रोडक्ट वुमन क्लस्टर है ये भी जो जीडीपी वाले प्रोग्राम के अंतर्गत ही आएगा। हम इस अपने क्लस्टर के सपने को पूरा करेंगे जल्दी।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। महिलाओं का क्लस्टर बहुत जल्दी तैयार हो और हमारे जो श्रोता बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं, अगर वो जुड़ना चाहें तो इस क्लस्टर से जुड़ने के लिए तैयार रहें और अपने प्रोडक्ट्स अपने आप को तैयार करके रखें। जब इस तरह के प्रोग्राम की बात होती है, कार्यक्रम सुनने वाली हमारी श्रोता बहनें हैं, क्या क्या खूबियां उनमें होना बहुत जरूरी है?
1: उनकी कंपनी के पास प्रॉपर लाइसेंस और पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। सबसे
0: जी
1: इम्पोर्टेंट इसमें होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बिना वो किसी भी सरकारी योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इस क्लस्टर में अप्लाई करने के लिए भी उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अटेंड कर सकती हैं, अपने प्रोडक्ट को वहाँ डिस्प्ले कर सकती हैं
0: जी
1: और ये पूरी तरह से उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। कुछ प्रोसेस होता है उनका। हमारे ग्रुप की भी कई महिलाएं देश के बाहर साउथ अफ्रीका और लंदन यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की डिस्प्ले करके आई हैं,
0: जी जी
1: इंटरनेशनल एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करके आई हैं
0: जी जी
1: और जिसमें उनको एयर फेयर से लेके स्टॉल चार्जेस तक भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। तो इन सारी योजनाओं का लाभ वो ले सकती हैं, बस
0: जी
1: उन्हें उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है।
0: हमें बहुत अच्छा लग रहा है श्रेष्ठा जी आपसे बातचीत करके। और ऐसी क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं और वो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी हैं?
1: देखिए मैं बहुत सारी महिलाओं से मिलती हूँ,
0: जी
1: तब मैंने सुना है ये कि अक्सर महिलाएं जो हैं वो शौकिया तौर पे काम करना चाहती हैं।
0: जी जी
1: अगर वो बहुत अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से हैं
0: जी
1: तो वो कहती हैं कि वो उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है या उनके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो वो शौकिया तौर पे काम करना चाहती हैं।
0: जी
1: तो यहाँ मैं उनको हमेशा करेक्ट करती हूँ कि आप अपने शौक पूरे करने के लिए काम मत कीजिए, आप अपने डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए, आप हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए,
0: जी
1: देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए काम कीजिए। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोई भी काम करते हैं आपका
0: जी
1: डेवलपमेंट होता है, आपके बच्चों का डेवलपमेंट होता है, आपके परिवार का डेवलपमेंट होता है और वही जाके आगे विकास की राह में देश का डेवलपमेंट करता है। तो करीब 3,000 से ज़्यादा एक्टिव स्टार्टअप इंदौर में हैं जिनमें 35% जो हैं महिलाएं उनको लीड कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत है कि
0: जी जी
1: महिलाएं स्टार्टअप में आगे आ रही हैं,
0: जी
1: उद्योगों में आगे आ रही हैं।
0: श्रेष्ठा जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, एक बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में आ पाई। जिस कार्य नीति के साथ आगे बढ़ रही हैं वो आपके पूरी हो और आगे सहयोग देती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।

देखिए, जब भी हमारे घर से कोई बाहर निकलता है, हम यही कहते हैं ना कि भाई संभल के जाना, गाड़ी धीरे चलाना, सड़क सुरक्षा का ध्यान हम सभी को रखना होता है, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हम सभी को करना होता है। ग्लोबल रोड सेफ्टी डे, जी हाँ, WHO द्वारा आयोजित एक प्रमुख अभियान है जो सड़क हादसों, सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने की एक अहम मुहिम है। पैदल चलें, साइकिल चलाएं और सड़क पर चलते समय सिग्नल का पालन जरूर करें, हेलमेट पहने, सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचें। WHO की इस मुहिम में बराबर सहयोग करें, रोड पर चलते समय रोड नियमों का पालन करें, अपने घर से थोड़ा सा समय से पहले जरूर निकलें, गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचें। अब बारी है रूपलावण्य की। सखियों, गर्मी में वर्किंग लोगों के लिए सुबह के वक्त प्रॉपर केयर बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों की ये धारणा है कि मॉइस्चराइजर सिर्फ सर्दियों में स्किन केयर करता है। आपको हर मौसम में मॉइस्चराइजर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ये त्वचा को नमी देने के साथ साथ कोमल भी बनाता है। टैनिंग और सनबर्न से बचने के लिए आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, साथ ही घर पर कुछ इस तरह से टैनिंग कम करने के लिए उपाय करती रहें। जैसे पका हुआ टमाटर लें, काट कर एक हिस्से में नमक और दूसरे हिस्से में दरदरी शक्कर लगाकर लगभग 10 मिनट उसे यूं ही रख दें। फिर चेहरे पर बारी बारी से हल्की मसाज लगभग 20 मिनट तक करें। चेहरे को साफ ठंडे पानी से धो लें। इस घरेलू उपयोग से चेहरे के जो काले धब्बे हैं प्राकृतिक रूप से साफ होंगे। हाँ, हफ्ते में 3-4 बार टमाटर का ये उपयोग आप जरूर करती रहें। चेहरे को साफ सुथरा चमकदार बनाए रखें।

0: ऐसा क्यों चलते चलते करेंगे काम की बातें। गर्मी में जब लगातार पानी पीने के बाद भी सर दर्द या थकान बनी हुई है तो सावधान हो जाइए, यानी कुछ गलतियां हम जरूर कर रहे हैं। आयुर्वेदा में ग्रीष्म ऋतु को आदान काल कहा गया है। सखियो, आदान यानी छीनना। सूर्य इस मौसम में शरीर के धातु यानी टिश्यू से नमी और ताकत दोनों छीनता है। ग्रीष्म ऋतुचर्या में ज्यादा पानी पियो ऐसा नहीं है, बल्कि कैसे पानी पियो, क्या पियो और कब पियो ये बताया गया है। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि फ्रिज का पानी सीधे कभी भी ना पिएं, क्योंकि ये हमारी पाचन अग्नि को सप्रेस करता है जिससे थकान बढ़ती है, आपका पाचन खराब होता है। साइंस से समझें तो ठंडे पानी को हमारे शरीर को ऊर्जा यूज करते हुए 37 डिग्री तक लाना पड़ता है ताकि शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ध्यान रखें, सामान्य नल का पानी 16 डिग्री का होता है, आइस वाटर से कहीं बेहतर हाइड्रेट करता है हमारे शरीर।
1: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: कवि श्री राग तेलंग।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है।
5: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
6: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
7: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
8: क्या
7: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
8: वो कैसे?
7: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: पर सुनेंगे कैसे?
7: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लियाकत हुसैन की आवाज में चंद गजलें। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे लियाकत हुसैन की आवाज में चंद गजलें, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर बाद।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: और सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे जावेद अख्तर का लिखा हुआ, आरडी बर्मन का संगीत है, आवाज कुमार सानू की है और फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। वहीं दूसरी ओर श्री मोदी ने और स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने एक साझा लेख लिखकर कहा है कि दुनिया को संकीर्ण सोच छोड़कर आपसी सहयोग की राह चुननी होगी। लेख में भारत के दो बड़े लक्ष्यों का जिक्र है, इसमें 2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में डॉ. मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश के

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दों को मिल बैठकर सुलझाना है। पिछली बैठक पिछले साल जून में वाराणसी में हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बस्तर के बादल अकादमी में आयोजित उज्जर बस्तर कार्यक्रम के मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया। डीजीपी कैलाश मकवाना समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और हॉक फोर्स के जवान इस सम्मान से नवाजे गए। हॉक फोर्स ने आधुनिक तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी के दम पर नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश में अब तक 12,10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीदी 23 मई 2026 तक चलेगी। किसानों को 2,585 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस मिलाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। अब तक किसानों को 10,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बेहद व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाएगा। इससे ट्रेनें समय पर चलेंगी और यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस न छोड़ने के अपने पुराने आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाए। अदालत ने बुजुर्गों, बच्चों, यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। आज सोने और चांदी दोनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1168 रुपए महंगा होकर 1.59 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 2181 रुपए उछलकर 2.70 लाख रुपए हो गए हैं। प्रदेश में कल भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खजुराहो में पारा 46.8 डिग्री पहुंचा, जो इतिहास का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। नौगांव में 40, राजगढ़ में 45.5, रतलाम में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आगर मालवा में जिला पोषण बाल कल्याण संरक्षण समिति की बैठक में कुपोषण मुक्ति अभियान, बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार पर विस्तार से चर्चा की गई। कटनी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नर्मदापुरम में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मानसून पूर्व तैयारियां तेज कर दी हैं। शिवपुरी में कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित 10 दिवसीय खरीफ पूर्व कृषि रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।

0: यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा

0: रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, तपती हुई दोपहरी कि जब जिंदगी कुछ पल फुर्सत की तलाशती है, किसी गीत की छांव तले सुस्ता लेना चाहती है, इन पलों में हम लेकर आए हैं भावनाओं से सजी वो पोटली, जिसमें है आपकी चिट्ठियां, आपके शब्द, आपकी फरमाइशें। तो आइए कुछ पल सुरों के साथ चलते हैं, कुछ पल सुकून के साथ गुजारते हैं, कुछ पल आपके साथ गुजारते हैं, मिलकर गुनगुनाते हैं।

आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत कुर्बानी फिल्म से, आवाजें कंचन, मनहर और इंदिवर आनंद की, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। फरमाइश आप सबकी है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। निम्भोरा से अशोक देशमुख, शरद देशमुख, बबन जोशी, शिवाजी चौक, बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ, अमोल वाघ। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम मोटवानी, मुकेश भावना, सोमेश और यशराज। देवास से राजीव अग्रवाल। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। ये चिट्ठी आई है बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। इसी गीत को पसंद करते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए।

और अब आइए सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। अनुरोध आप सबका है, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। ये चिट्ठी आई है डोंडी लोहारा दुर्ग से। लिखने वाले श्रोता हैं देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार, प्रभा देवी। सारणी जिला बैतूल से इसी गीत को पसंद करते हैं अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और संदीप पाटिल। शाजापुर से मधु राजावत, एमएम राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया हुआ है प्रमुनागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत। बहुत पहले से उन कदमों की

और अब आइए जूली फिल्म का गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राजेश रोशन। अनुरोध आप सबका है। नागर कोहरा से जग्गर राम साहू, जमुना देवी साहू, राजू और लल्ला साहू, सौगा धमतरी से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित और गजेंद्र कुमार चंदन। ये खत आया है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तिल्दा से इस गीत को पसंद करते हैं प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा, प्रिया, ओशीम और सोमेन कुमार चंद्र। ये खत आया है ग्राम अमलेश्वर से। लिखने वाले श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। दुनिया ये तसव्वुर हम आबाद नहीं करते, याद आते हो तुम खुद ही हम याद नहीं करते।

शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

और अब आइए सुनते हैं नूरी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। गीतकार हैं जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। पसंद आप सबकी है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम, ज्योति ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देखकर ये तड़प हुई कि तेरा नाम लेकर पुकार लो।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बस्तर के बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया। प्रदेश में अब तक 12,10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यह खरीदी 23 मई 2026 तक चलेगी। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बेहद व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाएगा। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30, रात 8:15 पर और रात 10:00। शाम 6:00 हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम कहकशां आप सुनेंगे, इसमें आज सुनिएगा आबशार गजल। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन राग हमीर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा, इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ की गई भेंटवार्ता, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, वेब्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन

पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 5 बजने वाले हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं युवा साथियों के कार्यक्रम युवावाणी से।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल
1: और साथ में मैं हूं अपर्णा। स्वागत करते हैं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिन है मंगलवार का और मंगलवार को बारी होती है हमारे खास सेगमेंट की, जिसका नाम है हमारे शहर से। तो आज कौन सा शहर होने वाला है ये तो हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं, पर उसके अलावा आज और भी कुछ चीज़ों पर बात करना ज़रूरी है। क्यों पढ़ना?
1: बिल्कुल काजल, बढ़ती गर्मी को देखकर हम कुछ बातें गर्मी से लेकर भी करेंगे। सोशल मीडिया जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। दोस्तों आज ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन उसके पहले बारी आती है आज के दो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, जिसमें से आज का पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है? मैं मेरा प्रश्न दोहराती हूँ, ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी

0: नहीं है।
1: सुनने में कितना बुरा लगता है कि ऐसा एक देश है जहां पर कोई भी नदी नहीं है। खैर, हमारे श्रोता इसका आंसर जो है, इसका उत्तर जो है, वो जरूर ढूंढेंगे। साथ ही हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि दुनिया में ऐसा कौन सा शहर है जहां पर हवाई अड्डा सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है। मैं सवाल दोहरा देती हूँ कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किस शहर में है।
0: तो दोस्तों, आप फटाफट इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के रखिए, उन्हें नोट करके रखिए, और अंत में जब हम इसका उत्तर देंगे तो उससे मिलाइएगा। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का पहला गीत।

0: अपर्णा बताओ कैसी चल रही है जिंदगी आजकल?
1: काजल, जिंदगी बिल्कुल रील्स की तरह स्मूथ चल रही है।
0: रील्स, बहुत ही सही शब्द का इस्तेमाल किया है तुमने। और इसी बात पर फिर हम आज ऐसी बात पर चर्चा कर लेते हैं जिसने हमारी रियल लाइफ को रियल लाइफ में बदल दिया है और हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं स्टोरीज, लाइक्स और नोटिफिकेशंस में सिमट कर रह गई है, यानी कि सोशल मीडिया की।
1: बिल्कुल सही काजल, आज बात करेंगे सोशल मीडिया और युवाओं के लिए इससे जुड़े अवसर, या मैं कहूँ लत के बारे में। मतलब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते कब रात के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल, और उस वक्त जो है फोन बंद नहीं किया जाता और फिर सुबह अलार्म बजने के बाद आंखें खोली नहीं जाती हैं। जब भी अलार्म बजता है तो लगता है बस 5 मिनट और। लेकिन सच बताएं दोस्तों, तो दूसरी ही ओर सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी काफी तरीकों से आसान भी बनाई है।
1: ये भी बिल्कुल ठीक है। आज कोई अपना टैलेंट दुनिया तक कोई भी पहुंचा सकता है। कोई डांस वीडियो बनाकर स्टार बन रहा है, तो कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहा है, तो कोई पढ़ाई और स्किल्स सीख रहा है।
0: सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, सोशल मीडिया आजकल करियर का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग, ये सब नए दौर की अपॉर्चुनिटीज हैं जो युवा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और उन्हें बहुत मज़ा भी आ रहा है।
1: बिल्कुल, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है काजल, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जब लाइक्स और फॉलोअर्स हमारी खुशी तय करने लगे तब ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं एडिक्शन की ओर मुड़ जाती है, नहीं?
0: बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सच बात है जिससे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कई युवा घंटों फ़ोन पर रहते हैं और इस वजह से पढ़ाई, नींद, परिवार, यहाँ तक कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लग जाता है और उन्हें इस बात की खबर भी नहीं होती है।
1: बिल्कुल, और काजल पता है सबसे बड़ा प्रेशर होता है परफेक्ट दिखने का। हर किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर इतनी शानदार दिखती है कि लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं
0: और वो ये भूल जाते हैं कि जो भी दिखाया जाता है उसे जानबूझकर परफेक्ट बनाया जाता है। खैर, पर दोस्तों आप याद रखिए कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज़ पूरी सच नहीं होती है।
1: बिल्कुल सही, असली जिंदगी फिल्टर से नहीं, कॉन्फिडेंस और बैलेंस से खूबसूरत बनती है।
0: जी हाँ, तो सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है, सवाल ये है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं।
1: दोस्तों, अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये सीखने, आगे बढ़ने और दुनिया से जुड़ने का एक बहुत ही शानदार माध्यम है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल इसे लत बना सकता है।
0: तो दोस्तों, फ़ोन को थोड़ा रेस्ट दीजिए और साथ ही अपने आप को भी, और उस समय में अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए और ख़ुद को भी थोड़ा ऑफलाइन टाइम दीजिए ताकि आप और क्रिएटिव चीज़ें कर सकें।

0: क्या बात
1: काजल, गर्मी इतनी पड़ रही है कि बाहर निकलते ही लगता है कि सूरज देवता हमसे पर्सनली मिलने आ गए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन दोस्तों, गर्मी है पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम फिटनेस पे या खेल कूद पर ध्यान न दें और उनसे पूरी तरीके से दूरी बना लें, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी में पसीना और चिड़चिड़ापन दोनों बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बंद कर देते हैं। पर इसलिए हम आज जो है एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो ये है कि गर्मियों में फिट कैसे रहें और कौन कौन से स्पोर्ट्स हम खेल सकते हैं।
1: वाह काजल, मतलब इतनी चलचलाती गर्मी में भी हम पसीना कैसे और बहा सकते हैं, ये टॉपिक आज तुम लेकर आई हो।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत मजेदार भी है क्योंकि समर वेकेशन हो और स्पोर्ट्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे पहले तो गर्मियों में वर्कआउट अगर करना है, अगर आप एक्सरसाइज और वर्कआउट में बहुत इंटरेस्टेड हैं और आपको पसंद नहीं है कि आपका वर्कआउट मिस हो जाए, तो उसके लिए सबसे सही समय जो है वो सुबह या फिर शाम का होता है, जो कि जाहिर सी बात है। और उस टाइम पे जो है टेम्परेचर्स भी थोड़े से नॉर्मल होते हैं, तो किया जा सकता है। और धूप में तो पूरी तरीके से मना हो जाना चाहिए बाहर निकलना या फिर वर्कआउट करना, क्योंकि हीट स्ट्रोक्स यानी कि लू से बचना मुश्किल हो सकता है अगर हम उस वक्त बाहर घूम रहे हो।
1: बिल्कुल सही। और साथ ही काजल, पानी पीना हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और उल्टा हम नॉर्मली जितना पानी पीते हैं उससे उसकी मात्रा बढ़ा ही देनी चाहिए। वर्कआउट से पहले, बीच में और बाद में बॉडी को हाइड्रेट करते रहना बहुत जरूरी है।
0: अब बात करते हैं समर स्पोर्ट्स की। तो गर्मियों में स्विमिंग से ज्यादा मजेदार और शानदार क्या हो सकता है? इससे बॉडी भी कूल रहती है और आपका शरीर पूरी तरीके से एक्टिव रहता है, और साथ ही साथ आपका मेडिटेशन भी हो जाता है पानी के अंदर रहने की वजह से।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही है काजल। और अगर स्विमिंग पॉसिबल नहीं हो तो हम बैडमिंटन, साइकिलिंग, योगा या फिर सुबह की जॉगिंग भी ऑप्शंस मान सकते हैं। नहीं
0: बिल्कुल। और मुझे तो इवनिंग बैडमिंटन बहुत पसंद है, थोड़ा सा फिटनेस, थोड़ा सा फन और थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन भी।
1: और दोस्तों, इंडोर गेम्स भी कम मजेदार नहीं होते हैं। टेबल टेनिस, चेस या फिर डांस वर्कआउट भी आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रख सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बात याद रखिए, जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करना भी सही नहीं है। अगर ज्यादा थकान, चक्कर या डिहाइड्रेशन महसूस हो तो तुरंत रुक जाइए और आराम करिए।
1: और प्लीज दोस्तों, सिर्फ मोबाइल पर फिटनेस रील्स देखकर मोटिवेटेड मत होइए, थोड़ा सा ग्राउंड पर भी अपने कदम रखिए।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने अपर्णा। असली समर बॉडी जिम में कम और हेल्दी हैबिट्स से ज्यादा बनती है।
1: तो दोस्तों, इस गर्मी फिट रहिए, खेलते रहिए और अपने दोस्तों को भी एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट करते रहिए।
0: और इसी के साथ सुन लीजिए ये गीत।

0: क्या बात है, बनारस का नाम सुनते ही घूमने जाने की इच्छा होने लगती है। वैसे घूमने जाने की बात करें अगर, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और शायद इसीलिए हमारा ये खास सेगमेंट हमारे शहर से में हम हर बार आपके लिए एक नया शहर लेकर आते हैं। तो अपर्णा, इस बार हम किस शहर के बारे में बात करने वाले हैं?
1: काजल, इस बार हम बहुत ही सुंदर नर्मदा नदी के किनारे बसा एक शांति प्रिय शहर नर्मदापुरम के बारे में बात करेंगे।
0: अरे वाह।
1: मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर है वो, जो अपनी शांति, प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और मां नर्मदा से जुड़े गहरे भावनात्मक रिश्तों के लिए जाना जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो नर्मदापुरम, जिसे पहले होशंगाबाद कहा जाता था, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ये हमारे राज्य के लिए। ये शहर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है और नर्मदा घाटी क्षेत्र की सांस्कृतिक आत्मा माना जाता है।
1: बिल्कुल सही काजल। पता है, इतिहास की अगर हम बात करें इस शहर के, तो शहर का पुराना नाम होशंगाबाद था, ये तो तुमने बताया। ये नाम मालवा सल्तनत के शासक होशंग शाह के नाम पर पड़ा था।
0: अच्छा, और ये भी कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में होशंग शाह ने इस क्षेत्र में प्रशासनिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाए थे, जिसके बाद ये इलाका उनके नाम से पहचाना जाने लगा।
1: बिल्कुल, और धीरे धीरे होशंग शाह से होशंगाबाद नाम प्रचलित हो गया। आबाद शब्द फारसी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है बसा हुआ नगर या विकसित कोई शहर, यानी होशंगाबाद का अर्थ हुआ होशंग शाह द्वारा बसाया गया नगर।
0: लेकिन समय के साथ लोगों का जुड़ाव इस शहर से, इस शहर की सबसे बड़ी पहचान बन गया, जैसे कि मां नर्मदा से, और गहरा होता चला गया। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, त्यौहार और जनजीवन सब नर्मदा नदी के इर्द गिर्द ही विकसित हुए हैं।
1: और इसी संस्कृति और धार्मिक पहचान को महत्व देते हुए वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। तो ये नाम केवल भौगोलिक पहचान को नहीं दर्शाता, बल्कि वहाँ के लोगों की भावनाओं और आस्था से भी जुड़ा हुआ है काजल।
0: अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ इसे एक सुंदर प्राकृतिक घेरा प्रदान कर देती हैं।
1: हाँ, और काजल इसी कारण यहाँ का वातावरण भी थोड़ा बहुत संतुलित और हरा भरा रहता है।
0: बिल्कुल, नर्मदा नदी यहाँ की जीवन रेखा है। सुबह सुबह घाटों पर पूजा अर्चना, शाम को नर्मदा आरती और त्योहारों पर दीपों से जगमगाते घाट, ये सब इस शहर की अलग ही पहचान बन जाते हैं।
1: दोस्तों, नर्मदापुरम केवल प्राकृतिक रूप से ही नहीं, बल्कि साहित्य और सांस्कृतिक के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण रहा है।
0: जी हाँ, और इसी के साथ प्रसिद्ध कवि जो हैं और साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके नाम पर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी है हमारे भोपाल में, ये उनका भी क्षेत्र से विशेष संबंध रहा है। उनकी रचनाओं में उनकी प्रकृति, देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की गहरी झलक दिखाई देती है।
1: बिल्कुल सही काजल, और इसी कड़ी में एक बात जोड़ना चाहूंगी कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई भी नर्मदा क्षेत्र की सामाजिक चेतना और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से गहराई से जुड़े हैं।
0: यहाँ लोक संस्कृति भी बहुत प्रसिद्ध है और समृद्ध है। नर्मदा जयंती, मकर संक्रांति, दीपावली और गणेश उत्सव बड़े ही उत्साह से मनाए जाते हैं। लोकगीतों और नर्मदा स्तुति की परंपरा आज भी यहाँ पर जीवित है।
1: और शहर की एक खास बात भी है दोस्तों, बात यह है कि यहाँ आधुनिकता और पारंपरिक जीवन शैली का सुंदर संतुलन देखने को मिल सकता है। मतलब सुबह मंदिरों की घंटियाँ और शाम को घाटों की आरती, ये शहर एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो हमने इतनी सुंदर सुंदर बातें कर ली है, तो फिर आइए सुन लेते हैं एक सुंदर सा गीत।

0: श्रोताओं, अब बात करते हैं नर्मदापुरम की खास जगहों और यहाँ के विकास के बारे में। अगर कोई पर्यटक यहाँ आए तो सबसे पहले उसकी सूची में होगा सेठानी घाट।
1: दोस्तों, यहाँ का प्रसिद्ध सेठानी घाट मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर घाटों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण एक समृद्ध व्यापारी परिवार की महिला जानकी सेठानी द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम सेठानी जी के नाम पर पड़ा, सेठानी घाट।
0: बिल्कुल, नर्मदा नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखना यहाँ का सबसे सुंदर अनुभव माना जाता है। शाम की आरती का समय, पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है।
1: इसके अलावा नर्मदापुरम के आसपास कई आकर्षक स्थान और भी है, जैसे पचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यहाँ झरने, गुफाएं और हरियाली पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है।
0: पास ही स्थित तवा डैम और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद खास जगह है।
1: और वहीं काजल, अब अगर खान पान की बात करें तो नर्मदापुरम का स्वाद बेहद देसी और पारंपरिक है। यहाँ पोहा जलेबी से सुबह की शुरुआत होती है और यहाँ के नाश्ते की पहचान भी वही मानी जाती है।
0: इसके अलावा दाल बाफला, भुट्टे की कीस, साबुदाना खिचड़ी और मालपुआ यहाँ काफ़ी पसंद किए जाते हैं। नर्मदा किनारे मिलने वाली चाय और स्थानीय स्नैक्स भी जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट माने जाते हैं और लोगों को बहुत पसंद आते हैं।
1: बिल्कुल, और दोस्तों यहाँ के बाज़ारों में पारंपरिक मिठाइयाँ और नमकीन भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि मुझे लगता है कि काजल पूरे मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश का ही नमकीन काफ़ी प्रसिद्ध है देश भर में। और त्योहारों के समय बाज़ारों में अलग ही रौनक दिखाई देती है।
0: अब बात करते हैं शिक्षा की। नर्मदापुरम शिक्षा के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ कई अच्छे स्कूल, कॉलेज और तकनीकी संस्थान मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय, सरकारी नर्मदा महाविद्यालय, सरकारी गृह विज्ञान बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज

0: विश्वविद्यालय यहाँ के प्रमुख शासकीय शिक्षा संस्थानों में शामिल हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते हैं।
1: और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ की कोचिंग संस्थान विकसित हो रहे हैं। डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं भी अब धीरे धीरे नर्मदापुरम में बढ़ रही है।
0: कृषि की दृष्टि से यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण इलाकों में गिना जाता है। नर्मदा नदी के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है
1: और इसीलिए शायद यहाँ पे गेहूं, सोयाबीन, चना, मक्का और धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। दोस्तों, कृषि आधारित व्यापार यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है।
0: व्यापारिक रूप से भी शहर का विकास तेजी से हो रहा है। नई सड़कें, बाजार, बैंकिंग सुविधाएं, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान के कारण शहर आधुनिक स्वरूप ले रहा है।
1: बिल्कुल काजल, और एक खास बात ये कि यहाँ का जीवन बहुत अधिक भागदौड़ वाला नहीं है। लोग आज भी आपसी संबंधों और सामाजिक मेलजोल को महत्व देते हैं।
0: यानी कि नर्मदापुरम केवल एक शहर नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति और सादगी का सुंदर मेल है।

0: तो दोस्तों अब जानते हैं नर्मदापुरम के मौसम और यहाँ तक पहुँचने के साधनों के बारे में। तो नर्मदापुरम का मौसम सामान्यतः गर्म और मध्यम आर्द्रता वाला रहता है और इसी के साथ गर्मियों में तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन नर्मदा नदी के कारण सुबह और शाम का वातावरण काफ़ी सुखद महसूस होता है।
1: और सर्दियों में यहाँ का मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। सुबह की हल्की धुंध और नदी किनारे की ठंडी हवा लोगों को बहुत पसंद आती है।
0: और इसी के साथ मॉनसून के दौरान यहाँ अच्छी बारिश होती है। बरसात में नर्मदा नदी का जो प्रवाह है वो आसपास की हरियाली और शहर की सुंदरता को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है।
1: और दोस्तों बात करें कि इंदौर से नर्मदापुरम कैसे पहुंचा जाए, तो इसके लिए सड़क मार्ग काफ़ी अच्छा है। इंदौर से यहाँ की दूरी लगभग 260 से 270 किलोमीटर है और यात्रा में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं।
0: रेलवे की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। पास का इटारसी जंक्शन देश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में से एक है, जहाँ से भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन उपलब्ध होती है।
1: और इंदौर, भोपाल, जबलपुर और नागपुर से नियमित बसें सेवाएं नर्मदापुरम के लिए चलती है। सड़कें बेहतर होने के कारण यात्रा काफ़ी सुविधाजनक हो गई है।
0: निकटतम यानी कि पास में काफ़ी बड़ा हवाई अड्डा भी है भोपाल में, जो कि भोपाल में स्थित है, जहाँ से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से आप नर्मदापुरम पहुँच सकते हैं।
1: दोस्तों यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की शांति, बड़े शहरों की भागदौड़ से दूर ये शहर प्रकृति के करीब रहने का एक एहसास कराता है।
0: यहाँ पर सुबह सुबह घाटों पर टहलते हुए लोग, शाम की आरती, छोटे छोटे बाजार और लोगों का अपनापन, ये सब कुछ ही शहर को एक बेहद खास जगह बना देता है।
1: और दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पर्यटन, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में विकास हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और सादगी को बनाए रखा है।
0: तो श्रोताओं, अगर आपको भी कभी मध्य प्रदेश आने का और यहाँ पर घूमने का मौका मिले और उसे आप महसूस करना चाहें, तो आप नर्मदापुरम ज़रूर आएँ।

0: दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपसे पूछे गए सवालों के आपको उत्तर दिए जाते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न था कि ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है, और उसका उत्तर है सऊदी अरब।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किस शहर में है, तो इसका उत्तर है अटलांटा। तो श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, आपको खूब सारी नई बातें जानने को मिली होंगी, और आप हमसे किन नई बातों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप हमें खत और ईमेल्स के द्वारा बता सकते हैं। तो इसी के साथ दीजिए काजल
0: और अपर्णा को अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने आपके लिए चुना है त्रिशूल फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की, संगीत खयाम का।

लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। गीत की रचना नक्श लियालपुरी की है, संगीत खयाम का।

0: अभी आप सुन रहे थे थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म का गीत। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। लेकिन हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि कुछ और गीतों के साथ हम हाजिर होंगे रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया में। और उसके बाद आप सुन पाएंगे मन भावन कार्यक्रम रात्रि 10:00। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम
1: लवली निगम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं

0: सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहां हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
0: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षावनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओ एक बड़ी रोचक बात है वर्षावनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षावनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
0: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
0: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदिमानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओ अब जानते हैं अजीत जी से वर्षावनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और रोचक बात वर्षावनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षावनों में पाए जाते हैं उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
0: जी श्रोताओ, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षावनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षावनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओ ये थी सामान्य जानकारी वर्षावनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी।

0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूं।
0: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
5: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।

0: IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना
4: लगाओ। अरे बार क्यों नहीं लगी? अरे
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो? अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल

0: दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
1: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
2: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
1: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
0: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
1: आप तो काम करती है ना?
0: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
1: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
0: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे,
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा, गौरमा,
1: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
1: कौन लोग आ रहे हैं?
6: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
1: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
1: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
7: हाँ गौरमा,
1: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
7: हाँ गौरमा,
4: हम सब तैयार हैं।
7: किसी भी हाल में
4: जंगल
7: कटने नहीं देंगे।
4: नहीं कटने देंगे,
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
5: ये है जंगल के उपकार,
8: मिट्टी पानी और बया,
5: मिट्टी पानी और बया,
8: जिंदा रहने के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
9: अरे क्या कर रहे हो?
10: मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू।
9: अरे भाई कौन है? रुको, इस कर जाएंगे पेड़ से।
6: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
10: आगे बढ़ो।
9: अरे कहाँ से?
10: दो मिनट की बात तो मैं बताओ। मैंने तुम्हें पेश की थी, पेश की इस काम के लिए।
9: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं भूल देंगे हम।
6: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
5: नहीं लगाने देंगे। बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
8: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
10: ठीक है, तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
10: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
0: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
3: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
0: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
6: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
3: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
11: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
12: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
11: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लियाकत हुसैन की गाई गजलें। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम की पहली गजल, जिसे लिखा है रिफत सुल्तान ने।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं लियाकत हुसैन की गाई गजलें। आइए श्रोताओं, अब इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं बहादुर शाह जफर का लिखा ये कलाम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लियाकत हुसैन की गाई गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रेखा सोलंकी के गाए मालवी लोकगीत। तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, सबसे पहले मालवा की मिट्टी की खुशबू से सरोबार, ये पारंपरिक रचना।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं रेखा सोलंकी, इनकी गायी मालवी रचनाएं आप सुन रहे हैं। इसी क्रम में सुनिए अगली पारंपरिक रचना।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं रेखा सोलंकी के गाए मालवी लोकगीत, प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से हो रहा है। इसी क्रम में आइए सुनते हैं अंतिम रचना

0: रेखा सोलंकी के गाए मालवी लोकगीत आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संध्या के 7 बजने वाले हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
2: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ऑर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पांचवें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको देते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की और कुछ जानकारी कल के कार्यक्रमों की। पहले सुनिए हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी हमेशा की तरह 7:20 पर आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इस कार्यक्रम में गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल पर डॉक्टर सी के रत्नावत से धरणीधर की बातचीत सुनवाई जाएगी, साथ ही एक वार्ता भी सुनिएगा। रात 8:00 सुर्खियों में रिले होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 8:15 पर होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर सुनिएगा सुरीले गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। 9:30 उर्दू कार्यक्रम कहकशा आकाशवाणी भोपाल से रिले होगा। 10:00 श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन होगा। 10:30 शास्त्रीय संगीत में पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन राग चारुकेशी में सुनवाया जाएगा। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी सभा के शेष कार्यक्रमों की। और आइए अब आपको देते हैं जानकारी कल 20 मई बुधवार के कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। सवेरे 7:20 पर आपका पत्र कार्यक्रम में आपके पत्रों के जवाब दिए जाएंगे। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। लोक संगीत का समय रहेगा 9:00 का और 6:45 का। कलाकार होंगी ममता शर्मा। सुगम संगीत में गुरुशा दुबे को सुनवाएंगे। समय रहेगा 9:15 का और 6:30 का। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा हमेशा की तरह 9:30। इस कार्यक्रम में भरत तिवारी का एकल तबला वादन सुनवाएंगे। 10:05 से 11:00 तक सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता हमसे जुड़ने के लिए फोन नंबर नोट करें 2710223 और 2710224, इंदौर का STD कोड 0731। तो याद रखिए समय

सवेरे 10:05 से सवेरे 11 तक MH हॉटलाइन कार्यक्रम में। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से। आरंभिक चर्चा होगी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। आज का क्रम के तहत एक ही फिल्म से में राजा बाबू फिल्म पर चर्चा होगी और कुछ गीत भी सुनवाए जाएंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा संध्या 5:45 पर। संध्या 6 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 7:20 पर हमेशा की तरह होगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आज की बात होगी किसान समृद्धि योजना पर। साथ ही प्रगतिशील ग्रामीण कृषक भावना खाटरिया से सुनीता पंडित की बातचीत सुनवाई जाएगी। रात 8 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुर्खियों में रिले होगा। 8:15 पर कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर सुनिएगा चित्रगीत। रात्रि 9:30 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा चर्चा का विषय है। रात 10 सुनिएगा नाटक उसका फैसला। और 10:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा शरद साढ़े को। तो श्रोताओं, ये जानकारी थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं एक बार फिर याद दिला दें कि आज रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भवन, और साथ ही कल सवेरे 10:05 से 11 बजे तक आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हमारे श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में की शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, चार राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दी रेबीज और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, 22 शहरों में तापमान 44 के पार, अगले 3 दिन और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून के सम्मान के नजरिए से भारत और नॉर्डिक देश स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश बढ़ा है।
1: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: सम्मेलन से पहले श्री मोदी ने डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों से अलग अलग मुलाकात भी की। 5 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे थे। अब श्री मोदी 20 मई तक

0: विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। जगदलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2031 तक बस्तर के लोगों की आमदनी 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। श्री शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर में 200 सुरक्षा शिविरों में से 70 को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा में बदला जाएगा, जहां बैंकिंग, स्कूल, कौशल प्रशिक्षण और वनोपज प्रसंस्करण जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि जहां कुत्तों की संख्या खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हो और लगातार हमलों से जन सुरक्षा खतरे में हो, वहां ये कदम उठाया जा सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या पर कई निर्देश भी जारी किए। साथ ही कोर्ट ने कुत्तों की नसबंदी और आश्रय स्थल भेजने के पुराने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। एमपी ट्रांसको ने वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रांसमिशन लॉस को 2.60% पर बनाए रखा है, जबकि नियामक आयोग का लक्ष्य 2.75% था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बढ़ती बिजली मांग और सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ने जैसी चुनौतियों के बावजूद ये कामयाबी हासिल की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोशाला में आज महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। मां वाग्देवी की महाआरती, हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। पूरा परिसर में बसंत पंचमी जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की मांग है कि मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर यहां स्थापित किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने आज भोपाल के आदि भवन में जनजातीय गरिमा उत्सव कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जनजातीय अंचल की बच्चियां सुविधाओं के अभाव में उच्च शिक्षा छोड़ देती थीं। इसे देखते हुए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 बसें चलाई, जिससे कॉलेज जाने वाली छात्राओं की संख्या 30 से बढ़कर 80% हो गई। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में कल प्रदेश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल के सैकड़ों मेडिकल स्टोर इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं है, जिससे नकली और एक्सपायरी दवाएं मरीजों तक पहुंचने का खतरा है। हालांकि अस्पतालों के अंदर में मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना में सेवा के बाद श्री खंडूरी ने ईमानदार और पारदर्शी राजनीति का आदर्श स्थापित किया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना से लेकर राजनीति तक श्री खंडूरी का योगदान अमूल्य रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति ने आज भोपाल स्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का दौरा किया। यहां संस्थान के निदेशक मनोरंजन मोहंती और कृषि वैज्ञानिकों ने समिति को पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 11 सदस्यीय समिति दल के साथ बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ा दी है। पहले सीमा 16,000 रूपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रूपये कर दिया गया है। यानी राज्य मंत्री किसी जरूरतमंद को एक साल में एक मामले में अधिकतम 25,000 रूपये तक की मदद दे सकेंगे। राज्य सरकार ने दिव्यांगजन और सामाजिक न्याय विभाग की 252 संस्थाओं की निगरानी के लिए क्वालिटी ऑडिट मोबाइल ऐप लागू किया है। इसके जरिए वृद्धाश्रम, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, विशेष विद्यालय और नशा मुक्ति केंद्रों का डिजिटल निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारी मौके पर फोटो खींचकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे और संस्था को ग्रेडिंग दी जाएगी। छोटे बच्चों की स्कूल से झिझक खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ एक ही परिसर में लाने का फैसला किया है।

इस को लोकेशन मॉडल से बच्चों का आंगनवाड़ी से पहली कक्षा में जाना आसान और सहज हो जाएगा। प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो में आज पारा 46.4 डिग्री पहुंच गया, जबकि भोपाल और इंदौर में दोपहर सड़कें सूनी दिखाई दीं। प्रदेश के 22 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री और बढ़ने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज दमोह रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर विशेष एसी ट्रेन मां वैष्णो देवी के लिए रवाना हुई। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ट्रेन को विदा किया। झाबुआ, अशोकनगर, सीहोर, खंडवा में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। कटनी में जनजातीय समुदायों को शासकीय योजनाओं का 100% लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनभागीदारी अभियान की शुरुआत हो गई है। आगर मालवा में कल हुई टीएल बैठक में जिला पंचायत सीओ ने जिले में गठित की जाने वाली विभागीय समितियों का शीघ्र गठन कराने के निर्देश दिए। नीमच शासकीय आईटीआई में कल युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी जिले में परिवहन विभाग द्वारा मक्सी दाहोद में हुई बस दुर्घटना के बाद यात्री बसों की सघन जाँच की जा रही है। बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। नर्मदापुरम जिले में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले आईईसी अभियान चलाया जाएगा। राजगढ़ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला अपना सगला किसान भाई बहन के तमारी बेन मनीषा शर्मा की प्रेम भरी राम राम। भाई बहनों, अपना खेत ना में अपन रासायनिक खेत जो खाद है या दवाई ना है वे डाली डाली के तो अब थकीज गया होगा। आने देखो इतना महंगा महंगा खाद और दवाई डाली डाली के अपनी जेब भी खाली हुई रही होगी और उसका बाद भी जो अपन फसल उग रहा है वो अपना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इन्हीं सगली समस्याओं को समाधान के लिए अपने जरूरी है कि अपन जैविक खेती के अपनावा। आजकल अपन हर तरफ जैविक खेती से बनी हुई सब्जी फल और अनाज की मांग देख ही रहा है। जैविक या प्राकृतिक खेती अपने के अपन कम लागत में अच्छो मुनाफो कमाई सकता है। जैविक खेती आज को नयो फैशन नहीं है, यो अपना बाप दादा को खेती करने को पारंपरिक तरीको है जो अपना पर्यावरण और अपना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। भाई बहनों, यो तो आप भी जानो जे कि बाजार में रासायनिक दवाइना की कीमत कितनी है। महंगी महंगी दवाई

0: अपन खरीदी रहा है अने उका बाद भी जो अपन फसल उगाई रहा है वे अपना शरीर के फायदों नहीं पहुँचाई रही है बल्कि नुकसान पहुँचाई रही है। और हमारा शरीर के साथ साथ हमारा पर्यावरण की और हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उके भी वह कम करी रही है। तो इन्हीं महंगी महंगी दवाई ना के छोड़ी के अपना आज का समय की मांग है कि अपन जैविक खेती के अपनावा और अपनी धरती ने अपना पर्यावरण के रासायनिक दवाई ना का जहर से बचावा। खाद का रूप में अपन अपनी कृषि का जो अवशेष है वी है, अपना फल सब्जी उनको कचरो है, अपना जो पशुधन है उनको गोबर है, इन सबके मिले के उपयोग कर सकता है। वर्मी कंपोस्ट खाद, जीवामृत, इन सब से अपना फसल की जो गुणवत्ता है वह बढ़ेगी भी सही और उनको अच्छा दाम भी अपने मिलेगो। अने अपना जो फसल है उनके कीट का प्रकोप से बचाने का लिए अपन नीम का तेल, छाछ, लहसुन मिर्च को घोल और गोमूत्र को उपयोग कर सकता है। भाई बहनों, खाद और कीटनाशक का बारे में अभी अपन ने बात करी तो पतो लगियो कि जैविक खेती करके अपन रासायनिक खाद और दवाई ना का मुकाबले जैविक खाद और दवाई ना को दाम ना का बराबर दे दिया है। हमारा ऐसा कई सारा उदाहरण भी अपना आसपास है। हमारा गांव का रमेश दा के देख ही लो, जैविक खेती के अपने के उनने हमारे बतायो कि पहला भी एक एकड़ जमीन में लगभग 15,000 की खाद और दवाई ना डालता था। अब जैविक खेती के अपने के 3,000 मेज काम बनी रही है तो भाई बहनों सीधा 12,000 की बचत एक एकड़ जमीन पे उनके हुई रही है। आने का साते साते जो केमिकल वाला गेहूं है नी उनकी कीमत पहला उनके मिलती थी 2200 रुपया से लगे के 2500 रुपया, पर बीज लगभग गेहूं जो है वी आज 50% ज्यादा दाम में बेची भी रहा है। और इका सातेज जो उनका खेत की मिट्टी है वह भी भुरभुरी और उपजाऊ बनी रही है। अने जो पानी की या सिंचाई की व्यवस्था भी करता था उनमें भी अब उनके कम पानी की जरूरत लगी रही है। तो भाई बहनों सगली बात को सार यो है कि अपन जैविक खेती के अपने के अपना पैसा की बचत कर सकता है, सातेज अपनी मिट्टी, पर्यावरण और अपना स्वास्थ्य सबके सुरक्षित रख सकता है। तो जैविक खेती अपनाओ और अपनो मुनाफो बढ़ाओ। अने देखो भाई बहनों जैविक खेती तो अपन अपनाओ आज ने पे खेती का जो नया तरीका उनके है उनके भी अपनाना बहुत जरूरी है। और अब अगली फसल अपनी हुई रही है सोयाबीन, तो की बोनी का बारे में भी अपने अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अने यो भी ज्ञान होना चाहिए कि अपन सोयाबीन को उचित विपणन कैसे करा, अब कैसे करना है इन बारे में क्यों नहीं एक वार्ता सुन ला। वार्ताकार है डॉक्टर विशाल एस थोरात जो कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान से है, सुना उनकी यह बातचीत।
1: नमस्कार किसान भाई और बहनों, राम राम। मैं डॉक्टर विशाल शंकर थोरात, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि अर्थशास्त्र, ICR, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती में संतुलित उर्वरक उपयोग और उससे होने वाली आर्थिक लाभ के बारे में। भाइयों, आप सभी जानते हैं जैसे भारत में सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से मध्य भारत के राज्यों में होती है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक एवं तेलंगाना जैसे राज्य का समावेश है। इनमें से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का योगदान कुल उत्पादन के लगभग 80% है। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए लागत कम करना और मुनाफा बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम लागत की बात करें तो CACP और हमारे प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन की कुल लागत में लगभग 11-15% हिस्सा उर्वरकों पर खर्च होता है। यानी यदि हम उर्वरक के उपयोग को वैज्ञानिक और संतुलित बना ले तो कुल लागत में अच्छी खासी बचत हम कर सकते हैं। कई बार किसान क्या करते हैं, अधिक उत्पादन की उम्मीद में उर्वरकों का असंतुलित या फिर अधिक उपयोग कर लेते हैं, लेकिन इससे न तो उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि होती है और न ही यह आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होता है। इसके विपरीत इससे लागत बढ़ती है वो अलग, और मिट्टी की सेहत पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग बहुत जरूरी है। यानी फसल की जरूरत और मिट्टी की स्थिति के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश का सही मात्रा में उपयोग करना, इससे पौधों को उचित पोषण मिलता है, उत्पादन बेहतर होता है और अनावश्यक खर्च से भी बचा जा सकता है। अब किसान भाइयों बात करते हैं एक महत्वपूर्ण तकनीक की, जो है माइक

0: माइक्रोबियल कंसोर्टिया। यह माइक्रोबियल कंसोर्टिया हमारे संस्थान द्वारा ही विकसित एक तकनीकी है जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। इसके उपयोग से हम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता लगभग लगभग 25% तक कम कर सकते हैं। भाइयों, अगर हम अलग अलग राज्यों के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में जहां उर्वरकों पर लगभग 2500 से 3000 प्रति हेक्टेयर का खर्च आता है, वहां इस माइक्रोबियल कंसोर्टिया के उपयोग से हम सीधे सीधे 600 से 750 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। वही महाराष्ट्र में जहां उर्वरकों पर 5000 से 6000 रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्च आता है, वहां हम सीधे सीधे 1250 से लेके 1500 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। यही खर्च उर्वरकों पर किए जाने वाला खर्च राजस्थान में लगभग 1500 से 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर का है, जहां हम 375 से 500 रुपए तक बचा सकते हैं। वैसे ही गुजरात में 600 से 675 रुपए तक बचा सकते हैं और कर्नाटक में जहां उर्वरकों पर 3500 से लेके 4000 तक प्रति हेक्टेयर खर्च आता है, वहां हम 900 से 1000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। यानी एक छोटी सी तकनीक अपनाकर किसान भाई प्रति हेक्टेयर अच्छी खासी राशि बचा सकते हैं। यह बचत सीधे किसान भाइयों की आय में जुड़ती है, यानी कम लागत और ज्यादा मुनाफा होता है। इसके अलावा उर्वरकों का कम और संतुलित उपयोग करने से हम मिट्टी की उर्वरता भी बने रहने में उसको सक्षम बना सकते हैं, जिससे भविष्य में भी उत्पादन स्थिर रहता है और अतिरिक्त निवेश की भविष्य में हमें जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। भाइयों, आजकल प्राकृतिक खेती जैसे विकल्प भी किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत, हरी खाद और फसल अवशेषों का उपयोग कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और लागत में अच्छी खासी कमी आ सकती है। तो किसान भाइयों, अंत में यही कहना चाहूंगा, संतुलित उर्वरक उपयोग, माइक्रोबियल कंसोर्शिया और प्राकृतिक खेती जैसे उपाय हम लोग अपना कर सोयाबीन की खेती अधिक लाभकारी, टिकाऊ और सुरक्षित बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज ही इन वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करें, इनको अपनाएं और अपनी खेती को बनाएं कम लागत वाली और अधिक मुनाफे वाली। धन्यवाद।
1: सोयाबीन का उचित विपणन, इना बारा मा हमने वार्ता सुनी। वार्ताकार था डॉक्टर विशाल एस थोरात, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। अन देखो, उन्हें कितनी अच्छी बात बताई कि वैज्ञानिक तरीका उनसे अपने के अपन जो अपनी आने वाली फसल है सोयाबीन, उसको अच्छो उत्पादन कर सकता है और अपना भाइयों ने अच्छो मुनाफो कमाई सकता है। तो भाई बहनों, अच्छो मुनाफो कमा जो। पर अभी सुन लो एक लोकगीत जी के गाय भाई मांगीलाल बारोट ने।

0: भाई बहनों देखो गर्मी घनी पड़ी रही है अने इन गर्मी में लू लगने की परेशानी भी देखने में मिले अने खास करके जो मनक दोपहर का समय घर से बाहर निकले तो ऐसा में अपने ध्यान रखना है इन गर्मी से बचने का लिए सुबह 11 बजे से लगे कि शाम के 4 बजे तक कम से कम सूरज की रोशनी में अपने नहीं निकलना है बाहर धूप में आने जितनो ज़्यादा हो सके उतनो ज़्यादा पानी पियो। कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी अपने पीनोज पीनो है आने ढीला ढाला कपड़ा पहनो, हल्का रंग का कपड़ा पहनो, नहीं फूल अस्तिन का कपड़ा पहनना चाहिए। इससे कहीं होगा कि अपने जो गर्म हवा है वह सीधी अपनी त्वचा पे नहीं लगेगी। अने किसी काम से घर से निकलने को होए तो अपना सिर के टोपी गमछा या छाता से ढकी के निकलो। आने ऐसा समय पे कच्चा प्याज खानो, आम को ने बेल को जूस पीनो, छाछ तरबूज खरबूज इन सबको इस्तेमाल करते रहनो चाहिए। इकासे गर्मी से अपनो बचाव होतो रहेगो आने अपनो साथ साथ अपने अपना पशुधन को भी गर्मी से बचाव करना है। तो पशुधन को अपन गर्मी से बचाव कैसे करा इन बारा में एक भेंट वार्ता ली गई हूँ। भेंट वार्ता में डॉक्टर सी के रत्नावत संयुक्त सेवानिवृत्त संभागीय संचालक पशु चिकित्सा सेवा से इनसे चर्चा करिए भाई धरणीधर मिश्रा ने। सुना उनकी बातचीत।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। खेती गृहस्थी कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की ओर से

0: आपको सादर नमस्कार, राम राम।
1: राम राम।
0: डॉक्टर साहब, मैं धरणीधर मिश्र आपसे आज जो हमारे किसान भाई पशुधन रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं और उससे अपने खेती बाड़ी के कामकाज में भी सहायता लेते हैं, ऐसे पशुधन की साज संभाल कैसे रखें इस मौसम में, गर्मी के मौसम में विशेषकर क्या सावधानियां रखें, उन्हें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनसे कैसे बचें और अच्छा से अच्छा उन लोगों का उपयोग कैसे कर पाएं, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपका परिचय हमारे श्रोताओं को बता दूं। डॉक्टर सी के रत्नावत साहब, आप जो है पशु चिकित्सा सेवाएं जो विभाग है मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें संयुक्त संचालक के पद पर रहे, ठीक है ना डॉक्टर साहब?
2: जी सर।
0: जी, तो डॉक्टर साहब आपका अनुभव हमारे श्रोताओं के निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा जो दुधारू पशु है यानी हमारी गौ माता और जो भैंस है, इनके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे कि इस मौसम में उनके लिए कैसे क्या सावधानी रखें, क्या उनको बीमारियां हो सकती है।
2: इस मौसम में क्या तेज धूप हो जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है, तो सबसे पहला उपाय जो किसान भाई या पशुपालन करें कि गाय भैंस और उनके जो भी बकरी, उनको धूप से बचाएं, तेज धूप के एक्सपोजर से बचाएं। होता क्या, गाँव में वो पशु चराने के लिए ले जाते चरागाह में, तो वो ऐसा समय का चयन करें कि सवेरे जल्दी या शाम को 5-6 बजे ऐसा टाइम निर्धारित कर दें जिसमें उनको ज्यादा धूप में नहीं रहे, क्योंकि ज्यादा धूप में रहेंगे तो सन स्ट्रोक का चांस रहेगा और गंभीर रूप से पशु बीमार हो सकता है।
0: अच्छा,
2: मुख्य सावधानी ये रखना है। दूसरी सावधानी ये है कि जहाँ उनका पशु बांधने का घर है वो हवादार, पर्याप्त हवादार होना चाहिए। और तीसरी जो मुख्य सावधानी है कि पीने के पानी का प्रबंध 24 घंटे पर्याप्त रूप से होना चाहिए। डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है।
0: यह बात आपने अच्छी ध्यान दिलाई कि उनका स्थान भी हवादार होना, न उनका पीने का पानी की सोय भी उनके दिन भर होना, 24 घंटे उनके पानी जब भी लगे तो मिल सके।
2: जी जी।
0: और एक सबसे पहली जो बात बताई आपने कि सुबह सुबह जल्दी अपन उनके चरे जाओ, न सांझ की बखत चराओ, ऐसा
2: जी, क्योंकि दोपहर को तेज धूप के कारण सन स्ट्रोक की संभावना रहती है।
0: अच्छा अच्छा, तो उनका लक्षण कहीं है, मतलब जैसे आपने कैसे मालूम पड़ेगा कि पशु के सन स्ट्रोक हुई हो?
2: वो एकदम जमीन पे गिर जाएगा, उसके शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाएगा, वो हांफने लग जाएगा और बेहोशी जैसी हालत में भी आ जाएगा, ये उसका मुख्य लक्षण है।
0: अच्छा जी। तो प्राथमिक उपचार के रूप में अपन कहीं कर सका, कभी ऐसी स्थिति आई जाए,
2: सबसे पहले तो उसको तुरंत ऐसी जगह शिफ्ट कर दें जो छायादार और हवादार स्थान है। और दूसरा, पशु को कोशिश करें कि धीरे धीरे पानी पिलाएं।
0: अच्छा।
2: हाँ, वो पानी में गुड़ का या जो भी शक्कर का जो तुरंत दे सकते हैं आसानी से उपलब्ध जो है वो उसको दें धीरे धीरे करके, तो जिससे क्या है कि डिहाइड्रेशन की समस्या भी आएगी ना इसमें, तो वो भी दूर होगी। और ठंडे पानी की पट्टियां रखे शरीर पे।
0: अच्छा,
2: टेम्परेचर को कम करने के लिए उसके पशु के शरीर के ऊपर ठंडे पानी की पट्टियां रखे।
0: अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब एक बात और बताऊं, क्योंकि ऐसा देखने में आया कि इन्हीं बखत में खासकर
2: जी
0: तो इनको जो दूध उत्पादन कम हो जाए।
2: हाँ, बहुत बहुत शार्पली कम हो जाता है।
0: तो उनको कई कारण है और उनको उपचार भी, कहीं दोनों बात बताओ हमारे।
2: वो गर्मी के कारण ही मेन ये रहता है, समस्या रहती है। तो एक तो मैंने जैसा पूर्व में आपको बताया कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता, दूसरा जो डाइट में है ना कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो एडिशनल रूप से भी कैल्शियम दे सकते हैं आप उनको पीने के लिए डॉक्टर की सलाह से।
0: अच्छा,
2: जो दुधारू पशु है उनको 50-100 ml के करीब पीने का कैल्शियम बाजार में आसानी से उपलब्ध है।
0: अच्छा,
2: वो पिलाए उनको, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने से दूध उत्पादन पे एकदम तेजी से प्रभाव पड़ता है।
0: यह बात।
2: दूसरा, जो उनका डाइट है वो हल्का रखना है, बहुत ज्यादा भारी जो दाना पानी जो उनका देते हैं बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं दें और हल्का उनको सुपाच्य भोजन दें, क्योंकि डाइजेशन इस सीजन में थोड़ा सा कम रहता है, अगर उपलब्ध है तो हरा चारा उनको दें, जो कि उनके डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: इन बात को ध्यान रखूंगा तो जो अपना उत्पादन है वो भी एक तो प्रभावित
2: होगा, उत्पादन तेजी से बढ़ेगा और जो कमी आएगी वो नहीं होगी।
0: अच्छा, पर एक बात और, बहुत दिन से हमारे किसान भाई भी पूछे और हमारा जो जानकार जो भाई है जो दूध वापरे है जो अपना ग्राहक है वे भी पूछे कि इन जानवरों के, इन अपना पशुधन के कोई इंजेक्शन लगाए दूध बढ़ाने सर?
2: दूध बढ़ाने के सच कोई इंजेक्शन आता नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, पशुओं में एक सामान्य समस्या रहती है, विशेष तौर पर भैंस में, जब उनका बच्चा मर जाता है, मृत्यु हो जाती है जब जनने के बाद, तो वो दूध देना एकदम से बंद कर देते हैं। तो उसको दूध रखना, क्योंकि उनके आर्थिक रूप से उनसे, किसानों भाइयों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो क्या करते हैं कि उनको इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि बाजार से, किराना दुकान से, मेडिकल से, जहाँ से भी खरीदते हैं वो। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है जो कि बहुत कम कीमत में उपलब्ध रहता है, वो उनको लगाते हैं, तो उसके कारण वो इंजेक्शन जैसे ही लगाते हैं तो दूध उनका लेट डाउन हो जाता है, दूध देने लगते हैं वो। तो ये क्या धीरे धीरे पशुओं को आदत हो जाती है। और ये हार्मोनल इंजेक्शन है, तो किसान भाइयों को ये पशु चिकित्सक के निर्देशन में ही काम करना चाहिए। अगर असामान्य रूप से वो ये हार्मोनल उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे उनका पशु खराब हो जाएगा और उनको बहुत हानि होगी। दूसरा, जो ये दूध कंज्यूम मनुष्य करेंगे तो उनमें भी इसके बहुत गंभीर नुकसान है।
0: हाँ, हमने ये सुना था कि ये जो इंजेक्शन चल रहा है दूध बढ़ाने का, जो आखिरकार करके जो दूध जो ग्रहण करते हैं बच्चे, बूढ़ा,
2: उनको बहुत नुकसान होता है।
0: हाँ, उनके शरीर में भी घातक ही हो।
2: हाँ, उनका वजन बढ़ जाएगा, बच्चों, छोटे बच्चों में प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी और भी बहुत सारी समस्याएं होती है उससे।
0: तो कुल मिला के इंजेक्शन का उपयोग कभी बहुत जरूरत ही हो तो डॉक्टर साहब की सलाह से ही करना, आपको कहना मतलब
2: उनके निर्देशन में ही करना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी विड्रॉ करना है।
0: अच्छा,
2: लंबे समय तक नहीं देना है।
0: हाँ, ये आदत नहीं बननी चाहिए।
2: हाँ, नहीं तो वो दूध में आता रहेगा उनके बराबर और वो मनुष्य अनजाने में उसको कंज्यूम करता रहेगा और उनके शरीर का नुकसान होता रहेगा।
0: ओहो, ये तो बड़ी गंभीर बात है, आपने अच्छी बात।
2: गंभीर विषय है।
0: तो हम उम्मीद करना, जो किसान भाई बहनों जानकारी नहीं होगी जिनके, और वे खाली के दूध बढ़ाने वाले इंजेक्शन समझ ही रहा होगा, वे इससे जरूर से जरूर थोड़ा सा इनकी हेयर रखेगा ना, ऐसा उपयोग नहीं करेगा।
2: वो बहुत घातक मतलब रहता है, पशु के लिए तो रहता ही है, जो इंसानों के लिए भी इनडायरेक्टली जो दूध कंज्यूम करते हैं उनके लिए नुकसानदायक है।
0: अच्छा अच्छा, नहीं ठीक बात बताई आपने, बहुत जानकारी वाली बात है, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। अब जो हमारा जो किसान भाई लोग जो बकरी पालन कर रहे हैं या मुर्गा मुर्गी पालन कर रहे हैं, उनके सरों भी कोई सावधानी नहीं थी वक्त में, कोई जानकारी हो तो आप बताओ।
2: जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि एक तो बहुत तेज धूप में उनको चराने नहीं ले जाए, बकरियों को क्या है जनरली जंगल में या बाहर चरागाह में ये चरने के लिए ले जाते हैं। दूसरा, एक समस्या बहुत आती है कि उनमें डायरिया की बीमारी हो जाती है बकरियों में, तो उसके लिए तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसका इलाज करवाए, क्योंकि अगर डायरिया हो जाएगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा, और अगर एक दो दिन अगर उसने पशु पालक ने ध्यान नहीं दिया तो बकरी की मृत्यु भी हो जाएगी और इस कारण से मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो एक विशेष सावधानी ये रखना है कि किस पशु की हालत कैसी है, बीमार तो नहीं है, उसको दस्त तो नहीं लगे, उसको लू तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसका सब उसको ध्यान रखना है।
0: और मुर्गा मुर्गी के बारे में जो अपने भाई लोग इसको उत्पादन करें,
2: मुर्गा मुर्गी में जो उनका रखने का स्थान है, एक तो वो पर्याप्त तो पानी की उपलब्धता उसकी रखे, दूसरा वहाँ पे जो स्थान है उसमें बहुत हवादार स्थान होना चाहिए। अच्छा। और पीने का जो पानी है वो साफ रहे, गंदगी अगर पानी में रहेगी तो मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां आ जाती है, उससे उनके उत्पादन पे तो असर पड़ता ही है, अगर अंडा दे रही तो अंडे पे, और अंडे से अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं तो उसका भी नुकसान होएगा उत्पादन का। और दूसरा क्या है कि वो

0: ज्यादा अगर समस्या आएगी कोक्सीडियोसिस और इन बीमारियों की परजीवी संक्रमण की तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
1: बहुत गंभीर बात है। तो कहना मतलब हमने समझो कि आपने जो बताया कि इन्हीं वक्त में सबसे पहली बात तो ये हो कि छायादार हवादार स्थान में रखा अपन अपना पशुधन के
0: जी,
1: उनके पानी की सोए रहे, उनके 24 घंटे पानी की व्यवस्था रहे,
0: हाँ।
1: न कड़क धूप में उनके नहीं फिरानो,
0: और अगर ज्यादा गर्मी है तो पानी के अंदर वो गुड़ का घोल भी दे सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो उससे क्या रहेगा, एनर्जी रहेगी और एकदम जो गर्मी का असर है वो कम होएगा।
1: वाह डॉक्टर साहब, ठीक है, रत्नाव साहब आपने हमारे सब किसान भाई उनके बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम उम्मीद करा कि हमारा जो भाई बहन उन्होंने जो कार्यक्रम सुन लिया आएगा वे इससे जरूर से जरूर लाभ उठाएगा। तो आपके फिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गर्मी का मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करा, इन बारे में सी के रत्नावत से बात करी थी धनिधर मिश्रा ने। भाई बहनों अब बखत हो रही है कि अपन रामायण पाठ सुन ला, तो सुना मुकेश को गाए हुए रामायण पाठ।

भाई बहनों, अभी अपन ने सुंदरकांड को अच्छे से प्रसंग सुनियो अने इना मीठा सा प्रसंग का साथे जब जाने की बखत हुई रही है। पर जाते जाते हम इतो जरूर आपसे कहवांगा कि कल फिर मिलने आवांगा, सुनांगा मीठे मीठे लोकगीत अने साथे ज विशेषज्ञ भाइयों की बातचीत अने आपन भी बातचीत करांगा। बस आज दो विदा, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से होगा।
1: मध्य प्रदेश है, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: मैं हूं सोनू सूद और आज हम तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग के लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री पांच देशों के दौरे के अंतर्गत आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पांच नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। इन सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर इस शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हुई वार्ता के प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने वार्ता खत्म होने के बाद जानकारी साझा की, जिसके कुछ अंश हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। अंशु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस भारत नॉर्डिक समिट के महत्व को आप एक विशेषज्ञ के तौर पर कैसे आंकती हैं और आपके अनुसार इस समिट का सबसे अहम आउटकम क्या रहा?
1: सोनू जी, पहले तो जब हम इस नॉर्डिक क्षेत्र की ओर देखते हैं यूरोप के, तो ये तकनीक और व्यापार में सहयोग की दृष्टि से, ये प्रोफेशनल मोबिलिटी में सहयोग की दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यदि हम नॉर्वे को देखें तो उसे गेटवे टू आर्कटिक कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी जो मैरिटाइम पॉलिसी है उसको बहुत डायनामिक और लचीला बनाते हुए, जहां हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की क्षमता अर्जित की है, तो वहीं जब हम आर्कटिक रीजन की ओर देखते हैं तो वहां लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको कॉन्फर किया गया। थर्ड नॉर्डिक भारत समिट जो है उसमें उन्होंने शिरकत की है। यदि हम इस नॉर्डिक समिट को देखें जो भारत के साथ होता है, ये एक बहुपक्षीय ऐसा कूटनीतिक फोरम है जिसमें कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड भारत के साथ जुड़े हैं और ये मिल करके किस तरह से एक जो ऑप्टिक्स बेस्ड बायलेटरल रिलेशंस होते हैं उनको कैसे आउटकम बेस्ड, जो कि टेंजिबल आउटकम बेस्ड रिलेशंस है, उनकी ओर ले जाया जाए, इस पर सतत काम हो रहा है। तो यदि हम पिछले समिट

0: को देखें तो 2018 में पहला समिट स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, किस तरह से कोविड के बाद हम एक इकोनॉमिक रिकवरी की ओर जाएं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को कैसे योगदान दिया जाए, इस पर बातचीत हुई थी। जब हम दूसरे समिट को देखते हैं जो 2022 में कोपेनहेगन में हुआ था, उसमें मैरीटाइम इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस था। और थर्ड समिट जो ऑस्लो नॉर्वे में हुआ है, तो इसमें किस तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े
1: जी,
0: सामुद्रिक जो अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कैसे सहयोग करें, एआई को लेकर के, फिर एक आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि नॉर्वे के साथ अभी हमने ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस की है।
1: अंशु जी, आप को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की आपने बात की है, तो आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें इसके बारे में क्या बताया, फिर चर्चा को जारी रखेंगे।
2: ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी, और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेज बढ़ाएंगे।
1: सो बहुत सारे बहुआयामी जो फैसले हुए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर और इनोवेशन को बढ़ावा देने को लेकर, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने जो हमें बताया है, आप हमें बताएं कि किस तरह से ये एक सिनर्जिस्टिक है इन नॉर्डिक देशों की जो क्षमताएं हैं, जो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भारत की विकास और रणनीतिक प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल खाता है। आपको लगता है ये बहुत ही सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप?
0: बिल्कुल सोनू जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। यहाँ एक सिनर्जी है, एक सिम्बायोटिक रिश्ता हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत के पास स्केल है, रिसर्च की क्षमताएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं हैं, और जहां तक बात होती है सामुद्रिक एक्सप्लोरेशन की, तो हमने पिछले 10-11 वर्षों में, मैंने आपको यही बताया कि हम पहले हमने मॉरिशस से सागर डॉक्ट्रिन हिंद महासागर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल के हम प्रणेता बने, हमने उसकी उद्घोषणा की, फिर हमने उसे महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, कहा हिंद महासागर के सामुद्रिक क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़े हैं, अब हम आर्कटिक की ओर देख रहे हैं, और जब हम इन नॉर्डिक देशों को देखते हैं जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, तो हम जब इन देशों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इनके लिए आर्कटिक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है यदि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र जो लेवल है, सामुद्रिक लेवल जो है वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसकी वजह से इनको खतरा है। और यहां पर भारत एक बहुत सशक्त साझेदार के, सहयोगी के रूप में इनके साथ में खड़ा है। तो इसीलिए जो फोकस है इस समिट का, वो इस प्रकार की रेजिलिएंट, फ्यूचर रेडी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करना है, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से आगे लेकर के जाना है जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमुखता दी जाए। तो इसमें सरकार भी और जो इंडस्ट्रीज साथ में जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के दोनों ही तरफ से ये बातचीत हुई है कि क्लीन ग्रोथ होनी चाहिए, क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो भारत और नॉर्वे ने इसीलिए कल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्घोष भी किया है। तो ग्रीन शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, किस तरह से बेहतर ओशन मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसमें फिर देखिए व्यापार भी आ जाता है, रिसर्च भी आ जाती है, शिक्षा भी आ जाती है, को मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, बहुत बड़ा विस्तार का ये पूरा क्षेत्र है जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर भी रहे थे।
1: अंशु जी, जो आप विस्तार की बात कर रही है, ये एक लगातार निरंतर प्रयास है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हुआ है, उसमें नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है, फिर इंडिया ईयू एफटीए हुआ, उसमें डेनमार्क, फिनलैंड और

0: स्वीडन जो है वो की पार्टनर्स हैं, ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है ये जो करार हुए हैं, इसके बारे में सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बताया।
1: अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया, और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
0: क्या लगता है आपको अंशु जी, ये जो स्वर्णिम युग की बात करी है, जो ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की भी उन्होंने इसी संदर्भ में बात करी कि कैसे हम सब एक चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ हो पूरे विश्व में और मल्टीलैटरलिज्म हो, जिसकी वजह से हम सब नेचुरल पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम सभी इन वैल्यूज में विश्वास रखते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के ऐसे युग में जहाँ विश्व में बहुत उथल पुथल चल रही है।
2: सोनू जी, जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो वैश्विक राजनीति में एक फ्लक्स का समय है, संकट का समय है। कोविड-19 की काली छाया से निकले थे तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, और यदि ये काफी नहीं था तो अभी पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है, भारत लगातार इसीलिए रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, वैश्विक स्तर पर जो तमाम इंस्टीट्यूशन है उनमें रिफॉर्म की बात करता है, नियमों पर चलने की बात करता है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को कैसे हम और सशक्त कर सकते हैं, यूएन चार्टर को हम किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सशक्त बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकि अलग अलग जो ये पश्चिम एशिया के और यूरोप के संकट हैं ये समाप्त हों। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हम लगातार इस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई देखते हैं। तो ऐसे में जो ये नॉर्डिक के देश हैं, ये आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज की या रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की बात करें तो ये भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। ये वो देश है जो भारत के साथ लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की मांग करते हैं। यूएनएससी में भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप की बात करते हैं उसका समर्थन करते हैं, और भारत जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को ज्वाइन करने की बात हो रही है भारत की, उसमें भारत का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में एक मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलेटरलिज्म, इशू बेस्ड एंगेजमेंट की बात आती है जिसको भारत लगातार प्रमोट करता है, और नॉर्डिक की तमाम देश जो है सोनू जी वो भारत का इसमें साथ देते हैं।
0: तो ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है इसके प्रति जो कमिटमेंट है नॉर्डिक देशों की, भारत की, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है।
0: सो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं प्रधानमंत्री ने, और एक और एस्पेक्ट है ट्रेड का, आपसी व्यापार का, अंशु जी उसके बारे में आप क्या कहेंगी, जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत का, उसका पिछले 10 वर्षों में जो विस्तार हुआ है उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें।
2: बिल्कुल सोनू जी, और यहाँ पर भारत एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है, जिसको हम टेपा के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम एफ्टा देशों की बात करें तो इनमें आइसलैंड, लिंकनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं, या नॉर्वे हमारा एक प्रमुख सहयोगी बन के उभरा, और बाकी के जो ये 3 सदस्य देश हैं इनके भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अभी हमारा जो ट्रेड है इन देशों के साथ वो $19 बिलियन से $20 बिलियन तक का होता है। तो इसको ये तमाम देश भारत के साथ मिलके 2030 तक $30 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, और इसमें एक किस प्रकार से $100 बिलियन का भारत में निवेश हो इसकी बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं, हम सशक्त हैं, हम सुरक्षित हैं। तो एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हम चाहते हैं हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो आवश्यक है, और वहीं इन देशों को भारत जैसे देश की आवश्यकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो नॉर्वे के पास सबसे बड़ा, यदि हम देखें पूरे विश्व में, तो गवर्नमेंट

0: आगे बढ़ रहा है।
1: सो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्ष में जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज और भारत के बीच में वो 4 गुना बढ़ा है और 200% बढ़त हुई है जो इन्वेस्टमेंट भारत में हुई है नॉर्डिक कंट्रीज से। सो अब जो ये बायलैटरल लेवल पर भी स्वीडन के साथ, नॉर्वे के साथ जिस तरह के करार हुए हैं, आपको लगता है कि भारत अब एक बहुत ही आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आ रहा है? यहाँ इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा यूथ टैलेंट है,
0: निश्चित तौर पर
1: संक्षेप में बताएं। जी
0: जी सोनू जी, देखिए पूरे विश्व की जो यूथ पॉपुलेशन है उसका 22% भारत के पास है और जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने अपने यहाँ है वो तमाम निवेशक देशों के लिए अति आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि एफ्टा की आप दृष्टि से देखें, यूरोपियन यूनियन की दृष्टि से देखें, यूरोप के देशों की दृष्टि से देखें, ये भारत में निवेश करने में अपनी उत्सुकता को लगातार बढ़ा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं।
1: जी, सो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। भारत को वहाँ की उन्नत टेक्नोलॉजी प्राप्त हो रही है, उनको हमारी जो क्षमता है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा बाजार प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री अब इटली की ओर रवाना होंगे और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में।
4: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी इंदौर आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं, साथ ही गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव सर्च करके भी सुन सकते हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। दिल से दिल की बातों का प्रोग्राम है दिल ने फिर याद किया और आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर है आपके साथ आपकी दोस्त विजया जैन। तो स्वीकारे मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, प्यार शब्द के मायने बहुत ज़्यादा हैं। जब दिल का कनेक्शन और वाइब्रेशन जुड़ जाए किसी ऐसे से, ठीक वैसे जैसा हम चाहते हैं, तो सारी दुनिया अपनी सी लगने लगती है।

तुम्हारी मुलाकात के सिवा इस दिल में रखा क्या है, तुमसे मोहब्बत के सिवा हमने किया क्या है। तुम जो न देखो तो बेचैन सा हो जाता है ये मन, और लोग पूछते हैं कि हमें हुआ क्या है। इसलिए हमेशा हमें अपनी आंखों में बसा कर रखिए कुछ ऐसे।

हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। हम तुम्हारे दम से ही जिंदा हैं, मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो। किस तरह छोड़ दें तुम्हें साहिब, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। ये दिल भी ना सच में बड़ी बेबस चीज़ है, देखता सबको है पर ढूंढता सिर्फ तुम्हें।

तुम्हारा दामन छोड़ने की ख्वाहिश तो नहीं, पर तुम एक इंतज़ार ही तो हो। वो इंतज़ार जो दो धड़कनों के बीच वक्त होता है ना, खाली सा, शांत सा, जिसमें शून्य रहता है, मगर जिसमें अगली धड़कन की उम्मीद होती है। तुम वो हो, तुम्हारे वास्ते ही जी रहे हैं हम। हमारी चाहतों का मान रखना, इश्क में हमें मजबूर कर जाए, डर है कहीं हमारी सांसें ही ना रुक जाए।

जानते हैं प्यार क्या होता है? अपने वक्त के कीमती लम्हे किसी और को देना, किसी की सुन लेना, किसी की आंख से आंसुओं को चुन लेना, किसी के जख्मों पर मीठे बोल के मरहम लगा देना, और बिना किसी रिश्ते के भी, बिना किसी फीलिंग्स के, बिना किसी संबंध के किसी के दर्द को अपना लेना और उसकी फीलिंग्स को अपना समझना, यह एहसास ही प्रेम है। ज़िंदगी में दोस्तों कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, जिससे भी आप मिलते हैं ना, वो आपकी तकदीर में लिखा होता है।

जी हाँ दोस्तों, ये प्यार का खुमार ही तो है कि उनके साथ बिताए हुए हर पल खास लगते हैं और बिना उनके सारे लम्हे उदास लगते हैं। वो मिले तो दिल को चैन मिलता है, वरना हर खुशी भी अधूरी लगती है। उनकी बातों में जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। और अब आदत हो गई है इस दिल को, तुम्हारे बिना ये दिल संभलता भी नहीं। तुम्हारी बातों का असर कुछ ऐसा छा जाता है कि थका हुआ दिल भी मुस्कुरा जाता है। तुम्हारी आवाज़ जैसे मरहम हो जाती है इस रूह के लिए, और दर्द पल भर में कहीं खो जाता है।

और अब एक दिल का दूसरे दिल को ये पैगाम कि जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी कहा, वो सारे शब्द ही नहीं थे, बल्कि इस रूह की सांसें थी जो सिर्फ तुम्हारे नाम की थी, तुम्हारे लिए थी और बस तुम्हारे लिए थी। हमें मिलने की चाह भी है, लेकिन ना मिलने का गम भी है। हमें तो बस तुम्हें लिखना है, हर वक्त तुम्हारे हर खामोश लम्हे को, तुम्हारे ख्याल को, और तुमसे जो मुझे हुई उस बेपनाह मोहब्बत को, चाहत को, प्यार को, या यूं कहें कि इश्क को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब वक्त है समाचारों का। समाचारों का प्रसारण
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम

0: बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रूकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रूपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है।

0: शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
3: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
4: Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnerships. Both countries attach a great deal of importance to maritime security, and we are looking at strengthening our respective supply chains, building resilient trade partnerships, energy security, and also to ensure that the industrial ecosystems of the two countries become competitive globally.
3: This is Suparna Bhatia from Rome.
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today called for deeper collaboration between industry and government to advance ease of doing business, enhance India's competitiveness and accelerate the country's journey towards Viksit Bharat. The minister was speaking at the India Business Reform Summit in New Delhi. Mr. Goyal said the present global situation and geopolitical uncertainties should be viewed as an opportunity for India to strengthen supply chains.
5: That we will convert the current situation and the risks associated with the geopolitics around the world into an opportunity for faster reform, into preparing ourselves for greater resilience, make our supply chains stronger, and use every bit of opportunity that the world provides, that India is offering to the world. For example, the 38 countries which are now one after the other coming in within the framework of free trade agreements.
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said Bastar division of Chhattisgarh will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Mr. Shah was addressing the media in Jagdalpur. He said that after making Bastar free from Naxalism, the centre and the Chhattisgarh government have jointly prepared a scientific roadmap for the region's development.
6: I want to assure all the citizens of Bastar on behalf of the Government of India and the Prime Minister Narendra Modi that there is no longer any need to live in fear. A new dawn has arrived here. Even though it has taken so many years after independence, the path of development is now being paved. The tribal youth and women here should now move forward with confidence. The Government of India and the Government of Chhattisgarh are with you.
1: Earlier, the Union Home Minister chaired the 26th meeting of the Central Zonal Council in Jagdalpur. Chief Ministers of Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Uttarakhand, along with senior police and administrative officials, attended the meeting. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education to be held on the 21st of next month. Mr.

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं चित्रगीत। चित्रगीत कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए ये खूबसूरत गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना सूरज और चांद फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी के लिखे बोलों को सुरों में सजोया है मदन मोहन ने। आवाज़ लता मंगेशकर और तलत महमूद की है। फिल्म का नाम सुहागन। प्रस्तुत है ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत, फिल्म का नाम तू ही मेरी जिंदगी। गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने और संगीत रणदीप मुखर्जी का।

सट्टा बाजार फिल्म का एक गीत आप सुन रहे हैं, आवाज लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी 10 बजे आप सुनेंगे मन भवन कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से होगा।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। सामईन, आज के कहकशां प्रोग्राम में आबशारी गज़ल सीरीज के तहत हम बात करेंगे नज़ीर अकबर आबादी के बारे में और साथ ही लुत्फ अंदोज होंगे मखमली आवाज़ों वाले गुलूकारों की गज़लों से। दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी का नाम वली मोहम्मद था और नज़ीर तखल्लुस करते थे। वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। अहमद शाह अब्दाली के हमले के ज़माने में दिल्ली छोड़कर अपने ख़ानदान के साथ आगरा आए और अकबर आबादी हो गए। दोस्तों, तारीख़ अदब उर्दू मुरत्तब करने वाले के लिए एक बड़ी दिक्कत नज़ीर अकबर आबादी के सिलसिले में होती है, वो ये कि समझ में नहीं आता कि उन्हें किस दौर के शौरा के साथ रखा जाए। उनकी सही तारीख पैदाइश मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टर रामबाबू सक्सेना का ख्याल है कि हमला नादिर शाही के वक्त दिल्ली में पैदा हुए और यहीं करीन कयास भी है, क्योंकि उन्होंने तवील उम्र पाई थी और उनका इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ। अगर पैदाइश 1739 या 1740 के करीब मान ली जाए तो अलबत्ता नज़ीर के अहद मुईन करने में कुछ आसानी होती है। फिर भी ज़बान, तर्ज बयान और मौजू के लिहाज से उनको किसी दौर से वाबस्ता करने में कतई फ़ैसला करना बाकी रह जाता है। हम उनको अपनी दुनिया आप समझकर हर दौर से अलग रखते हैं। उनके कलाम की खसूसियात खुद एक दौर की खसूसियात के बराबर हैं। नज़ीर ने आम रिवाज के मुताबिक अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। इसके अलावा हिंदी, पंजाबी और संस्कृत पर भी नज़ीर को महारत हासिल थी। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसी से उनकी रोज़ी रोटी चलती थी। नज़ीर का ताल्लुक अवाम से गहरा था। नज़ीर अवाम के साथ उठना बैठना पसंद करते थे और उन्हें उसका फ़ायदा भी हुआ। यानी जब उन्होंने शेर गोई की इब्तिदा की तो अवामी ज़बान लहजे का सहारा लिया। यही वजह है कि उनकी शायरी अवाम में काफ़ी मकबूल हुई। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के एक अजीम और मकबूल आम नज़म निगार थे। उन्होंने शायरी की दीगर असनाफ में भी तबा आजमाई की, लेकिन उन्हें मकबूलियत नज़म निगारी में मिली। अहम बात यह है कि उन्होंने ऐसे दौर में नज़म निगारी की तरफ रुख किया जब हर तरफ गज़ल गोई, कसीदा गोई और मसनवी निगारी वगैरह का खूब चलन था। उस वक्त उनके सामने नज़मों के ख़ास नमूने भी मौजूद नहीं थे। नज़ीर अकबर आबादी ने ऐसे दौर में नज़म निगारी की दुनिया में कदम रखा और इस सिन्फ को बुलंदी अता की। सामईन, जैसा कि हम वाकिफ हैं, हमारा प्रोग्राम आबशार गज़ल गज़लों से सजा होता है, तो आइए सुनते हैं अपने प्रोग्राम की पहली पेशकश में ये खूबसूरत गज़ल। समात फरमाइए।

सामईन, अभी आप गुलूकार आदित्य सिंह गौर की आवाज में गजल सुन रहे थे, जिसमें कलाम था अजहर सईद का। दोस्तों, हमारी बातचीत हो रही थी नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों में मौजूआत की एक दुनिया आबाद है। खासकर उन्होंने जिन मौजूआत को अपनी नज़मों का हिस्सा बनाया, उनका ताल्लुक अवामी ज़िंदगी से है। अवाम में उठना बैठना उनका ख़ास मशगला था। यही वजह है कि अवाम की ज़िंदगी के हर पहलू की बारीकियों से वाकिफ़ थे। उन्होंने अपनी नज़मों में इसका बखूबी फ़ायदा उठाया है और आम इंसानों के जज्बात व एहसासात, मुख्तलिफ इंसानी ज़िंदगी के मसाइल व मामलात, मुख्तलिफ समाजी व माशरती हालात, गर्ज़ ये कि इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी नज़मों में शामिल किया है और आवाम के सामने उन्हीं की सच्ची, हकीकी और जीती जागती तस्वीर पेश की है। ख़ासकर निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाली आवाम उनकी नज़मों का हिस्सा हैं। उन्होंने उनकी ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर पेश की है। इस सिलसिले में उनकी नज़्म मुफलिसी, जो माशी बदहाली पर मबनी है, काबिले ज़िक्र है, जिसे काफ़ी मकबूलियत मिली। नज़ीर अकबर आबादी ने अमीर व गरीब के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को भी मिटाने की कोशिश की है। माशरे में अवाम को तबकात में मुनकसिम करना उनको नापसंद था। यही वजह है कि उन्होंने जब इस फ़र्क को महसूस किया तो अमीर तबके के हवाले से उन्होंने मौत का ज़िक्र ज़रूर किया है कि मरने के बाद कुछ काम आने वाला नहीं। नज़्म बंजारा नामा में उसकी सच्ची तस्वीर कशी की गई है। इसी तरह नज़्म आदमी नामा में उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया है और आपसी तफरीक को मिटाने पर जोर दिया है। दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों में एक ख़ास पहलू जो सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो है, वो है उनका मकामी रंग। ख़ासकर मेले, ठेले, हिंदू मुस्लिम त्यौहार, खेल कूद, तमाशे वगैरह जैसे मौजूआत की कसरत है। इसी तरह मौसम, फ़िज़ा, मकाम और माहौल वगैरह की बेहतर अक्कासी भी उनकी नज़मों में मौजूद है। यही नहीं, बल्कि उनकी नज़मों में अख़लाकी बातें, नसीहत आमेज़ बातें और तसव्वुफ़ के मज़ामीन की भी कसरत है। महज इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद, कीड़े मकोड़े, गर्ज ये कि हिंदुस्तान की मिट्टी पर बसने वाली तमाम मखलूकात से उनको मोहब्बत थी। नज़ीर ने इन तमाम को अपनी नज़मों में जगह दी है। होली, दिवाली, राखी, बसंत, बलदेव जी का मेला, महादेव का ब्याह, कबूतरबाजी, पतंगबाजी, आगरे की तैराकी, उर्स हज़रत सलीम चिश्ती, शब बारात, ईद, जाड़ा, बरसात की बहारें, ताज महल, तरबूज, तिल के लड्डू वगैरह उनकी मकबूल नज़में हैं। दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी के मौजू पर बातचीत को जारी रखते हुए आइए हम सुनते हैं अपने प्रोग्राम की अगली पेशकश में एक और गज़ल। गुलूकार हैं आदित्य सिंह गौर और कलाम है अहद प्रकाश का। कतरा कतरा बहते हैं, तन्हा तन्हा रहते हैं। समात फरमाइए।

सामईन, अभी आप गुलूकार आदित्य सिंह गौर की आवाज में गजल समात फरमा रहे थे, जिसमें कलाम था अहद प्रकाश का। दोस्तों, हमारी बात हो रही थी नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। सामईन, नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों की एक बड़ी खूबी ये भी है कि उन्होंने अपनी नज़मों में कौमी यकजहती का दर्स भी दिया है। उनकी नज़मों में इंसान सबसे ऊपर है, यानी मज़हब के नाम पर इंसानों को बांट कर देखने के कायल नहीं थे। उन्होंने हर मज़हब और हर उसके मानने वालों का एहतराम किया। यही नहीं, नज़ीर मुख्तलिफ त्यौहारों और तकरीबों में शिरकत भी करते थे, चाहे वो मुसलमानों का त्यौहार हो या हिंदू समाज का त्यौहार हो, रस्म व रिवाज हो या मेले ठेले हों, उन्होंने हर एक में हिस्सा लिया। यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी नज़मों में इसकी तस्वीर भी पेश की है। और दोस्ती, भाईचारगी, मोहब्बत, एक दूसरे की इज्जत व एहतराम, आपसी इत्तेहाद और यकजहती का

खुला दर्स भी दिया है। इसके अलावा उनकी नज़मों में और भी मौजूआत हैं जो कारी को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इसी तरह इश्क व मोहब्बत के मौजूआत पर भी उनकी नज़में हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। इस सिलसिले में उनकी नज़में सोज़े फ़िराक, जुदाई, मुलाकात यार वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों की एक और बड़ी खसूसियत जुज़ियात निगारी है, यानी उन्होंने जिस भी मौजू को अपनी नज़मों का हिस्सा बनाया उसके तमाम अज्ज़ा को पूरी तरह से मंजरे आम पर लाने की कोशिश की है। उनकी नज़मों में तफसीलात है और मालूमात का एक बड़ा ज़खीरा मौजूद है। उन्होंने जुज़ियात निगारी के ज़रिए समाज के हर पहलू की तस्वीर पेश की है। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि नज़ीर अकबर आबादी का मुशाहिदा काफ़ी वसी था। सामईन, नज़ीर अकबर आबादी ने अपने पैगाम को पुरअसर बनाने के लिए तमसील निगारी का भी सहारा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की कहानियों के ज़रिए इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाया है। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी नज़मों में अवामी ज़बान और लबो लहजे का इस्तेमाल किया। उन्होंने आवाम से मुतालिक मौजूआत इख्तियार करने के साथ साथ उनकी ज़बान और लबो लहजे को भी इस्तेमाल में बखूबी लाया है।

सामईन, अभी आप गुलूकार आदित्य सिंह गौर की आवाज में गजल समात फरमा रहे थे, जिसमें कलाम था अजहर सईद का। इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम कहकशां यहीं इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के ज़रिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। तो चलिए अब आप हमारा पता नोट कीजिए। उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। अब आपके रेडियो दोस्त जावेद को दीजिए इजाज़त। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आकाशवाणी इंदौर आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर, और साथ ही गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव टाइप करके भी आप सुन सकते हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपको पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन सुनवाने का। तो आइए सुनते हैं मन भावन कार्यक्रम।

तो श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि इस चिलचिलाती गर्मी को भी आप बहुत ही सुकून के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि अब सुहाने गीतों का सफर भी आपके साथ शुरू होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का मन भवन और सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने आपके लिए चुना है लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम घूंघट। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र मिला है भील कॉलोनी मुसाखेड़ी इंदौर से। रवि डामोर, बबीता, संदीप, दुर्गा, अभिषेक, गौतम, विवान और उनके साथ ही देवास के श्रोताओं ने पत्र भेजा है मुरारी लाल, मनीष और शिवम वर्मा, यहीं से सुभाष गोड़िया, यहीं से नवीन, मीनू और विराट वर्मा, राजा रामनगर से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन और कैलाश महाजन, मोहसिनपुरा से जमील खान, असलम शेख और फुरकान, सुतार बाखल से नागपाल फोटोवाले, मुस्तफा जकी और अनिल श्रीमाली, गांव लोहगढ़ ठाकरा वाला फिरोजपुर से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरमान सिंह, पोत्रा और गुरनूर सिंह, वरवट वकाल से नारायण, कमल, दिव्या और जय हागे। इसी गीत के लिए डोंडी लोहारा बालोत छत्तीसगढ़ के श्रोताओं ने पत्र भेजा है। देवशंकर तामुरिया, अजय, तुषार, डोली, पूजा और प्रभा देवी तामुरिया, ग्राम बन बघेरा, जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से योगेश, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और अंजलि सारवा। औरंगाबाद महाराष्ट्र के श्रोता हैं राजेश पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। ये अगला पत्र हमें मिला है अमरावती महाराष्ट्र से चंदू जी हातोले का। ग्राम बहरामपुर टेमा से तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समर, राज, आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा का। देवास के श्रोताओं ने पत्र भेजा है अनंत चीखले, जितेंद्र सोलंकी, विपिन नायक, विशाल हंसराजानी, गौतम गोस्वामी, सुरेश परनाजिया और साथ ही श्री राम और उनके साथी अनंत चीखले ने। यह अगला पत्र हमें मिला है रतनपुर गांव से। भागीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और उनके साथ ही। घाड़ी नादुरा महाराष्ट्र के श्रोता हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य और विशाली बाठे। दुबे के बगीचे इंदौर से पत्र मिला है रितेश रायकवार, अनीता, कृष्णवी, नितिन, सरिता और अहिल्याबाई रायकवार और उनके साथियों ने। पंचशील कॉलोनी मूसाखेड़ी इंदौर से प्रकाश, सुनीता सेन, रवि सेन और कृष्णा सेन। और ये एक और पत्र है कुंदानगर खरगोन से ध्रुवास सोनवणे, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम सोनवणे का। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर बोड़खेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत नेहा जैन दीपक मयंक मुणत चेतन नाहटा दिलीप सिंह पवार और दीक्षा कोश मुणत ग्राम चंद्र बिस्वा महाराष्ट्र के श्रोता हैं किशोर वानखेड़े उषा विशाल वानखेड़े और मोताला से राज गवई और राजवीर गवई एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से वंदना मराठा भाऊ गणेश कार्तिक परी संजना मालती चौधरी स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे आड़ा बाजार से प्रतिभा पांजरे नेहा बल्लू जिया मनीष शर्मा भावना राशि आशीष जाधव दिनेश पांजरे और पूरा पांजरे परिवार अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं दीपक कुमार रोशन कुमार बंसीलाल और लवि श्रीवास्तव ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन कुसुम नेताम प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश के श्रोता हैं भैया तड़वी रीना सनी बाबू रोजुबाई तड़वी मुबारक बारेकर मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर भोकरी महाराष्ट्र के श्रोता हैं अरशद तड़वी आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी जिला बुरहानपुर से ही पत्र मिला है मुशर्रफ खा तड़वी जरीना मुबारक परवेज रोजमीन तैमूर और पूरा तड़वी परिवार दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले रेखा हिमांशु अनुराग सुलोचना चारुबी और प्रणव सांवले काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र के श्रोता हैं विट्ठल सुरोशे सुषमा परिधि निधीश और मायरा सुरोशे डोंबिवली मुंबई से भावना अधीश यादव स्मित और श्रेयांश गोरे लावरिया भेरू इंदौर से अनिल प्रमिला बामनिया नंदिनी मुस्कान नीलम सावन कृष्ण कुमार ऋतिक कुणाल केतन और पूरा परिवार ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार मोहम्मद साकीब पवार छोटू पवार और हसनैन पवार बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े वनीता छोटू पूजा रोशनी और अजय गंगराड़े यहीं से कैलाश दीपक फुलमाली समर और वेदिका फुलमाली पालदाना का इंदौर के श्रोता हैं हसीना बी मंसूरी अमीना बी और मोहम्मद रफी मंसूरी बक्सर बिहार से पत्र मिला है सरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून असलम अकरम और अल्ताफ अंसारी डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी सोनम आदिबा और दानिश अंसारी सारिमपुर बक्सर के श्रोता हैं आसमा खातून एसडी अंसारी महताब आफताब और मेराज अंसारी और इसी गीत के लिए ये एक और पत्र हमें मिला है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश शबाना नाज रिजवान राही इमरान रजा आलम शेख और चांदनी नाज का आप सभी की फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में मेरे सनम फिल्म का ये गीत

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम यादगार। और सुनने के लिए पत्र मिले हैं, बहुत सारे पत्र हैं इस बार श्रोताओं। और ये पत्र, पहला पत्र है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास पानीपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, भील बड़ोली गौतमपुरा इंदौर से राजेंद्र शर्मा, भावना दिनेश ज्योति जयदीप अर्पिता हिमांशु ओशिन हेमंत अद्विका निशिता और उनका पूरा परिवार, रामगंज खंडवा के श्रोता है विजय कविता महोबिया, संजय नंदिनी विशाल विवेक सोनू मोनू डोली देवराज महोबिया और भैयू दादा, शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वीएस महोबिया और कमला महोबिया, कवर कॉलोनी बड़वाहा से पत्र मिला है प्रवीण मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली का, सोमानी नगर इंदौर के श्रोता है बी आर राश्री, रौनक दिव्यांशी रोशनी धीरज स्वाति टोनी और निधि, अंबेडकर चौक वाकोड़ी महाराष्ट्र के श्रोता हैं उत्तम जमघाड़े स्वराज स्वरित पोपलवाड़ दिद्दी संघर्षा संविधान गोगड़े, जिला हिंगोली खेलड़ावाड़ी से शाहजी बोड़खे, गांव आस्टी हदगांव से सुधाकर कामले और संदीप कामले, और देगांव के श्रोता है सदाशिव थोरात। ये अगला पत्र है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, जरूड़ वरुड़ विदर्भ से बाबा साहेब बाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे रजनी कनीरे और आदि और युवराज, छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, इसी गीत के लिए फोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघनकर दिशांत कुमार अर्पिता और उनके साथी, राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर नई सड़क से मनमोहन राजावत राज मधु राशि रक्षित चित्रंजन कमल उमेश सरोज आरती रेखा रितिका रिचा स्वीटी सागर रिया रीत ऋषभ राजावत और उनके पूरे परिवार के लोग, ग्राम महेशवाड़ी महसिल तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े वाल्मीक नीनाजी और स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर, गांधीबाग अकोला से रमेश वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला नसीम बेगम आयशा खान हदिया आसमा सालिया सोएब पोत्रा मुश्ताबा खान।

घट श्रीरामपुर भोकर से हरी श्रावण अनीता बिड़वे का। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए ये गीत।

मन भवन कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों का गाया जाने अनजाने फिल्म का गीत। पत्र सुनने के गीत सुनने के लिए पत्र मिला है प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष मंदा, संदीप, माधुरी पिंटू और जयश्री खंडाले का। ग्राम भड़बूजी, जिला आगर, मध्य प्रदेश के श्रोता हैं रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, मिलन, विशाल, ओम प्रकाश और उनके साथी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर, जेतक और मीका विरक। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला।

एस नायक और शोभा नायक, वारणा शाहपुर महाराष्ट्र के श्रोता हैं विजय चौहान, तेजस्विनी अंकिता अनिकेत करिश्मा और माई चौहान, शौर्या कांबले, कल्याण महाराष्ट्र से सूरज नमिता और प्रकाश सूरबे, वंदना नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की रघुवंशी और संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, राजपुर के श्रोता हैं घिसु दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा नेहा, एकता अस्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे का, ग्राम खेड़ा मंसूर से भगत राम चौहान, कृष्णपाल, मयंक और प्रीति चौहान, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर और आरती जोंधले, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता, स्वाति माही, पूजा छुटकी, शरद और पूरा माखीजा परिवार, नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक, दिनेश चुंबले, रुपेश, लीलाबाई, चेताली चुंबले और प्रीति चांदने। और ये अगला पत्र हमें मिला है जलगांव तालुका जिला जालना महाराष्ट्र से नामदेव भूतेकर, अभिषेक, गणेश, कार्तिक भूतेकर, अश्विनी भूतेकर, जलगांव से वैष्णवी जगदाले, हर्षुल सावंगी, औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर और उनके साथ ही। और ये एक और पत्र हमें मिला है जालना महाराष्ट्र से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जग्गू राजे जाधव, वर्षा, संचित वायाल, प्रथमेश, सोहम देशमुख, प्रणाली और सानवी देशमुख का।

अयशोदा अब आपको सुनवाते हैं गाइड फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। सुनने की फरमाइश झुमरी तलैया से देव छकुली इंगोले, आर डी इंगोले और उनके साथियों ने, हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम।

ठोके, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू, मोनू ठोके, और साथ ही यादव मोहल्ला सनावत के श्रोताओं ने पत्र भेजा है, दिलीप, सुनीता, योगेश और मुस्कान मालाकार, घंटाघर चौखंडवा से संजय, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, रिधोरा से बाबूलाल गोकुला और मंगेश बोरा खड़े, आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने कोरीनगर इंदौर से पत्र भेजा है, बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र, अंजू और मोहित नारंग, निहालपुरा इंदौर से अनीता, कोमल, सोनू, मोनू, दुर्गा, दीपक, कपिल, प्रदीप और पूरा सवनेर परिवार, ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण, अंजनी, ज्योति, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, चटोदा सारा गांव से सुजान, सोहद्रा, आयुष और कृत वर्मा, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार, माया यादव, रिंकू, सनी और कोमल यादव। ये अगला पत्र हमें मिला है सुधीर उत्तम, मीनाक्षी तिवारी, जग्गी दुबा और शैलेंद्र गुगलानी का, और इन सब ने हमें पत्र भेजा है करनाल से, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद, किशोर कुमार, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, और इसी गीत के लिए पत्र मिला है छत्रपति साहूनगर हिंगोली से रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत टिक्कू, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम हिंगोले, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजबिये, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन, दत्ता घायल, सुनीताबाई, सानिका और गजानन घायल, आप सभी ने मालेगांव से पत्र भेजा है, तुषार कुर्ने, प्राशिक कांबले, एकता मेघना कुर्ने, उत्कर्षा कांबले, अरुण यलगुड़कर, अतुल गौतमी, धम्मदीना, अरुण काले और एडी कांबले, आप सभी ने यलगुड़ जिला कोल्हापुर से पत्र भेजा है। खंडवा ग्राम लोहारी के श्रोता है राजेश कुमार धनजे, राहुल, विशाल, शीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय, रानी, महिमा और नीतू वेद का, बेमित्रा से सुरेश पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का, गुमाश्तनगर स्कीम नंबर 71 से अनिल कौचाले, सबीहा, फलक, सीमा, पूजा, नेनावा, सुषमा, स्मिता और उनकी साथी राखी गुप्ता, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे, आदर्श नगर मलोट से राज, मीना, योगेश, मेंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा, और इसी गीत के लिए मक्सी से दयाराम जाटव, चैन सिंह आरोल, नानूराम, नंदकिशोर और दीपक कंसोटिया, ग्राम फांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत, प्रमोद कुमार डूडी, हांसी शहर से राजू, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, बेरोडी से राजेश, कंचन सोनी, गायत्री, विष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरे, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित और हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर के श्रोता हैं प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन राग चारुकेशी। तबले पर संगति कर रहे हैं अरुण कुमार शास्त्री। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन राग था चारुकेशी। तबले पर संगति कर रहे थे अरुण कुमार शास्त्री। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है. नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं. पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है. तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं.
2: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examinations for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across state to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. The Supreme Court today for the first time allowed euthanasia for rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs, citing the need to protect human life and public safety. The Apex Court issued a series of directions aimed at addressing the growing stray dog population across the country. The order came in a Suo Motu case initiated on 28th of July last year, following media reports highlighting incidents of stray dog bites and rabies cases, especially among children in the national capital. Meanwhile, the top court dismissed pleas seeking a recall of its earlier order on the relocation and sterilization of stray canines. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. The Russian embassy in South Africa, in a social media post, cited an aide to President Putin, Yuri Ushakov, as saying that the Russian president will attend the summit on 12th and 13th of September. Defence Minister Rajnath Singh reached Seoul today on a three-day official visit to South Korea after concluding his Vietnam tour. In South Korea, Defence Minister Singh will hold bilateral talks with his counterpart Ang Yu-bak. The IMD has warned of severe heatwave conditions in North India over the next few days. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. And with that, we end this news bulletin.

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सवेरे 5:51 पर प्रातःकालीन सभा में इन्हीं मीटर्स पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।